नमस्कार, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी जलंधर ते रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। अज दिन शनिवार है, शक संवत 1948 दे ज्येष्ठ महीने दी 2 तारीख है। तद अनुसार ईस्वी सन 2026 दे मई महीने दी 23 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 हो रहे ने। साढ़े अज की सभा के प्रोग्राम हुण शुरू होंदे ने।

FM बैंड 102.7 MHz थी। दिन दे सफर दी शुरुआत परमात्मा दी नाम सुमरन दे नाल करांगे। 6:05 तुसी सर्वन करोगे प्रोग्राम वंदना। सात बजे तुसी सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस और 7:02 ते जानकारी दे नाल भरपूर प्रोग्राम होएगा गुड मॉर्निंग जलंधर। प्रोग्राम होएगा अड्डी टप्पा जिस पंजाबी बैक टू बैक गाने सुनोगे। नौ बजे तुसी सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस और 9:02 तुहाडे दिलां दे उत्ते राज करदा होया प्रोग्राम होएगा दिल अपना पंजाबी। इस प्रोग्राम दे विच 9855 10027 तुसी अपने ऑडियो वीडियो और

ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜਸ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। दस बजे तुम सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस और 10:02 से गीतां दी बहार लेके आएगा प्रोग्राम होएगा गीत बहार। ग्यारह बजे तुम सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस और 11:02 से पंजाबी गीतां दी फरमाइश नु पूरा करदा होया सिलसिला होएगा पंजाबी तड़का। फोन दे जरिए तुसी अपनी फरमाइश पूरी करा सकोगे ए सिलसिले। बारह बजे तुम सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस और 12:02 प्रोग्राम होएगा होम स्वीट होम। मेलोडियस होएगा पल, जी हाँ, 1:00 तुम सुनोगे प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज और 1:40 साडे प्रादेशिक चैनल तो तुम पंजाबी दे विच खबर सुनोगे और 1:50 प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज इसी तरह जारी रहेगा। शायरी शायरी नू खूब रौनक वरिया माहौल बनाने दे लई 2:00 तुसी सुनोगे प्रोग्राम दिल आज शायर है। तीन बजे का प्रसारण होएगा रेनबो दिल्ली तो तुसी सुनोगे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। चार बजे का प्रोग्राम सुनोगे FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज से प्रोग्राम होएगा हेलो जलंधर। पांच बजे युवा वर्ग अपना प्रोग्राम पेश करेगा प्रोग्राम होएगा युववाणी। जिंदगी नु हसीन बनाएं गया प्रोग्राम होएगा लव यू जिंदगी। 6:00 सुनोगे और 6:20 साडे प्रादेशिक चैनल तो प्रादेशिक खबरां और 6:30 लव यू जिंदगी प्रोग्राम इसी तरह जारी रहेगा। सात बजे तुम सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस और 7:02 फिल्मी दुनिया की सैर कराएगा प्रोग्राम होएगा फिल्मी दुनिया। 8:00 तुम सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस और 8:02 आज दिन है शनिवार और सिलसिला होएगा नेट वाणी का। 9:00 तुम सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस और 9:02 प्रोग्राम होएगा दिल चाहता है। दस बजे तुम सुनोगे शामी गजल और 10:03 प्रोग्राम होएगा एक प्यार का नगमा है।

परदेशी साथै यस्तै प्रसारित हुन वाले प्रोग्राम थियो नदा प्रसारण समा। सेवज के 5 मिनट हो रहे ने वेला हो रहा है प्रोग्राम वंदना नु सर्वन करन दा। आओ प्रोग्राम वंदना दे इस सफर दा आगाज करिए मूल मंत्र दे नाल।

गलत रस्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियाँ और गलत अनुभव जिहड़ा आ बहुत जरूरी है। ये सानू सिखाउंदा है कि साडे लई की सही है ते की गलत है। इसलिए इन्हां चीज़ां दा परमात्मा दी रजा मनदे हुए आनंद लेना चाहिए।

कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु को दास, सुखी प्रभु को दास।

उनको हीरे मिल गए जिनको हीरों की चाहत थी, उनको हीरे मिल गए जिनको हीरों की चाहत थी, और वो खुद हीरा बन गए जिन्हें गोविंद की चाहत थी, गोविंद की चाहत थी।

माला हाथ लगे तो हरी साथ साथ लगे, माला हाथ लगे तो हरी साथ साथ लगे, माला मन भजे तो हरी स्वयं हृदय लगे, हरी स्वयं हृदय लगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवें रुजगार मेले विच वीडियो कॉन्फ्रेंस राही वख वख सरकारी विभागों ते संगठनों विच 51,000 तो वध नौजवानों नूं नियुक्ति पत्र सौंपणगे। भारत अते साइप्रस दे दहशतगर्दी दे मुकाबले लई एक सांझा कारज समूह स्थापित करन अते उच्च सिक्ख्या अते खोज समेत लई समझौतियां ते दस्तखत कीते गए ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश दीआं सरहदां नूं होर सुरक्षित बनाउण लई स्मार्ट बॉर्डर प्रोजैक्ट शुरू करेगी। चोण कमिशन ने 10 राज्यों में 24 राज्यसभा सीटों लई चोणां दे प्रोग्राम दा ऐलान कीता है। सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले बारे एक होर मुलजम मनीषा संजय हौलदार नूं गिरफ्तार कीता है। सरकार ने कहा है कि पिछले 4 दिनों में देश की बिजली की मांग में रिकॉर्ड वाधा होया है। पंजाब पुलिस ने एक वड्डी कामयाबी हासिल कर दिया। देश भर के स्कूलों ते होर संवेदनशील स्थानों ते बंब दे झूठे ईमेल भेजण विच शामिल नैटवर्क का पर्दाफाश किया है। CBSE ने 12वीं जमात दीआं बोर्ड परीक्षावां दीआं उत्तर पुस्तिकावां दीआं स्कैन कीतीआं कॉपियां हासिल करन दी आखरी तारीख एक दिन वधा के 24 मई कर दित्ती है। अत दी गर्मी दे मद्देनज़र पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वल्लों अहम फैसला लैंदिआं पंजाब सरकार दे सारे दफ्तरां स्कूलां अते कालजां दा समां बदलण दा ऐलान। नवें समय मुताबक कामकाज का समा सवेरे 7 बजे तो दोपहर बाद 1:30 बजे तक होएगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी संबंधी मीटिंग का टूर्नामेंट लई हर संभव सहूलतां नूं यकीनी बनाउण वास्ते पंजाब सरकार दी वचनबद्धता नूं दोहराया है।

दिल से दिल तक, बिल्कुल जी बिल्कुल, दिल से दिल तक दा इस सफर जिड़ा यार लेके हाजिर है तुहाडी अपनी दोस्त निशा। बिल्कुल जी, घड़ी सुई जिहड़ी है ओह मैनूं दस रही है कि पूरे दे पूरे 7:04 और 45, 40, 47, 47, 48 सैकेंड जिहड़े है हो चुके ने। और मेरी अखां दे अगे अज दे नज़ारे दी गल करो तां मैनू मिस्टर शर्मा दिख रहे ने कि वो बूटियां नू पानी दे रहे ने और नाल दे नाल अपने दोस्त दे नाल गल्लां भी कर रहे ने। आहा, वीकेंड वाली मस्ती इंजॉय कर रहे ने शर्मा जी। ला जी, सवेरे सवेरे पौद्यां नू पानी दे के उन्हां दी प्यास बुझाना भी एक बहुत वधिया काम है और दिन दी शुरुआत तां वाकई बहुत खूबसूरत है। गर्मी इन्नी ज़्यादा है कि प्यास जिहड़ी है वधो वधी वधी होई है। बिल्कुल जी बिल्कुल, शर्मा जी ने तो पौद्यां नू पानी दे रहे ने, नाल दे नाल अपने दोस्त दे नाल गप्पा भी मार रहे ने। और लो जी, वर्मा जी दे वेड़े दे विच और बत्ता साहब दे वेड़े दे विच अखबार पहुँच गई है और न्यूज़ हेडलाइनस नू सुनन दे नाल नाल पढ़न दी पूरी कोशिश जिहड़ी कीती जा रही है। हाँ, रोड़ा साहब ने आवाज मारी कि मेरा चश्मा दे दियो, मैं आज दी ताज़ा खबर पढ़नी जे। वाह जी वाह, पोता दौड़ के चश्मा लेके आया और बोल लिया कि दादू ये लो अपना चश्मा। दादा जी ने धन्यवाद कर दिया होया पोते नु, क्या भाई लो जी तैयार हो गए स्कूल जान वास्ते। बिल्कुल पोते दा अगे जवाब आ रहा है, बिल्कुल दादू मैं तैयार हाँ स्कूल जाण वास्ते, लाओ तुहाडा चश्मा ते तुसी पढ़ो आज की ताज़ा खबर। नाल दे नाल ना रेडियो सेट दी आवाज़ उच्ची भी करके चला गया जांदे जांदे। अरे वाह, गुड बॉय। आहा, नाले भी कह गया कि दादा जी आज मेरी पसंद का कोई गाना लगेगा। लगेगा जी जरूर लगेगा। 102.7 FM दिल से दिल तक दा कनेक्शन है भाई। तुहाडे पोते दी पसंद दा गाना भी लगेगा, तुहाडी पसंद दा गाना भी लगेगा और मैडम जी दी पसंद दा गाना भी लगेगा। लो जी फिर गुड मॉर्निंग दी उस सफर दा आगाज कर देनी है जी इस खूबसूरत गीत दे नाल और गल्लां बातां दा सिलसिला करांगे कंटिन्यू इस प्यारे जी गीत तो बाद।

वैसे गुजारा साडे बिना हो भी नहीं सकता। जे तुसी साडे बिना गुजारा करन दे बारे सोचोगे भी ना ते मैनू एदा लगदा कि तुसी सोचदे रह जाओगे कि 102.7 FM गायब किथे हो गया, चलिया किधरे गया, असी किधरे नहीं जांदे, असी तुहाडे नाल ही रहने आ। लो जी गल करिए, हुण तुहाडा भी समा हो रहा होना काम ते जाण दे लई, ऑलमोस्ट रेडी हो गए होंगे क्योंकि बहुत सारिया थावां दे ते टाइमिंग जिहड़ी आ चेंज है गर्मी ज़्यादा होण करके। सो रेडी हो गए होंगे और रेडी होने तो बाद एक बार फिर तो याद करवा देने कि ट्रैफिक रूल्स की पालना करते हुए जाना, सीट बेल्ट लगा के जानी है और नाल दे नाल अपने टू व्हीलर से अगर तुसी जा रहे हो तो हेलमेट जिहड़ा आ जरूर पा के जाना है क्योंकि ये साड़ी सुरक्षा का बेस्ट वाला सोर्स है। जेकर असी यदि वरतों करते हैं ना तो असी सुरक्षित ही रहेंगे और तंदुरुस्त भी रहेंगे। तंदुरुस्त किवें रहेंगे जे असी रोड के उत्ते बिल्कुल प्रॉपरली अपनी कन्वेंस नू चलावांगे तो फिर आप कोई मिस हैपनिंग होने तो बचा सकते हैं ना, तो फिर वो तंदुरुस्ती का राज ही बन जाता है ना। और स्कूल छड्डन चले हो तो फिर थोड़ा सहजे सहजे जाइए, कोई गल नहीं, क्योंकि जो स्कूल की टाइमिंग्स हो जाती ने ना 2-4 मिनट लेट हो जाते फिर पापा या मम्मा का जो टू व्हीलर हों ना वो फटाफट तेज तेज चलना शुरू हो जाता। सो मम्मी पापा प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि जो 4-5 मिनट रह जाने जा लगे कि अज असी लेट हो गया तो असी अपनी स्कूटर या फिर असी अपनी उस टू व्हीलर की स्पीड में थोड़ा रेज कर लेने, थोड़ा बढ़ा लें और फटाफट पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात में स्पीड ब्रेकर भी आ जाते नहीं। हाँ जी हाँ जी, देखो तेज़ रफ्तार के नाल चलाने के नाल तुसी जल्दी तो नहीं पहुँच जाओगे पर जल्दी उठने के नाल तुसी जल्दी जरूर पहुँच जाओगे। तो इन्हें छोटिया छोटिया चीज़ों का छोटिया छोटिया

बिल्कुल जी, खूबसूरत गीत संगीत दा साथ चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग जलंधर। माँ बनना हर एक औरत दा एक बेहद खूबसूरत एहसास भी हुंदा और सुपना भी हुंदा, लेकिन सुरक्षित मातृत्व की गल करिए ता महिला दा अधिकार भी हुंदा। थोड़ी कह सकते हैं दुख की गल है या परेशानी वाली गल है कि आज बहुत सारिया औरतां जिहड़ियां ने प्रेगनेंसी के दौरान या उन्हां दी प्रॉब्लम्स जिहड़ियां क्रिएट हो जांदियां ने या समस्यावां बन जांदियां ने उन्हां दा सामना जिहड़ा है करन च उन्हां नूं दिक्कत हुंदी है, लेकिन घट चर्चा होण करके घट गलबात नूं खुल के करन करके इस

0: ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਟੂ ਐਂਡ ਆਬਸਟ੍ਰੈਕਟਿਕ ਫਿਸਚੁਲਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਚਾਂਦਨੀ ਬੱਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਹੈਲੋ
1: ਹੈਲੋ
0: ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ
1: ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ
0: ਮੈਮ ਸਭ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਮੇ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ
1: थैंक यू जी
0: मैम आज जैसे हम अभी बात करके हटे हैं कि इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्ट्रैक्टिक फिस्टुला जो है आज हम मना रहे हैं मैम सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये ऑब्स्ट्रैक्टिक फिस्टुला क्या होता है
1: ये एक बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर बीमारी है
0: जी
1: जिसमें कि डिलीवरी के बाद एक महिला के जन्म देने वाले रास्ते और पेशाब की थैली या लहसुन की नली के बीच में एक छेद बन जाता है ये यूजुअली दो प्रकार के होते हैं वसाइको वजाइनल फिस्टुला जो कि पेशाब की थैली की तरफ रास्ता बनता है और एक रेक्टो वजाइनल फिस्टुला जो लहसुन की थैली की तरफ से रास्ता बन जाता है
0: जी मैम यानी कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कंसीव की हुई महिला को या फिर जो अदर लेडीज हैं इस चीज से जूझ रही होती हैं
1: बिल्कुल
0: जी मैम ये बीमारी औरतों में किन कारणों से होती है कौन सी ऐसी वजह होती है कि जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है
1: हाँ जी जैसे कि लंबे और बाधित प्रसव जिसे को हम ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर भी कहते हैं ऐसी डिलीवरी के दौरान ये होता है कि शिशु का जो सिर है और माँ की पेल्विक हड्डियाँ उनके बीच जो है पेशाब की थैली बहुत समय तक फंसे रहने से उसमें खून का बहाव कम हो जाता है
0: ओके
1: और थैली का कुछ हिस्सा नष्ट हो जाता है इससे योनि और पेशाब की थैली के बीच एक छेद बन जाता है और उससे लगातार पेशाब का रिसाव होता रहता है
0: ओके जिससे ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है
1: बिल्कुल बिल्कुल इसी को ऑब्स्ट्रक्टिक फिस्टुला कहते हैं कि लगातार पेशाब बहता रहता है चाहे आप किसी भी पोजीशन में बैठे हैं खड़े हैं लेटे हैं बस पेशाब निकलता ही रहता है लगातार
0: जी मैम मैम डिलीवरी के दौरान इसका जो इलाज है या समय पर प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल ना हो पाने के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है
1: बिल्कुल मैडम जैसे ऑब्स्ट्रक्टिक फिस्टुला बनने का सबसे बड़ा कारण जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाधित प्रसव या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है
0: जी जी
1: अब अगर सही समय पर आपातकालीन सुविधा ना अवेलेबल हो एक्सपर्ट डॉक्टर्स ना हो सिजेरियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध ना हो तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का सही समय पर पहचान नहीं हो पाती उसका इलाज नहीं हो पाता जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिक फिस्टुला बनने का खतरा ज्यादा होता है
0: ओके मैम इस बीमारी से शारीरिक मानसिक जो एक इफेक्ट है औरतों पर पड़ता है वो उनके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है उनको कैसे इफेक्ट करता है फिर
1: जैसे कि ये बीमारी में लगातार मैंने आपको बताया कि पेशाब का रिसाव होता रहता
0: जी,
1: है
0: जी जी जी
1: तो ये एक तरह से सामाजिक रूप से कलंक जैसा लग जाता है महिलाएं कहीं आ जा नहीं पाती क्योंकि उन्हें लगातार पेशाब निकलता रहता है चाहे वो कुछ पैड या कोई कपड़े वगैरह यूज भी करें तो भी वो लगातार भीगता रहता है बाहर आना जाना उनके लिए एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है
0: जी मैम मैम तो
1: पेशाब की जो स्मेल आती है उसकी वजह से जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको समाज से भी और परिवार भी थोड़ा अलग करने या बहिष्कृत करने लग जाते हैं कई महिलाओं का जो है वैवाहिक जीवन जो है वो भी खराब होता है उस पर असर पड़ता है और महिलाएं परिवार से अलग होने की वजह से और खुद की शारीरिक परेशानियों की वजह से एक हीन भावना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या डिप्रेशन का शिकार बन जाती हैं
0: मैम तो जैसे आपने ये सारी चीजें बताई हैं तो इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगी मैम कि इस बीमारी का इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है इलाज भी है
1: हाँ जी मैम इसका इलाज जो है शल्य क्रिया के थ्रू होता है अब शल्य क्रिया जो है इसकी उपलब्ध है बहुत से अस्पतालों में शल्य क्रिया से पूरी तरह से इसका इलाज हो जाता है
0: ओके
1: 100% ट्रीटेबल है
0: जी मैम इस प्रॉब्लम की अगर हम जैसे बात कर रहे हैं ऑब्स्ट्रक्टिक फिस्टुला की बात कर रहे हैं तो इसके बचाव के लिए जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको कौन कौन सी सावधानियां जो है वो रखनी चाहिए
1: जी मैम जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि कम उम्र में गर्भधारण पर रोक होनी चाहिए जैसे 18 साल से कम उम्र की जो लड़कियां हैं उनका शरीर गर्भधारण के लिए सही नहीं होता तो बाल विवाह पर रोक बहुत ज्यादा जरूरी है
0: जी
1: उसके अलावा

0: तो एंटीनेटल केयर हम कहते हैं कि नियमित रूप से प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं जांच के लिए और इलाज के लिए हॉस्पिटल जाते रहना चाहिए कम से कम महीने में एक बार कम से कम. सही पोषण वाला आहार लेना चाहिए उन्होंने और जहां तक पॉसिबल हो सके डिलीवरी जो है वो अस्पताल में ही करवानी चाहिए, खासकर ऐसे अस्पताल में जहां पर आपातकालीन सुविधा हो और 24 घंटे सिजेरियन की सुविधा उपलब्ध हो.
1: जी मैम, मतलब कि हर चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप प्रेग्नेंट हो, तो उस दौरान इन चीज़ों को, इसीलिए शायद डॉक्टर्स हमेशा एडवाइस करते हैं कि एक विज़िट जो है महीने में अक्सर होना चाहिए.
0: जी
1: मैम, आम लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि इस बीमारी के बारे में जागरूकता भी बढ़ सके और उन्हें एक संदेश भी मिल सके कि ये एक प्रॉब्लम है जिसको लेडीज फेस करती हैं और अंडरस्टैंड करना भी बनता है.
0: मैम, आम लोगों के लिए तो मैं ये कहूंगी कि इस बीमारी के बारे में जागरूकता उन्होंने बढ़ना चाहिए. पीड़ित महिलाएं जो हैं उनको उन्होंने दिलासा देना चाहिए कि एक बीमारी अभिशाप नहीं है, इसका इलाज संभव है.
1: जी
0: दूसरा, इन महिलाओं को जितना हो सके जितनी जल्दी हो सके एक्सपर्ट डॉक्टर के पास सलाह के लिए ले जाना चाहिए. उन्हें थोड़ा पौष्टिक आहार देना चाहिए कि वो जल्दी तंदुरुस्त हो सकें, उनकी इम्यूनिटी बढ़े. और उसके अलावा अपने घर की जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनका एंटीनेटल केयर और जो चेकअप है वो प्रॉपर करवाएं और डिलीवरी अस्पताल में करवाएं, घर पे डिलीवरी का बढ़ावा कम करें.
1: जी मैम, क्योंकि लास्ट बट नॉट लीस्ट मैम, बिल्कुल एक और बात जानना चाहेंगे कि महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व की बात करें, सेफ मदरहुड की बात करें, तो इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे मैम?
0: मैम, सेफ मदरहुड के लिए फिर मैं यही कहूंगी, महिलाएं अपने पूरे परिवार का और सब पूरी दुनिया का ध्यान रखती हैं, पहले वो अपना ध्यान रखें. तभी जैसे हम एरोप्लेन में बैठते हैं और बोलते हैं कि पहले अपने आप को मास्क लगाएं फिर बाकियों को, वैसे ही महिलाओं ने सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए. जब वो खुद प्रेग्नेंट होती हैं अपने आहार पे अपने व्यायाम पे ध्यान दें, जो गर्भावस्था के दौरान व्यायाम किए जाते हैं वो करें, नियमित रूप से डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएं, किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो वो अपने डॉक्टर के साथ शेयर करें, किसी भी प्रकार का हॉस्पिटल सरकारी या प्राइवेट उसकी सुविधा उपलब्ध जहाँ पे भी है वहाँ उसका फायदा उठाएं.
1: जी,
0: उसके अलावा जैसे हर महीने 9 तारीख में स्वास्थ्य सुविधाओं में जो है संस्था जो रहती है उनमें फ्री इलाज होता है.
1: जी,
0: तो जो अगर पैसों की कमी है या किसी कारण से वो जा नहीं पा रही है अस्पतालों में तो वो उस चीज का भी लाभ उठा सकती हैं.
1: जी,
0: खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए और डिलीवरी उन्होंने अस्पताल में ही करवाना चाहिए.
1: जी मैम, मैम आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो दी है और उम्मीद करते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में जितनी भी फीमेल लिसनर्स हमारे साथ जुड़ी होंगी उनके ये इन्फॉर्मेशन उनके बहुत काम आएगी. प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, प्रोग्राम में समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम.
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका भी.
1: थैंक यू सो मच मैम. बिल्कुल, इस वक्त सी साढ़े नाल डॉक्टर चांदनी बग्गा जिड़े की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे के गए ने. कुछ बीमारियां कुछ एहोजियां होंदिया ने जिन्हां दे बारे घट गल कीती जांदी है, घट चर्चा जिड़ी है वो कीती जांदी है क्योंकि उन्हां दे विच इस तरह लग रहा होंदा है कि ये चीज़ां नूं असीं ज़्यादा हाईलाइट करांगे तां साडी ही प्रॉब्लम जिहड़ी है वो सामने आएगी. लेकिन जदों तक असीं खुल के अपने विचारां नूं रखांगे नहीं उन्नी देर तक असीं इस चीज़ तों इन्हां बीमारियां तों नज़ात जिहड़ी है नहीं पा सकांगे. सो इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्ट्रैक्टिक फिस्टुला दे उत्ते अज असीं गल कर रहे सी डॉक्टर चांदनी बग्गा जिन्होंने वाकई बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जिहड़ी है अज साडे लिसनर्स नूं दित्ती है. उम्मीद करदे हां कि साडे लिसनर्स ये इन्फॉर्मेशन जिहड़ी है जरूर काम आएगी. सो प्रोग्राम दे विच सिलसिला करदे हां कंटिन्यू, चलदे हां चार कदम अगे.

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: सुनो, की तुसी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बारे सुनिया है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इस नाल तोड़ा कर सूर्य घर बन जाता है, यानी तोड़ा बिजली दा बिल जीरो। होर पैदा हुई कोई भी वादू बिजली ग्रिड नू बेच के पैसे भी कमा सकते हो। ता तुसी बैठे क्यों हो? हुने रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in ते।

0: Rainbow FM! Rainbow FM!
1: बिल्कुल जी, दिल से दिल तक कह रहा है 102.7 मेगा हर्ट्ज़ से तुसी बने हुए हो और प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग जलंधर। और इस सफर दे विच हम सफर मैं तुहाडी दोस्त निशा तुहाडे नाल गल्लां बातां दा सिलसिला करिए कंटिन्यू। फिर लॉ जी लॉ अज गल करदे हां असीं ऐसी चीज़ दी जो कईआं नूं स्कूल दी सज़ा लगदी सी पर हुण उस नूं किया जांदा है सुपर ब्रेन योगा। ओ माई गॉड। अच्छा पहलां ना तुसीं सारे जने हाथ खड़े करो कि तुसीं कदी इदां होया कि तुहाडी क्लास दी जिहड़ी टीचर है उन्हें तुहानूं पनिशमेंट दित्ती होवे और उस पनिशमेंट दे विच ना तुसीं उठक बैठक कीता होवे, कदी मम्मा ने दित्ती होवे। मैं क्या असी तो इदा की सज़ा जी है ना बड़ी बार भुगती है। अरे मज़ा आता सी इन्हां दे विच सारियां दोस्त सारियां सहेलियां जदों बाहर आके खड़ जांदियां सी ना इको एक करके लाइन लग जाती होंगी सी उठक बैठक की, है ना। आई चेहरे ते मुस्कुराहट आओ वाजी वाह, सारों नूं चेता आ गया कि उठक बैठक जिहड़ी है ना वो तुसीं भी क्लास के बाहर खड़े होके जिहड़ी है ना जरूर कीती होएगी। लेकिन अज की गल करिए आज इन सुपर ब्रेन योगा भी किया जाता है। जी हाँ, कन्न फड़ के उठक बैठक बचपन में जो होमवर्क नहीं किया हों ना जब क्लास में शरारत की होंगी सी तो टीचर कहें चलो 10 उठक बैठक लगाओ डंडा मैडम के हाथी हों। पर की तुहानू पता है कि कुछ लोग मानते हैं कि सिर्फ सज़ा नहीं सी सगो दिमाग लिए एक कसरत भी हो सकती है। हाँ, जदों असी खब्बे हाथ नाल सज्जा कन्न ते सज्जे हाथ नाल खब्बा कन्न फड़दे हाँ ना तो फिर उठक बैठक करदे हाँ तो शरीर दे विच एक हिस्से विच जिहड़ा है ना वो इकट्ठे काम करदा है। शरीर का एक हिस्सा नहीं कई हिस्से जिहड़े है वो इकट्ठे काम करदे ने। कुछ लोग जिहड़े है वो मानते हैं कि ध्यान वध सकदा है, कॉन्सनट्रेशन जिहड़ी है वो सुधर जाती है, शरीर दे विच एनर्जी जिहड़ी है वो महसूस होंदी है, यानी कि दिमाग ते शरीर दे विच जिहड़ा कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर हो सकता है जदों असीं उठक बैठक करने आ। बाकी कॉन्सनट्रेशन वधन की गल करिए क्योंकि सामने मैडम खड़ी होंदी है डंडा लैके तो फिर जो मैडम का डंडा भी देख रहा होंदा ना तो उठक बैठक भी सही तरीके दे नाल लग रही होंदी है। एक भी उठक बैठक अद्धी जी मारी होंदी है ना तो मैडम फटाफट कहती एक पूरी नहीं मारी चल चल चल दोबारा दोबारा चल चल। बिल्कुल विदेशों में अच्छ कई थावां इस सुपर ब्रेन योगा के नाल ना दे नाल भी जाणिया जाता है। पर एक जरूरी गल कि इस बारे किए गए बहुत सारे वैज्ञानिक अध्ययन जिहड़े आ हाले तक सीमित हैं, इसलिए कहना इसलिए इस नाल याददाश्त या आई क्यू पक्के तौर पर वधदी है वो कोई मजबूत सबूत जिहड़े आ ना हाले साफ जे नहीं होए। पर हाँ, हल्की फिजिक्स एक्टिविटी जिहड़ी है फिजिकल एक्टिविटी जिहड़ी है साह ते ध्यान ते नियमित कसरत दिमाग ते सेहत लई फायदेमंद जरूर मनी जाती है। तो दोस्तों जो चीज़ कदे सानू सज़ा लगती सी नहीं सज़ा लगती होंगी सी ना हो सकता है उसके पिछे कुछ सेहत नाल जुड़ी गल्लां भी होण। तुहाडा की ख्याल है फिर बन जाइए असी भी उठक बैठक कढ़न लई, है ना। सानू जरूर दस्सो कि जेकर तुसी स्कूल दे विच उठक बैठक लगाई है तो किहो जिहा एक्सपीरियंस रहा होएगा। ओके, इस दो ही गल्लां बातां दा सिलसिला जिहड़ा है उठक बैठक तक ही सीमित नहीं है, उठक बैठक तो अगे भी चलेगा। उठक बैठक तो अगे कह रहा है कि चलो चलिए अगे, हाँ हाँ अगे जाना नहीं है हुण। एक सोहना सा गाना सुनते हो दिल से दिल तक, हाँ हाँ जी लो बिल्कुल तैयार है।

0: जारी कीते गए एक सांझे बयान विच दोवां धिरां ने संयुक्त राष्ट्र यूरोपी संघ वल्लों नामजद सारे दहशतगर्दां ते दहशतगर्द जथेबंदियां जिन्हां विच 1267 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल पाबंदियां कमेटी दे अधीन सूचीबद्ध ने दे विरुद्ध सख्त अते तालमेल वाली कारवाई की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने साइबर अते समुद्री सुरक्षा नूं मजबूत करन दा फैसला कीता है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: भारतीय रिजर्व बैंक ने माली साल 2025-26 लई केंद्र सरकार नूं 286,000 करोड़ रुपए दे रिकॉर्ड सरप्लस दे तबादले नूं मंजूरी दे दित्ती है। इह रिजर्व बैंक वल्लों हुण तक दित्ते गए सब तों वध लाभ अंशां विचों इक है। यह फैसला कल मुंबई विच गवर्नर संजय मल्होत्रा की प्रधानगी हेठ बैंक दे केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं मीटिंग विच लिया गया। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अज भारत के 4 दिन दौरे से कोलकाता पहुंच गए हैं। यह उन्होंने भारत का पहला दौरा है जो अमरीका और भारत विचकार दवल्ले संबंधों मजबूत करने लिए एक अहम कदम है। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, तकनोलॉजी से भारत प्रशांत रणनीति में सहयोग बढ़ाना है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने हवाई अड्डे से श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो नवी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात करेंगे। अमरीकी राजदूत मुताबिक आउंदियां मीटिंगां का मुख्य उद्देश्य रक्षा पाईवाली अत्याधुनिक तकनोलॉजी, व्यापारक संबंधा ते क्वाड ढांचे तहत सहयोग समेत मुख रणनीतिक खेतरां विच सहयोग नूं मजबूत करना होगा। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर नाल भी गलबात करेंगे। पेट्रोल और डीजल दी कीमतों में अज 91 पैसे फी लीटर तक का वादा किया गया, जो कि 10 दिन तो भी घट समय में तीजा वादा है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे वधा के 99.51 रुपये फी लीटर हो गई है, जदों की डीजल 91 पैसे वध के 92.49 रुपये फी लीटर हो गया है। इस महीने की 15 तरीक न 3 रुपये फी लीटर वाधे तो बाद 19 तरीक न 90 पैसे के वाधे तो बाद ईंधन दर तीजी सोध है। कुल मिला के हाल ही के दिनों में कीमतों में करीब 5 रुपये फी लीटर का वाधा होया है। यह वाधा ईरान संघर्ष और होर मुसमणजोड़ विघन तो बाद विश्व पद्धर से कच्चे तेल दीमतों में तेजी वाधे दरमियान आया है। पेट्रोलियम ते कुदरती गैस मंत्रालय ने कहा है कि भारत कोल पेट्रोल अते डीजल दी ढुकवीं उपलब्धता है ते देश भर विच सप्लाई स्थिर है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच मंत्रालय ने नागरिकां नूं घबराहट विच खरीददारी तो बचण अते असल लोड़ मुताबिक ही ईंधन खरीदण दी सलाह दित्ती है। इस विच कहा गया कि कुछ परचून दुकानां ते किसी भी अस्थाई दबाव नूं तेल मार्केटिंग कंपनियां वल्लों निरंतर सप्लाई निगरानी अते तालमेल वंड राही हल किया जा रहा है। मंत्रालय ने अगे कहा कि जिम्मेवार खपत अते जनतक सहयोग चल रहे उच्च मंग दे समय दौरान सारयां लई ईंधन दी सुचारू उपलब्धता नूं यकीनी बनाउण विच मदद करेगा। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIR ਜਲੰਧਰ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਜਰ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਬਰਾਕ ਨੂੰ 2025 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫੌਜੀ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਸਮਰਥਕ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਬਰਾਕ ਲੈਬਨਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਜਰ ਬਰਾਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੈਬਨਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਟੀਮ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਜਰ ਬਰਾਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਕੂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਨੇ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਚਾਂਦੀਪੁਰ ਇੰਟਰਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟੈਸਟ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਅਗਨੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਖ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਏ। ਇਹ ਸਫਲ ਪਰਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਦੀ ਏ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਪਾਟ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਕੱਲ੍ਹ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ ਕੰਗਰੀਆ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਮੂਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ BCG, ਟੈਟਨਸ ਅਤੇ ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ 20 ਟਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਭੇਜੀ ਏ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਖੇਪ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से हुण तुसीं सुन रहे सी बैक टू बैक गीत संगीत दा प्रोग्राम अड्डी टप्पा। FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी रेनबो दा जलंधर केंद्र है। 9 बज रहे ने और वेला हो रहा है FM न्यूज हेडलाइंस दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले विच 51,000 तो वध चुने हुए नौजवानों की नियुक्ति पत्र वंडणगे। पंजाब च रोजगार मेला रेल कोच फैक्टरी कपूरथला विखे पेट्रोलियम अते कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी च होएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने माली साल 2025-26 लई केंद्र सरकार नूं 2,86,000 करोड़ रुपए दे रिकॉर्ड सरपलस दे तबादले नूं मंजूरी दे दित्ती है। अमरीका दे विदेश मंत्री मारुको रूबियो भारत दे 4 दिना दौरे ते कोलकाता पहुंच गए ने। भारतीय फौज के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक नू 2025 संयुक्त राष्ट्र फौजी लिंगक समानता समर्थक अवार्ड नाल सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड विच चमोली जिले विच स्थित पवित्र श्री हेमकुंड साहिब जी के कपाट आज श्रद्धालुओं लई खोल दिते गए ने। सरकार ने कहा है कि पिछले 4 दिनों में देश की बिजली की मांग में रिकॉर्ड वाधा होया है। पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करदिया देश भर के स्कूलों और होर संवेदनशील स्थानों पर बंब के झूठे ईमेल भेजने में शामिल नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। CBSE ने 12वीं जमात दियां बोर्ड परीक्षा दियां उत्तर पुस्तिकावां दियां स्कैन कीतियां कॉपियां हासिल करन दी आखरी तारीख एक दिन वधा के 24 मई कर दित्ती गई है। अति गर्मी दे मद्देनजर पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वल्लों अहम फैसला लैंदियां पंजाब सरकार दे सारे दफ्तरां स्कूलां ते कॉलेजां दा समां बदलण दा ऐलान। नवें समें दे मुताबिक कामकाज दा समां सवेरे 7:30 तों दोपहर बाद 1:30 तक होएगा। अरे IPL क्रिकेट विच हैदराबाद विच सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नूं 55 दौड़ां दे नाल हरा दिता है। ते ए सी हुण तक दियां FM न्यूज हैडलाइंस। FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से 9:02 और 57 सेकेंड हो चुके हैं। वेला हो रहा है प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी का।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी के

0: ਦਰ ਨੇੜੇ BMC ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 20 ਮਈ 2026 ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ newsonair.com ਜਾਂ newsonair.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत विच जिस सौर क्रांति का आगाज किया सी, उसका असर हुण दिखाई देन लगा है। भारत विच एक एक करके 30 लाख तो वध परिवारां दी छत ते सोलर पैनल लग चुके हैं। तुसी भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: समझे हैं। हाँ
1: बढ़िया,
2: बिल्कुल जी, बढ़िया बढ़िया गाने तुसे इंजॉय कर रहे हो। ट्यून इन कितना हाया 102.7 एफएम रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है गीत बहार, ते मैं हाँ जी तुहाड़ी अपनी साक्षी तुहाड़े नाल। वैसे लाइफ दे विच बढ़िया बढ़िया अगर रहना है, मतलब वधिया वधिया असी रहना है, फिट रहना है, हिट रहना है, तो उहदे वास्ते जिहड़ी एक्सरसाइज हैगी, अपना ध्यान जिहड़ा रखना हैगा है, वह बहुत ज़्यादा जरूरी हुंदा है। सो अपना ध्यान जिहड़ा है हमेशा सानू रखना चाहिए, तो एक होर चीज़ का ध्यान जिहड़ा रखना चाहिए, मौसम जिहड़ा है बहुत ज़्यादा बदलिया होया है, सानू प्यास लगती है तो असी ठंडा पानी पीने, गर्मी लगती है तो एसी थले आके बैठ जाने, पर कुछ आस पास साढ़े इदा के भी जीव जंतु तू ने जानवर ने जो अपनी फीलिंग्स नू या इस धुप्प तो इस गर्मी तो अपने आप को बचाने के लिए साढ़े तो कितना कितने डिपेंडेंट ने। सो असी उन्होंने लिए भी जड़िया साड़िया ड्यूटीज़ ने उन्होंने जरूर फुलफिल करिए, मतलब टाइम टू टाइम उन्होंने लिए कुछ खाण पीन के लिए जिते अवेलेबल होन चीज़ा उन्होंने लिए रख सकते हैं, पानी का कसोरा भर के अपने घर की छत पर रख सकते हैं, थोड़ा बहुत पक्षियों के खाण के लिए सतनाजा वगैरह जोड़ा हैगा वह नाल असी रख सकते हैं, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਡਾਂਸ ਪੇ ਚਾਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਟਿਊਨ ਇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਜੀ 102.7 FM ਰੇਨਬੋ।

बिल्कुल जी, हौले हौले तो है ना, गल्ला करते हुए टाइम दावे बिल्कुल पता नहीं चलिया। टाइम हुन जड़ा है गया प्रोग्राम गीत बहार नू आज दे लई इत्थे ही वाइंड अप करन दा हो गया, पर खुशी दी गल ऐ वै कि अगला प्रोग्राम पंजाबी तड़का साडा लाइव फोन इन प्रोग्राम होवेगा, जिदे विच फोन करके तुसी अपनी फरमाइशी पंजाबी गीत जिहड़े ने उस प्रोग्राम दे विच शामिल करवा सकदे हो। ते उस लई साडा नंबर होएगा 0181 2342174। ते गीत बहार नू अज इस अगले गीत दे नाल असी खत्म करदे हां, ते फिर मिलांगे जी गीत बहार दे विच। चलते चलते।

Once again, welcome back, है जी, हाँ जी, हाँ जी, एक बार फिर तो स्वागत है तुहाडे हर रोज़ जिहड़ा इस प्रोग्राम पंजाबी तड़का दे विच जी लाइव फोन इन प्रोग्राम जिथे तुहाडी फरमाइश असी हर रोज़ पूरियां करदे हां। अपने पंजाबी गीतां दी फरमाइश जिहड़ी है तुसी साडे तक लैके आंदे हो, ते तुहाडी फरमाइशां पूरे करदे होए सानू भी बहुत चंगा लगता है। मैं हाँ जी अज पंजाबी तड़का दे विच तुहाडी अपनी दोस्त साक्षी, ते तुसी फटाफट नंबर मिलाना है साडा 0181 43 174 है नंबर, तुसी मिलाओगे साडे नाल गलबात करोगे ते अपने पसंद दे जिहड़े पंजाबी गीत ने ओह सानूं जरूर दसोगे ते इस प्रोग्राम दे विच शामिल भी होणगे ओह गीत। फिलहाल प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां जी अमृत मान दे गीत शुकराना तों, ताकि मतलब वाकई जी शुकराना ही है कि तुहाडे नाल गल्लां करन दा जिहड़ा मौका सानूं मिलदा है।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त की।

0: जी प्रोग्राम चल रहा जी पंजाबी तड़का, जिथे साडे कॉलर सानू फटाफट कॉल जेड़े ने मिला रहे ने, साडे नाल गल्लां कर रहे ने, अपनी फरमाइशां जेड़ियां ने सानू दस रहे ने। ते तुहानू वी इक वार फिर तो अपना नंबर जेड़ा है असी अनाउंस कर दईए। नंबर है 0181 23 42 174, यानी कि 0181 23 42 174। तुसी वी ये नंबर मिलाओ ते पंजाबी तड़का प्रोग्राम दे विच शामिल हो जाओ ते अपने पसंद दे फरमाइशी जेड़े गीत हैगे ने सानू जरूर जेड़े ने दस ताकि वह गीत जड़े ने इस प्रोग्राम दे विच शामिल करिए। अगले कॉलर दोस्त कौन आए ने करदे इन्हां नाल गलबात। नमस्कार जी, सत श्री अकाल।
1: हां जी मैडम जी, सत श्री अकाल जी। चरणजीत सिंह चन्ना आनंद नगर जलंधर तो बोल रहे हैं जी।
0: जी चरणजीत जी, की हाल चाल ने तुहाडे?
1: बड़ा वधिया जी, तुही सुनाओ जी अपना।
0: जी साडा भी बहुत वधिया, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम पंजाबी तड़का दे विच।
1: शुक्रिया जी, तुहाडा भी बहुत बहुत जी।
0: जी होर की करदे हो?
1: फिर
0: अज केड़े गीत दी फरमाइश लेके आए हो तुसी?
1: गाना हरजीत हरमन दा ला रहे हो जी।
0: ठीक है,
1: मेरे दोस्त ना सतीश

जी, बहुत ही खूबसूरत गीत सतिंदर सरताज की आवाज़ के विच तुसी सुन रहे सी। प्रोग्राम चल रहा जी पंजाबी तड़का, ते हुण अज दे लई पंजाबी तड़का प्रोग्राम नूं इत्थे ही वाइंड अप करदे आ, खत्म करदे आ। कुछ कु देर बाद साडा अगला प्रोग्राम होम स्वीट होम करोगे जे तुसी इंजॉय। ते जिन्हां दे अज फोन नहीं लगे नाराज़ ना होना, सोमवार फिर तों असी हर रोज़ मतलब सोमवार तों शनिवार 11 बजे तक साडा पंजाबी तड़का जिहड़ा प्रोग्राम हुंदा ना उहदे विच तुसी शामिल जरूर हो सकते हो ते अपने पसंद दे फरमाइशी गीत सुन सकते हो। जाते जाते अमरिंदर गिल की आवाज़ के थोड़े लिए गाना प्ले करके जा रही है जी।

ले, कोई नवी टिप पता चले, कोई ट्रिक पता चले, या फिर कोई खान दी चीज होवे जिहदे इन्ने सारे फायदे होन, मैनू तो हुंदा मैं फटाफट अपने लिसनर्स दे नाल ओह शेयर करां। जी ट्यून इन किया हुआ तुसी 102.7 FM रेनबो प्रोग्राम चल रहा जी होम स्वीट होम, तो मैं हाँ जी थोड़ी अपनी साक्षी थोड़े नाल। मतलब एक इदा दी चीज़ जो खाने दे विच भी बहुत ज़्यादा स्वाद है, जिदे नाल साडे सेहत ते त्वचा दोनों ही फायदा मिले, तो फिर मैं क्या जी इन्हूं क्यों स्किप करना। गल कर रही हाँ मैं खीरे की, यानी कि ककुंबर की, मतलब ककड़ी, कोई इनू अलग अलग नाम दिंदा है, मतलब काम एदा सेम ही है जी, बस जो मर्जी नाम नाल बुला लो काम तो हाड़े लिए है उही करेगा। तो गर्मी के मौसम दे विच खीरा जेड़ा हैगा ना, मतलब खान दे नाल साड़ी स्किन जड़ी हैगी वह भी रिपेयर होंदी है, तो ये नाल ही नाल मतलब साड़ा पेट जेड़ा हैगा उन्हूं भी यह ठंडक पहुँचाता है, तो चेहरे की चमक वधान वास्ते, अखां की थकान मैं कह जी दूर करन वास्ते, खीरे नूं अपनी डाइट दे विच जरूर शामिल करो। एक्सपर्ट्स का कहना है कि खीरे खाने के बहुत ज़्यादा फायदे ने। वैसे तो खाली पेट अगर असी खीरा खाने हैं ना तो उदा एक अलग ही फायदा होंदा है, तो अगर तुसी खाली पेट स्किप कर दिता, मतलब हुन आज थानू पता चलिया जे अज स्किप कर दिता, मैं कहा जी लंच दे विच बिल्कुल स्किप ना करना, लंच दे विच ऐसा सैलड जिहड़ा हैगा खीरा तुसी अपने लंच की थाली दे विच जरूर ऐड करना। इहदे नाल की हुंदा है साडे पेट दीआं, पेट यानी कि साडे ढिड दीआं आंतड़ियां जिहड़ियां हुंदियां ने उह साफ हुंदियां ने, क्योंकि इहदे विच फाइबर जिहड़ा है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इस गर्मी दे मौसम दे विच साडे ढिड नूं बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है, तो नाल ही नाल खीरे दे विच एंटी ऑक्सीडेंट वर्गे होर भी बहुत सारे स्तोत्र जिहड़े ने सानूं मिलते ने, तो ये नाल ही शरीर जिहड़े साडी हानिकारक जिहड़े टॉक्सिनस हुंदे ने उह बाहर आते हैं, तो नाल ही नाल मैं कहा जी तुसीं स्ट्रेस दे विच भी हो ना, तो खीरा जिहड़ा है ककुंबर बहुत ज़्यादा हैल्पफुल हैगा इहदे विच, जिहड़े हैगे ने स्ट्रेस नूं घट करन वास्ते बहुत सारे इदां दीआं चीज़ां हुंदीआं ने जो कि साडे बॉडी दे विच इत्थों तक कि ट्यूमर तक भी नहीं बनन दिंदीआं। बाकी जी गर्मियां दे विच पानी सिंपल पी पी के, मतलब प्यास तो बहुत लगती है तो कई बार पानी पीने दिल नहीं करता, तो तुसीं अपने लिए डिटॉक्स ड्रिंक भी खीरे दे नाल रेडी कर सकते हो। उहदे लई की करना है कि खीरे नूं गोल गोल कट के चाहे छिलकियां दे समेत ही तुसीं अपने पानी दे विच पा सकते हो, तो नाल 3-4 पत्ते पुदीने दे यानी कि मिंट लीव्स जिहड़ियां ने उह भी ऐड कर सकते हो, तो पानी नूं 3-4 घंटे इदां ही इह चीज़ां नूं इहदे विच रखो, तो उस तों बाद तुहाडा डिटॉक्स वाटर जिहड़ा हैगा उह तैयार हो गया। सो जिहदे नाल मतलब क्योंकि खीरे दे विच जिहड़े हुंदे ने कैलोरीज बहुत घट हुंदियां ने, ते फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा दे विच हुंदा है, जिहदे नाल साडा पेट जिहड़ा ना वह जल्दी भर भी जाता है। सो अगर तुसीं वेट लॉस करना चाहुंदे हो ना, तो खीरा जिहड़ा हैगा मस्ट हैगा अपनी डाइट दे विच ऐड करना। सो गर्मियां दे मौसम दे विच तां अपने आप दे विच इक सुपर फूड कह सकते हैं, क्योंकि गर्मियां दे विच सानू सारयां नू पता है कि पसीना बहुत ज़्यादा आंदा जिहदे नाल साडी बॉडी दे विच पानी दी कमी हो सकती है, तो असी बहुत ज़्यादा लो भी महसूस करते हैं, तो एनर्जी एवें लगता है कि हाँ बॉडी च है ही नहीं। खीरा या फिर खीरे दा जूस जिहड़ा हुंदा है साडे शरीर दे मतलब पानी ते इलैक्ट्रोल्स दी कमी नू पूरा करदा है, ते नाल ही नाल सानू एक्टिव भी रखदा है। बाकी रही बई चेहरे ते चमक लियाण दी गल, खीरे दे नाल चेहरे ते चमक किद्दां आएगी वह भी तुहानू आके दस दी हां, सारा कुछ इक्को वार नहीं दस देना। हाँ जी जी, ते फिलहाल अपने लंच दी थाली वास्ते खीरा जड़ा है ककुंबर जरूर अज ऐड कर लेना। मैं तुहाडे लई ऐड कर रही हाँ जी एक गीत।

Once again, welcome back है जी, tune in के तहत 102.7 FM Rainbow program चल रहा है जी, होम स्वीट होम। ते मैं हाँ जी थोड़ी अपनी साक्षी थोड़े नाल। वैसे ककुंबर दे खीरे दे खांदे की फायदे ने वो तो थोड़े नाल असी शेयर कर ले, मतलब साड़ी सेहत नाल केड़ियां केड़ियां चीज़ां ने जो जुड़िया हुई ने, ते सानू की फायदा मिलता है कि स्ट्रेस जो है, ते खीरा जड़ा है बहुत हेल्पफुल है, मतलब साड़े बॉडी जिहड़े स्ट्रेस वाले हॉर्मोनस हुंदे ना उन्हां नू घट करन दे विच हेल्प करदा है। दे नाल ही नाल गर्मी दे मौसम दे विच साडे पेट नू जिहड़ा है ठंडक पहुँचाउंदा है, ते नाल ही नाल जे आपां डीटॉक्स वाटर खीरे वाला यूज़ करदे हाँ ते ओह वी बहुत ही ज़्यादा वधिया है। साडे शरीर दे विच जिन्ने वी बैड टॉक्सिनस हैगे ने ओह बाहर आंदे ने, साडा मैटाबॉलिक

तो हर डे मैं क्या जी सेविंग से भी लोड ही वधेगा। सो टेम्परेचर 24 तक ही रखो, ये नाल ही नाल कमरा जेड़ा हैगा जिद्दां ही ठंडा हो जाए तो 16 या 18 डिग्री जे डिस्प्ले एसी ते तुहानू शुरू हो जावे टेम्परेचर दिखना तो एसी नू बंद कर दो। थोड़ी जी ब्रेक देनी भी एसी नू जरूरी हैगी है, 1 घंटा 1.5 घंटा उन्हें बंद रखो। ये नाल ही नाल एसी दी टाइम टू टाइम जेड़ी सर्विस हुंदी है बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो कई लोग तो की होंगे कि पूरी पूरी रात एसी जड़ा उन्होंने कमरे से चलता रहता, उन्होंने होंगे कि कौन हूँ उठ के इनू बंद करेगा। उस केस दे विच तुसी एसी दे टाइमर लगा सकते हो, सैट कर सकते हो, 3 या 4 घंटे बाद एसी जड़ा है ऑटोमैटिक कट ले लेगा। सो एसी अगर थोड़े स्प्लिट लगा है तो आउटडोर जी डिवाइस लगा हुआ है एसी का उसकी प्रॉपर जी वेंटीलेशन उन्होंने मिलनी चाहिए, वह ध्यान जरूर रखो ताकि क्रॉस वेंटीलेशन भी जी है और जरूर मिलती रहे। तो जे विंडो एसी हैगा ध्यान रखो कि उत्ते सीधी धुप ना पे, जे सीधी धुप पै भी रही है तो शाम के टाइम पर तुसी एसी बंद करके एसी की जी बाहरली आउटर बॉडी हैगी उत्ते थोड़ा जहा ठंडा पानी भी पा सकते हो। नाल ही नाल स्टेबलाइजर्स जिहड़े ने उन्हां दा इस्तेमाल जरूर करो क्योंकि वोल्टेज जिहड़ी है गर्मी दे मौसम दे विच अचानक वध घट हो जाती है जिहदे नाल शॉर्ट सर्किट का सब तो ज़्यादा खतरा रहिंदा है। सो इस करके स्टेबलाइजर्स जिहड़े ने अच्छी क्वालिटी दे ही इस्तेमाल करो। मैं तो भई यह सारिया चीज़ा पेन डाउन कर लिया तो आई होप तुसी भी यह सारिया चीज़ा पेन डाउन कर लिया हो ताकि इदा की प्रॉब्लम जी है ब्लास्ट की साढ़े कार या साढ़े आस पास किसी नाल भी ना हो। सो गर्मी तो बचा तो नाल नाल मैं कह जी अपने सेविंग्स से भी बचा, मतलब कि टैंपरेचर अगर असी सही सैट करिए बिजली का बिल भी घट आ सकता, पर गाने की कमी ना ना गाने घट कदी नहीं हो सकते। प्रोग्राम चल रहा जी होम स्वीट होम, सुखविंदर सिंह की आवाज़ दे विच आ रहा है जी अगला गीत तुहाडे रेडियो सेट ते। जोगी माही जी तुसी करो जे इंजॉय, इदां ही बने रहो प्रोग्राम होम स्वीट होम दे विच।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानूं जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: छोटा भरा है ना, बहुत शरारती है। कॉलेज विच मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा नूं दिखाउंदा सी। कल मैं लाइट ते बिल ते जीरो अमाउंट वेखी। मैं सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किता होगा, नहीं तो जीरो बिजली बिल किवें पॉसिबल है। पूछया ते आखन लगा वीर जी सब ऊपर वाले दी मेहर है, सोलर पैनल है ना। मैं क्या ओहे ठीक है पुत्र।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in।
3: हर

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र।

जी ट्यूनिंग के तहत 102.7 FM रेनबो प्रोग्राम चल रहा है जी होम स्वीट होम ते मैं हाजी थोड़ी अपनी साक्षी थोड़े नाल ते काले छोलियां दे कोफ्तियां दे असी जिहड़ा हैगा बनाण दी तैयारी कर रहे सीगे ते जिहड़ी समगरी हैगी है की चाहीदा सानू मैं तुहानू दस चुकी हाँ ते बस हुण लास्ट वार एक बार फिर तो दस रही हाँ ते फिर इहनू बनाण दा स्टाइल यानी कि इहनू बनाउणा किद्दां उह वी दसांगी। सानू चाहीदा की है जी इहदे लई 2 कप काले छोले उबले हुए चाहीदे ने, नाल ही नाल 2 आलू उबले हुए, 2 हरिया मिर्चा, 1 चम्मच अदरक लसन का पेस्ट, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, तो उस तो बाद ही 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 स्पून गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, 2-3 चम्मच बेसन या फिर ब्रैड क्रम्स के नाल ही नाल तलन के लिए अपनी पसंद का कोई भी तेल का इस्तेमाल तुम कर सकते हो। तो ग्रेवी लई जी 2 टमाटर की प्यूरी चाहिए है, 1 प्याज का पेस्ट चाहिए बनया हुआ, 1 चम्मच अदरक लसन का पेस्ट, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच ही हल्दी का, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच ही गरम मसाला, तो 2 चम्मच क्रीम या फिर असी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 कप पानी ते हरा धनिया जी मैं कहा जी गार्निश दे लई भर भर के। सो बनाने दे लई की करना हैगा, सानू कोफ्ते बनाने दे लई उबले हुए काले चने अते आलू जिहड़े हैगे है दोनों चीज़ां नू असी चंगी तरह मैश कर लेना है। फिर इस विच प्याज, हरी मिर्चा, जिहड़े मसाले ने ते बेसन जिहड़ा हैगा उह असी पा के चंगी तरह एक आटे वांगू कह सकदे हो डो, मतलब आटे तो थोड़ा जिहा नरम होएगा तो वह बना लेना है। तो उस तो बाद इहदी छोटियां छोटियां जिहियां बॉल्स जिवें आपां मंचूरियन दियां बनाने आ बॉल्स वह रेडी कर लैणियां ने। फिर उस तो बाद कढ़ाई दे विच जिद्दां ही तेल गर्म हो जाए तो इन्हां नूं असीं गोल्डन क्रिस्पी जिहड़ा हैगा सारे इन्हों कोफ्तियां नूं फ्राई कर लेना है। तो कोई भी चीज़ जदों तुसीं फ्राई कर रहे हुंदे उन्हां नूं लो टू मीडियम ते फ्राई करो, उहदे नाल की हुंदा है उह चीज़ दा क्रिस्प जिहड़ा हैगा ना उह वध जांदा है ते मतलब सड़िया सड़िया वाला जिहड़ा उत्तों काला काला रंग आंदा ना वह नहीं आंदा, बहुत ही सोहना जिहा गोल्डन कलर आंदा है। तो उस तो बाद कोफ्ते जी साढ़े हो गए रेडी, हुण इहनां नूं रख दो जी एक साइड ते हुण असीं आने आ ग्रेवी वल कि ग्रेवी किद्दां तैयार करनी है। पैन दे विच तेल गरम कर लेना है, फिर उस तो बाद आपां हल्का जिहा उत्ते जीरा जिहड़ा हैगा उह पाउणा है जीरा, फिर उस तो बाद प्याज का पेस्ट पा के उहनूं भुन लेना जदों तक वह हल्का

जी, ट्यूनिंग के तहत उसी 102.7 FM रेनबो प्रोग्राम चल रहा है जी, मिड डे मेलोडीज़ ते खूबसूरत जे गाणियां दा सफर जिहड़ा है ना, उसकी शुरुआत हो चुकी हुई है। सो ये गाने जिहड़े ने ना रेट्रो सॉन्ग्स, चाहे वह 60s दे होन या 70s दे होन या 80s दे होन, मतलब जदों भी इन्हों सुनते हैं एक वक्रा ही इन्हों दे विच कह सकते हैं कि अपनापन मिठापन होंदा है। ता ही ता इस प्रोग्राम का नाम भी मिड डे मेलोडीज़ है। अगला गाना लता जी की आवाज़ दे विच, ते जिस मूवी का यह गीत हैगा ना, अपने हिसाब दे नाल उस टाइम मतलब यह जो मूवी की एंडिंग सी काफ़ी एक्सपैरिमेंटल मनी गई सी। मूवी का नाम है जी गाइड, तो वह एक खूबसूरत जहा गीत जड़ा है आ रहा है तो रेडियो सैट पर।

ਟਿਊਨ ਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 102.7 FM ਰੇਨਬੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਿੱਟੇ ਮੈਲੋਡੀਜ਼। ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਹੀ ਖਬਰ ਨਾ ਲਗੇ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਸ ਕਦਰ ਨਾ ਲਗੇ। देखा है तुम्हें उस नजर से जिस नजर से तुम्हें नजर ना लगे। सो अगला गीत मिड डे मेलोडीज जा रहा है फ्रॉम द मूवी यादों की बारात, रफी साहब ते आशा जी की आवाज़ दे विच। ते यादों की बारात मूवी की अगर असी गल करिए ना, ते अपने टाइम दे विच बॉलीवुड की यह पहली मसाला मूवी मनी गई सी।

Once again, welcome back, Hedi. Tune in kita hoya tusi 102.7 FM Rainbow program chal raha hai ji, Midday Melodies. Te main haan ji tuhadi apni Sakshi tuhade naal. Agla geet jo tuhade layi play hon ja reha na, oh ik geet nahi hai, apne aap de vich keh sakde haan ki ik deep feeling hai. Jide vich love hai, emotions hege hai, te naal hi naal Asha Parakh ji da magic vi hai. गाने नू गाया है जी मुकेश जी ते आशा भोसले जी ने ते फिल्म है उधार का सिंदूर जो कि 1976 दे विच रिलीज़ हुई सी। इदा ही बने रहो ते ट्यून इन करके रखो जी मिड डे मेलोडीज़ प्रोग्राम 102.7 FM रेनबो ते।

बंदा चाहता है कि उसे रहने को घर मिले। वैसे जिहड़े घर दी चाह हुंदी है या अपना आशियाना जिहड़ा हुंदा है ना, वह चाहे पंछी होन चाहे इंसान होए, हर एक नूं रहिंदी है। अगला गीत आ रहा जी तपस्या मूवी तो, जो कि 1976 दे विच रिलीज़ हुई सी। गाने दे बोल ने दो पंछी, गाया है किशोर जी ते आरती मुखर्जी ने।

प्रोग्राम चल रहा जी मिड डे मेलोडीज़, मैं हाँ तुहाडी अपनी साक्षी तुहाडे नाल। ते अगला गीत जो तुहाडे लिए प्ले होन जा रहा ना, उहदे विच लेजेंडरी सिंगर

प्रोग्राम चल रहा है जी मिड डे मेलोडीज। कहते हैं कि मालूम भी है कि ये मुमकिन नहीं, मगर एक आस सी रहती है कि वो याद करेगा। और कई बार तो भी कहते हैं कि अगर हिचकी लग गए ना तो समझो कि कोई थानू याद कर रहा है। तो याद जदों सानू किसी की आती है ना तो उदों भी मन जिहड़ा हुंदा है वो बेचैन जिहा ही रहिंदा है। सो इदा दा ही एक गीत आ रहा है फ्रॉम द मूवी स्वामी जो कि 1977 दे विच रिलीज़ हुई सी। गाने च आवाज़ है जी।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: यार सच दसा हुणे तां गर्मियां शुरू होईयां ने ते 7-7 हज़ार रुपए बिजली दा बिल भी आउण लग पिया। वाइफ कदों तो बोल रही है सोलर पैनल लगाउण लई, वो आखदी है कि सरकार सबसिडी भी दे रही है। मैं जिन्हां नूं भी पुछिया उन्हां सब दा बिजली दा बिल जीरो आ रहा, इस बार मैं लगा ही दिना। जदों बिजली मुफ्त मिलदी है तां लै के नहीं रहे वीर, तुसीं भी लगा ही दिओ।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: FM बैंड 102.7 MHz ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुन तो कुछ को पलां च तुसी साडे प्रदेशिक चैनल तो पंजाबी विच खबरां सुनोगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज वख वख सरकारी विभागां ते संगठनां विच नवनियुक्त नौजवानां नूं 51,000 तों वध नियुक्ति पत्र तकसीम कीते। पंजाब च रोजगार मेले दौरान रेल कोच फैक्टरी कपूरथला च केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अते पटियाला लोकोमोटिव वर्कर्स च मुख प्रशासकीय अधिकारी ने नवनियुक्त नौजवानां नूं नियुक्ति पत्र वंडे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अज दोपहर बाद नवी दिल्ली पहुंचे। श्री रूबियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल करनगे मुलाकात। जलंधर स्थित एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वालों इंडियन कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी के सकत्र अजय सहगल मनी लॉन्ड्रिंग मामले च गिरफ्तार। मोहाली की विशेष अदालत ने उसनों 27 मई तक ईडी रिमांड से भेजा। आईपीएल क्रिकेट में अज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला लखनऊ च शामी 7:30 बजे पंजाब किंग्स नाल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज वख वख सरकारी विभागां ते संगठनां च नवनियुक्त नौजवानां नूं 51,000 तों वध नियुक्ति पत्र वंडे। रोजगार मेला देश भर विच 47 थावां ते आयोजित कीता गया। देश भर तों चुने गए नवे भर्ती होए उम्मीदवार रेलवे, गृह मंत्रालय, सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय ते उच्च सिक्ख्या विभागां समेत वख वख मंत्रालयां अते विभागां विच शामिल होणगे। रोजगार मेले नूं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने लई उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि देश दुनिया के वखो वख मुल्कां नाल भी भाईवाली कर रहा है, जिसका उद्देश देश के नौजवानों नूं मौके रुजगार ते आलमी मौके प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का भरोसेयोग सप्लाई चेन भाईवाल बन रहा है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत

0: बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय नागरिक साल 2047 तक भारत नूं विकसित भारत बनाउण लई वचनबद्धता नाल काम कर रहा है ते इस नूं प्राप्त करन वास्ते देश कई खेतरां च निवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा,
0: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: इधर पंजाब चुन्नीवा रोजगार मेला अज रेल कोच फैक्टरी कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्कर्स पटियाला समेत दो थावां ते करवाया गया, जिथे 281 नवनियुक्त लाभार्थियों नूं नियुक्ति पत्र वंडे गए। आरसीएफ कपूरथला विखे केंद्रीय पेट्रोलियम ते कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रोग्राम की प्रधानगी करदिआं आख्या,
2: रोजगार मेला देश भर में पावरफुल नेशनल इंस्टीट्यूशन बन गया है, जो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, मेरिट बेस्ड और टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट के लिए। आज देश भर में 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स हैव बीन हैंडेड ओवर बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ये ईच अपॉइंटमेंट लेटर एक सिर्फ सरकारी या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, एक तरफ से ये नेशन बिल्डिंग के लिए प्लेज भी है फॉर द शेयर्ड ड्रीम ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया।
1: बाद विच उन्हां ने 93 नवनियुक्त उम्मीदवारां नूं नियुक्ति पत्र तकसीम कीते। इस मौके नियुक्ति पत्र हासिल करन वाले नौजवानां ने सरकार दा शुक्रिया अदा कीता।
3: मेरा नाम अजय कुमार है, मैं राजस्थान के जिला बीकानेर का रहने वाला हूं और मेरा चयन SBI जूनियर एसोसिएट के पद पर हुआ है। केंद्र सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं।
4: मैं आकाश वर्मा जोधपुर राजस्थान से हूं, मुझे रेलवे में ऑफिस एग्जीक्यूटिव के पद पर नियुक्ति मिली है।
5: मेरा नाम ज्योति है, मैं हनुमानगढ़ राजस्थान की रहने वाली हूं। मैं SBI जूनियर एसोसिएट पद पर चयनित की गई हूं। मैं केंद्रीय सरकार को तहे दिल से इसके लिए धन्यवाद करती हूं।
6: माय नेम इज तजिंदर सिंह कंडा एंड आई एम फ्रॉम बठिंडा पंजाब एंड आई एम सिलेक्टेड फॉर जूनियर एसोसिएट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन।
1: उधर पटियाला च पटियाला लोकोमोटिव वर्कर्स के मुख प्रशासकीय अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव ने मुख मेहमान वजों शिरकत करदिआं वख वख विभागां च नवे भर्ती कीते 188 नौजवानों नूं नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्हां आख्या,
7: आज यहां पर 19वीं रोजगार मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें ऑल इंडिया स्तर पे लगभग 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, जिसमें से PLW में 188 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। 188 नियुक्तियों में से करीब 65 पंजाब से हैं, 128 इंडियन रेलवे में हैं और इंडियन रेलवे के 128 में से करीब 11 हैं वो पंजाब से संबंधित हैं।
1: इस दौरान नवनियुक्त उम्मीदवारों ने कहा,
8: मेरा नाम विजय दुबे है, मैं उत्तर प्रदेश अयोध्या से बिलोंग करता हूं और मैंने यह परीक्षा 2024 में इस परीक्षा का फॉर्म भरा था। मुझे प्रोडक्शन यूनिट में एज अ JEE मैकेनिकल जॉब मैंने पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं।
9: मैं बेसिकली लुधियाने तो हूं।
10: मेरा नाम शालिनी चतुर्वेदी है, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूं। 2026 में मेरा सिलेक्शन एज ए डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के तौर पे हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आभारी हूं, क्योंकि उन्होंने इस एग्जाम को काफी अच्छे से कराया है, इसमें किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई है और जो इस पद के हकदार थे उन्हें मतलब ये पद मिला है।
1: अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर बाद नवी दिल्ली पहुंच गए ने। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ विखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात करेंगे। श्री रूबियो कल विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर नाल भी दवल्ली मीटिंग करेंगे। सोमवार को श्री रूबियो आगरा ते जयपुर जाएंगे। इस तों बाद मंगलवार को नवी दिल्ली च क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग च शामिल होंगे। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर और यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIRR जलंधर। जलंधर स्थित एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने इंडियन कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी के सकत्र अजय सहगल नूं फर्जी सहमति पत्र जमा करवा के धोखाधड़ी नाल जमीन की वरतों च तब्दीली प्राप्त करन नाल संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले च गिरफ्तार किया है। यह जांच पंजाब पुलिस वालों किसानों दी शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज किए जाने बाद की गई सी। विभाग की जांच में पता लगे कि मुलजमान ने 15 जमीन मालकों की 30 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ

खूबसूरत जहा गीत फ्रॉम द मूवी खूबसूरत तो ही तुसी सुन रहे सी, जो कि 1980 विच रिलीज़ हुई सी। सारे नियम तोड़ दो ता पता नहीं, पर हाँ टाइम ते चलना जड़ा है असी सारे नहीं छड़ सकते। सो टाइम जड़ा हैगा हुन इशारा कर रहा है कि मेरे जान दा टाइम हो चुका है। मिड डे मेलोडीज़ का खूबसूरत जहा सफ़र अज का असी इत्थे ही वाइंड अप करते हैं। तो साढ़े जिहड़े अगले दोस्त ने वो भी अपना जिहड़ा शायराना अंदाज़ कुछ कु देर बाद साडा अगला प्रोग्राम दिल आज शायर है तुसी उन्हां दी आवाज़ दे विच सुनोगे। फिर तुहाडी ते मेरी जल्दी ही मुलाकात होएगी। टिल दैन जी अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर जी।

दिल जदों अल्फाज नाल मुलाकात कर दे है, दिल जदों अल्फाजा नाल मुलाकात कर देने, हर एहसास शायरी दी

बात करते ने, कुछ लफ्ज मुस्कुराहट बन जाते ने, ते कुछ दिल की आदत बन जाते ने, ते कुछ महफिलां याद बन के रह जांदियां ने। ते बिल्कुल अज दी शाम भी कुछ इस तरह की ही होगी, जिथे जज्बात, मुहब्बत ते शायरी ये सारे खूबसूरत रंग होंगे। स्वागत है जी तुहाडा प्रोग्राम दिल आज शायर है दे विच, ते मैं वंदना प्रोग्राम दे विच तुहाडे नाल बनी हुई हाँ, ते उड़ीकांगी तुहाडे खूबसूरत जे मैसेज इस प्रोग्राम दे विच 9855101027 दे उते। तुसी भी अपने सोहणे सोहणे मैसेजेस जिहड़े ने ओह मैनूं भेज सकदे हो, अपने दिलां दे जज्बात किसे पोइट नूं फॉलो करदे हो तां उहनां दी लिखत, अपना नाम ते अपने शहर दा नाम। जी हाँ, इस खूबसूरत जी शाम तनी मैं कहांगी, खैर हले, पर आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज है सैटरडे, शनिवार। तो शनिवार का दिन जड़ा होंदा अलग ही वाइब लेके आंदा है। तो आज इस खास प्रोग्राम ते खास दिन दे उत्ते इस प्रोग्राम दे विच मैं उड़ीक रही हूँ तुहाडे सोहणे सोहणे जे मैसेजेस। तो तुसी फिलहाल इंजॉय करो एक बहुत ही खूबसूरत जिहा ट्रैक सतिंदर सरताज जी की आवाज़ दे विच, ते मैं आ रही हाँ फटाफट तो वापस तुहाडे भेजे हुए स्नेहियां दे नाल। ते सुनदे रहो मेरे नाल प्रोग्राम दे।

मेरी नादानियाँ सिर्फ तुम्हारे हिस्से में आई हैं, मेरी नादानियाँ सिर्फ तुम्हारे हिस्से में आई हैं। दुनिया ने तो मुझे हमेशा सुलझा हुआ ही देखा है। प्रोग्राम चल रहा है जी, दिलाद शायर है ते तुसी बने हुए हो मेरे नाल, यानी कि अपनी दोस्त वंदना दे नाल। ते मैसेजेस बहुत सारे आ रहे ने ते मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैसेज जड़े ने थोड़े जे छोटे भेजे जान ताकि वो मैसेज मैं प्रोग्राम दे विच शामिल कर लवां ते मैसेज जड़े ने वो प्रोग्राम दे हिसाब दे नाल इदां दे होने चाहिए ने जिन्हां नूं पढ़ के ना दिलां दे नाल दिलां दा एक तार जुड़दा होया दिखे। कहिंदे कितना भी चाहो ना भुला पाओगे हमें, कितना भी चाहो ना भुला पाओगे हमें, जितनी दूर जाओगे नज़दीक पाओगे हमें। मिटा सकते हो तो मिटा दो यादें मेरी, मगर क्या सांसों से जुदा कर पाओगे हमें। ये मैसेज है जी

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकियां दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC

वो मेरी रूह की चादर में आके ऐसे छुप गया। वो मेरी रूह की चादर में आके ऐसे छुप गया कि रूह निकले तो वो निकले, वो निकले तो रूह निकले। FM रेनबो दी कड़ी दे उत्ते वक्त हो गया है जी, ठीक 2:24 ते 8 सेकंड्स ते प्रोग्राम तुसी एंजॉय कर रहे हो मेरे नाल अपनी दोस्त वंदना दे नाल। दिल आज शायर है ते जे तुसी हुणे ट्यून इन कीता है प्रोग्राम FM रेनबो दे उत्ते ते तुसी वी 9855101027 दे उत्ते अपना कोई सोहना जिहा मैसेज मैनू भेज सकदे हो। मैं प्रोग्राम दे विच उस मैसेज नू जरूर शामिल करांगी। अपना नाम, अपने शहर का नाम या अपने पिंड का नाम ते एक सोहना जिहा मैसेज किसी खास वास्ते या अपने वास्ते या प्रोग्राम लई। कहिंदे वे सज्जना दिल मेरे नूं पई ठग दी है, तेरे चेहरे दी मुस्कान वे सज्जना मेरे दिल नूं पई ठग दी है। बेशक तकिया लख वारी मैं तैनूं पर फिर भी रूह ना रज दी है। मैं जकड़ी गई जंजीर तेरी विच, मैं जकड़ी गई जंजीर तेरी विच, ना कुछ कहण तों जिंद हुण डर दी है। रेंदी रूह प्यासी दीदार तेरे नू, मैनू लोड़ ना मक्के हज दिए।

ये मैसेज है जी, पिंड महरमपुर नवा शहर तरलोचन टेलर ते, बहुत सोहना जहा मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करन वास्ते। एक साढ़े नवे लिसनर जड़े हुणे हुणे जुड़े ने, मैं देख रही सी उन्होंने भेजे हुए मैसेजेस, उन्होंने एक बड़ा ही सोहना जहा मैसेज जड़ा सी नॉर्मली बोलते भी हाँ और सच्चाई भी है जिदे विच, कहिंदे ने सच सियाणे बोल गए रब जिही सच्चाई जापे, तीन रंग नहीं लभणे बीबा हुसन जवानी ते मापे। जी हाँ, बहुत सोहना जहा मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया जी। गल की सच्चाई बहुत डूंगी है ये भी कि ये जड़ियाँ तीनों चीज़ा ने ये वापस मुड़ के नहीं आदियाँ, इस करके इन्हों की जिनी कदर की जाए उन्नी घट है। नाम सुखदीप सिंह तिवान, पिंड बडाली नेड़े कुराली शहर जिला रोपड़ तो। कहते सौं दी रसीद नहीं हुंदी ते वादे दा बिल नहीं हुंदा, मुहब्बत दा दिमाग नहीं हुंदा ते धोखे दा दिल नहीं हुंदा। अमरजीत जस्सल जी ने प्रेम मार्केट बठिंडा तो ये बहुत ही सोहना जहा मैसेज भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया जी मैसेज करने लिए। प्रोग्राम

0: एक जमाने विच हुकम सिंह नू उस दे घर वाले कुड़कुड़दास बुलाउंदे सन क्योंकि लाइट पखे चलदे देखदे ही उह सारयां ते चिकन लगदे सन।
1: ओ रामू, ए पखा क्यों चलदा छड़ता? बिजली दा बिल की तेरा बापू भरेगा।
0: पर अज सारे उन्हां नू प्यारा सिंह कहंदे ने क्योंकि जदों तो उन्होंने सोलर पैनल लगाया है उदों तो मीटर दी सुई भी शांति नाल सौंदी है। अते हुकम सिंह भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अज ही रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in ते।

मैं उम्र भर ना दे सका उनका अदद जवाब, वो एक नजर में इतने सवाल कर गए। हम कह ना पाए हाले दिल उन्हें कभी, वो समझ ना पाए खामोशी क्या चीज है। ये मैसेज राम स्वरूप अरोड़ा चौंक चेलियां सुल्तानपुर लोधी तो, बहुत बहुत शुक्रिया इस मैसेज नु भेजन लई। माना कि हम लड़ते बहुत हैं मगर प्यार भी बहुत करते हैं, हमारे गुस्से से नाराज ना हो जाना, क्योंकि गुस्सा ऊपर से करते हैं मगर प्यार दिल से करते हैं। चौहान जी अमृतसर तो ये मैसेज भेज रहे ने, बहुत बहुत शुक्रिया। पर एक चीज़ मैं कहना चाहवागी कि चलो ठीक है, प्यार दिल तो जरूर होंगे पर गुस्सा जड़ा है ना वो थोड़ा जहा लिमिट में ही हो तो ज़्यादा बैटर लगता, क्योंकि कई बार जड़े शब्द होंगे ने ना वो चाहे तुम दिल के रखो चाहे ना रखो, पर कई बार शब्द जड़े ने वो बहुत व्डा रोल प्ले करते हैं किसी भी रिश्ते। इस करके अंदर प्यार है ते नाल नाल प्यार तुहाडी जुबान तो भी झलकना चाहिए। जी हाँ, FM रेनबो 102.7 दे उते तुसी प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो दिल आज शायर है, ते मैं तुहाडी दोस्त वंदना तुहाडे नाल इस प्रोग्राम दे विच बनी हुई हाँ। बहुत सारे मैसेजेस मैनू आ रहे ने इस प्रोग्राम दे विच, ते जिन्हां ने हुणे ही ट्यून इन किया 9855101027 9855101027 दे उते तुसी भी अपने बहुत सोहणे सोहणे मैसेजेस जिहड़े ने ओह मैनू भेज सकदे हो इस प्रोग्राम दे विच शामिल कराउण लई। कहिंदे अगर ढूंढने पर मिल जाता कोई मीत कहीं से लाते, अपनी सारी खुशियां देकर उसके सारे गम पी जाते, मगर भाग्य की रेखाओं में नहीं किसी का साथ लिखा था, हम कैसे इस निष्ठुर जग में प्यार भरे संबंध बनाते। सुभाष चंद्र वत्स गिद्दड़ बहातों, बहुत खूबसूरत जहा मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज भेजन लई। एक होर बहुत खूबसूरत जहा मैसेज कहिंदे औरत अपनी उम्र छुपावे ऐब छुपाउंदा बंदा, धी मापियां तो दुख छुपाउंदी पुत छुपाउंदा पंगा, झूठा बंदा मूँह छपावे ओ छपाउंदा ते तन छपाउंदा नंगा, कोड़ी अपने जख्म छुपावे गंज छुपाउंदा गंजा, अज तक कोई दस ना सकिया ना चंगा ना मंदा। काफ़ी डीप मैसेज भेजे तो भेजन वालों का नाम है जी गुरविंदर जौड़ा, परमजीत जौड़ा, डॉक्टर रणजीत जौड़ा तरन तारण तो, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज भेजन वास्ते। कहते बहुत अजीब है वह शख्स जिसे ना चाह कर भी दिल दे बैठे, और ये सब जानने के बाद भी कि वे किसी और का है। प्यार जड़ा हुंदा ना वो इस तरह दे नाल नहीं हुंदा वैसे भी कि असी शर्त रख के प्यार करिए, प्यार वो हुंदा जड़ा बिना शर्तां तो हुंदा। बहुत सोहना मैसेज ये मैसेज जी गगनप्रीत कौर टांडा तो। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करन वास्ते गगनप्रीत। एक होर मैसेज बहुत अच्छा लग रहा है कि तुहाडे सारयां दे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, ये मैसेज पढ़ांगे तो उस तो बाद सुणांगे अगला ट्रैक। माँ कहिंदी पुत सताया ना कर, माँ कहिंदी पुत सताया ना कर, नित नवा नशा पत्ता खाया ना कर,

हमें मेहमान समझने लगेगा। सोनू मलेरकोटला तो, और ये जिंदगी की सच्चाई है जी ये भी, क्योंकि लाइफ दे विच बहुत सारिया चीज़ा हुंदिया ने, नवे नवे चेंजेस आते हैं जिंदगी दे विच, असी बहुत सारे पड़ा पार करते हैं, कई बार घरों निकलना पैंदा है छड़ के घर बार अपना, पर ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है और अपने आप को खुशनसीब समझना चाहिए कि जे सानू यह मौका मिलता कि असी थोड़ा जा एक स्टेप अगे लैके अगे वध के कुछ करिए अपनी जिंदगी विच। एक बहुत सोहना जहा मैसेज, पर इस मैसेज के पॉजिटिव पार्ट नूं मैं जरूर पढ़ना चाहवांगी, क्योंकि असी सिर्फ जिंदगी दे बारे च उदासी या फिर इमोशंस हमेशा उदासी दे नाल नहीं जुड़े होंगे, इमोशंस जड़े ने वो खुशी दे नाल भी जुड़े होंगे ने ना। कहिंदे अब मुस्कुराना सीख लिया है मैंने, दर्द छुपाना सीख लिया है मैंने, जो लोग साथ छोड़ जाते हैं अक्सर उनके बिना जीना सीख लिया है मैंने। ये हिस्सा जड़ा है ये मैं पढ़िया है इस खूबसूरत जे मैसेज का, क्योंकि जिंदगी नू इसे एटीट्यूड दे नाल असी जे जीने ना तो साड़ी जिंदगी जड़ी है बहुत सौखी हो जाती है। मैसेज आया जी मुहम्मद मुजफ्फर मुहम्मद अरमान पेंट खुर्द जिला मलेरकोटला तो, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करन वास्ते। तो इन्होंने एक लिखी है चीज़ नीचे कि वंदना मैम आपकी आवाज़ मेरी सिस्टर की आवाज़ लगता है, उसकी आवाज़ और आपकी आवाज़ सेम ही है। देखो जी कहिंदे ने ना जिंदगी दे मतलब दुनिया दे विच बहुत सारे इंसान ने जिहड़े एक दूसरे नाल मिलते हैं, उन्होंने आवाज़ा उन्होंने शक्लां, तो हो सकता है कि कुछ इदा का ही हो। अच्छा एक साढ़े होर लिसनर ने मैं लगता है कि इन्होंने भी नवा नवा ही हुणे हुणे मैसेज जड़े ने साढ़े प्रोग्राम दे शायद करने शुरू किए ने, अच्छा लग्या देख के कि कुछ नवे लिसनर्स भी जो जुड़ रहे हैं मैसेजेस दे थ्रू। असी कंटिन्यू करांगे जी तुहाडे नाल इस उम्मीद दे विच कि ये सांझ जड़ी है बहुत लंबी चले। मैसेज है जी दविंदर कुमार भारगो कैंप जलंधर तो, ते ये मैसेज लिखते ने, इन्होंने लिखिया प्यार उस दे नाल ही करो जो तुहाडी कदर करे। चलो ठीक है जी, बहुत सोहनी जी एक लाइन तुसी लिखी है, बट मैं प्रोग्राम च इस करके जरूर शामिल की है कि तुहाडी हौसला अफजाई हो सके ताकि तुसी प्रोग्राम दे विच साडे नाल इसे तरीके दे नाल बने रहो। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करन लई। ते फिलहाल वेला हो गया जी एक गीत नूं सुनन दा, इस गीत तो बाद विच फटाफट तो वापस आओ। तो जिन्हां ने हजे तक मैसेज फॉरवर्ड नहीं किए मतलब कि अपने मैसेज अपने स्नेहे नहीं भेजे ने 9855 10 10 27 दे उत्ते, तुसीं वी इस प्रोग्राम दे विच अपना खूबसूरत जिहा मैसेज अपना नाम ते अपने शहर या पिंड दा नाम भेजो ते मैं प्रोग्राम दे विच जरूर शामिल करांगी तुहाडे इस सोहणे जिहे स्नेहे नूं। फिलहाल सुनदे आ नैक्सट ट्रैक।

कहिंदी तेरी मोहब्बत का ये आलम है मेरे दोस्त, हर पल बस तेरा ही इंतज़ार रहता है। तुम मेरे धड़कते दिल का करार हो, सजी हुई इस महफिल की बहार हो। मैसेज है जी सोनू फ्रॉम ओमान। अच्छा ओमान तो आया मैसेज है, बहुत बहुत शुक्रिया जी ये मैसेज भेजने वास्ते। फिलहाल हुण वेला हो गया इस प्रोग्राम नू इत्थे वाइंड अप करन दा। बहुत सोहणे सोहणे तुसीं मैसेजेस भेजे मैनू इस प्रोग्राम दे विच शामिल करन लई, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा इस प्रोग्राम च मेरे नाल बने रहन लई। ते फिलहाल हुण चलांगे असीं दिल्ली FM रेनबो वल, उत्थे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर असीं सुणांगे, देखदे आं कि अज किहड़ी इनफॉर्मेशन साडे वास्ते है स्पैशल। ते उस तों बाद इच ठीक 4 बजे हैलो जलंधर दे विच फिर मुलाकात होएगी। ते सुणदे आं जी FM रेनबो दिल्ली तों साडा प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, ते मिलांगे बहुत जल्दी वापस ठीक 4 बजे।

0: आकाशवाणी। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं शालिनी मित्तल और शुरू हो गया है आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, जो रखता है आपके स्वास्थ्य का ख्याल। और गर्मियां बहुत पड़ रही हैं, भीषण गर्मी है और इस गर्मी का प्रभाव हमारे शरीर के हर अंग पर पड़ता है। आज हम बात करेंगे गर्मी का प्रभाव हमारी आंखों पर कैसे पड़ सकता है। जी हाँ, आज का यही हमारा विषय है, समर्स एंड आई केयर, गर्मियों में हम अपनी नेत्र रक्षा कैसे करें। और आज के हमारे रेडियो डॉक्टर हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर मानवदीप सिंह, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी डॉक्टर आरएलएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली में। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का स्वागत करें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के एफएम के स्टूडियो में आपका।
2: शुक्रिया, नमस्कार।
1: तो डॉक्टर साहब, विषय बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे श्रोता जो हैं इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ते हैं और अपनी समस्याओं को हमारे विशेषज्ञ के सामने रखते हैं और हमारे विशेषज्ञ उनका समाधान करते हैं। तो आज भी हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे श्रोता हमसे अब तक जुड़ गए होंगे। पर सबसे पहला प्रश्न मैं पूछ रही हूँ डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर, गर्मियां बहुत हैं और इन गर्मियों में आंखों की आम समस्याएं क्या होती हैं, ये भी जानना चाहूंगी और साथ ही साथ एक नॉर्मल आंखों की क्या समस्याएं होती हैं, कुछ खास तौर पर गर्मियों में बढ़ जाती होंगी, तो मैं दोनों जानना चाहूंगी आपसे।
2: देखिए, गर्मियों के अंदर एक तो मौसम खुश्क होता है, आजकल अभी बारिश वगैरह नहीं शुरू हुई है, तो बारिश के बाद तो जैसे संक्रमण बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अभी खुश्की आंखों में बढ़ जाती है, ड्राई आईज जैसे वो बढ़ जाती है। बच्चों के अंदर जो मार्च अप्रैल से ही शुरू हो जाता है, एक वर्नल कंजंक्टिवाइटिस जिसको बोलते हैं, एलर्जिक कंडीशन होती है, वो होते हैं। बाकी खेती में जब काम करते हैं तो आंख के अंदर आजकल चोट वगैरह जो है, आंख के अंदर कुछ भी जो है कटाई वगैरह जैसी होती है तो वो आंख के अंदर लगने का खतरा रहता है। और इसके अलावा जो है आंखों को धूल मिट्टी से फॉरेन बॉडी के आंख के अंदर गिरना, वो सभी सीजन में ज्यादा होता है क्योंकि आंधीबाजी चलती रहती
1: है। चलती है और बहुत गर्मी जब होती है तो भी अलग अलग तरह के चश्मे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी हम जानेंगे कि किस तरह के चश्मे होने चाहिए, किस तरह की यूवी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। हम लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और लौटते हैं।

0: जी हाँ, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। और कवि और हमारे जो फिल्मकार हैं और जो लिरिक्स राइटर्स जो होते हैं, गाने जो लिखते हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने आंखों की खूबसूरती और आंखों की सुंदरता पे बहुत गाने रचे हैं। तो हम आपकी पसंद का भी गाना अब बजाएंगे, तो क्या कहना चाहते हैं अब, क्योंकि एक बहुत डेलिकेट ऑर्गन है और बहुत जरूरी ऑर्गन है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। तो गर्मियां जब बहुत ज्यादा पड़ती हैं तो यूवी रेज भी होती हैं जो बहुत हार्मफुल होती हैं,
1: जी
0: तो कैसे बचाव किया जाए सर?
1: देखिए, यूवी रेज से बचने के पहले तो यह है कि आप जब धूप में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो यूवी प्रोटेक्टेड गॉगल्स पहनने चाहिए। जो गॉगल्स हैं, जो बहुत सस्ते ये रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह पे मिलते हैं, उनके अंदर यूवी प्रोटेक्शन नहीं होती। तो आप अगर गॉगल्स खरीदने जाते हैं, किसी दुकान से खरीदते हैं, कोई भी ब्रांड का हो, ब्रांड से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके पास मशीन होती है चेक करने की, तो आप देखो कि उसके अंदर 99% यूवी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। आप उसको बोलिए चेक करके दिखाइए हमें।
0: अच्छा, उसको चेक करने का कोई अलग इंस्ट्रूमेंट होता है?
1: मशीन होती है,
0: मशीन होती है।
1: अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन
0: अच्छा।
1: कितनी है तो वो लीजिए। दूसरा जो है, आपको आंख को धोते रहना चाहिए। आंख के अंदर बहुत तेज धूप के अंदर आप कम निकले बाहर, जो डे के बिल्कुल जो पीक आवर्स होते हैं, सुबह 10-11 से लेकर 3-4 बजे तक अवॉइड करें बाहर जाना। और आंखों को अगर आप, स्पेशली अगर आप 2-व्हीलर चलाते हैं, तो उसके बाद बेशक आप 2 किलोमीटर भी चले, उसके बाद आंखों को धोइए। तो ये सब चीजें जो है गर्मी के अंदर आपको आंख को बचाव करके रखती हैं।
0: जी, तो खाली सादे पानी से धोना ठीक रहता है कि उसमें कुछ मिलाकर
1: नहीं,
0: धोया
1: नहीं,
0: जाए?
1: नहीं, साफ पानी होना चाहिए, बस सादा पानी।
0: तो वो ठीक रहता
1: हाँ
0: है।
1: जी, हाँ जी,
0: जी, तो जब बाहर जाएं और बाहर से अंदर आएं घर में, तो दोनों समय इसको अपने आंखों को धोना चाहिए?
1: बाहर से जाने के टाइम कोई खास जरूरी नहीं होता, लेकिन जो ही बाहर से अंदर आते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में कुछ भी हो, आपकी आंख में थोड़ी बहुत तो धूल मिट्टी गर्मी में जाएगी ही। स्पेशली जब अगर आप 2-व्हीलर चलाते हैं, तो उस वक्त आपकी आंख में जरूर कुछ ना कुछ जाता है।
0: जी, तो हमारे श्रोता फोन लाइन से जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब, पहले इनकी समस्या सुन लेते हैं।
1: हाँ जी,
0: हेलो।
2: जी हेलो।
0: जी
2: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, जो इजाजत कर रहा हूँ।
0: जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, आप प्रश्न कर रहे हैं।
1: नमस्कार जी, बताइए।
2: जी मैं मंगोलपुरी दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी, हाँ जी
2: जी, मैं सर बोल रहा हूँ कि मैं जब सिलाई करता हूँ, सिलाई का काम करते हैं।
1: हाँ जी,
2: तो इसमें मतलब आंख का बचाव कैसे करें?
1: आपकी उम्र कितनी है?
2: जी उम्र जी 28 वर्ष हो रहे हैं।
1: आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आपको ठीक दिखाई देता है तो आप बिल्कुल काम करते जाइए, बेफिक्र रहिए, जितना मर्जी काम कीजिए। बस ये सीधा, जैसे गर्मी के मौसम में खास तौर पे पंखे के सामने, एसी के बिल्कुल सामने मत बैठिए, और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और

0: आंख लाल हो जाते हैं सर।
1: देखिए, लाल अगर हो जाती है तो आपको आंख को धो सकते हैं फ्रीक्वेंटली, दिन में 4-5 दफा धोएं। और उससे नहीं ठीक होता तो फिर आपको लाली का जो कारण एलर्जी हो सकती है, कुछ और समस्या हो सकती है, तो फिर वो आपको तो दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को, देख के ही बताया जाएगा।
2: जी डॉक्टर साहब, आपने बताया था कि पानी से आंखों को धोना ठीक रहता है जब हम बाहर से आए धूल मिट्टी के लिए। हमारे एक श्रोता हैं अरविंद, ये यमकेश्वर डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से मैसेज भेजकर हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि क्या ड्राई आईज में कचरा गिरने पर पानी से धोना चाहिए कि नहीं?
1: बिल्कुल धोना चाहिए। पहला स्टेप तो हर चीज के लिए पानी से धोना ही है, और अगर आपकी आंख में कचरा गिर गया है और वो पानी धोने से नहीं निकला तो वो आपको रड़कता रहेगा, जैसे आंख के अंदर आपको फॉरेन बॉडी सेंसेशन जिसको बोलते हैं वो रहेगा। और अगर रहता है तो फिर आप उसके लिए इंतजार मत कीजिए, आप इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि जो चीज आंख के अंदर गिर गई है अगर उसको इमीडिएटली नहीं निकाला जाएगा तो फिर वो इन्फेक्शन हो जाता है, उसका संक्रमण हो जाता है और उससे नजर के ऊपर असर पड़ सकता है जो कि ताज जिंदगी रहेगा, तो इसलिए उससे बचना चाहिए।
2: तो ये कैसे डॉक्टर साहब पता लगेगा उन्हें कि इस समय हमें जाना चाहिए, मतलब पेन होगा क्या, कैसे?
1: पेन तो जरूरी नहीं है, पेन तो थोड़ा देर में आता है, लेकिन आंख के अंदर अगर कुछ पड़ा होगा तो एकदम से कोई मिस नहीं कर सकता उसको।
2: जी जी, किरकिराहट,
1: किरकिराहट उसको रहेगी। जी, जी, रहेगी
2: जी। हमारे एक श्रोता है, इन्होंने नाम नहीं लिखा है पर उन्होंने लिखा है गर्मियों में आंखों की क्या विशेष देखभाल करें। तो हम बता दें आपको कि आज पूरा ही कार्यक्रम हमारा इसी पर केंद्रित है, तो आप कंप्लीट हमारा पूरा 4 बजे तक ये कार्यक्रम सुनिए और आपको पता चलेगा, क्योंकि आज का विषय ही हमारा ये है समर्स एंड आई केयर। ये मैसेज हमें भेजा है नेहा ने मुंबई से, प्लीज सजेस्ट अ गुड आई ड्रॉप फॉर ड्राई आईज, ये इन्होंने पूछा है। नाम तो हम नहीं लेते हैं किसी पर, ड्राई आईज की जो समस्या है डॉक्टर साहब, ये क्या बढ़ जाती है गर्मियों में?
1: देखिए ऐसा है, ड्राई आईज की समस्या गर्मी में थोड़ी सी बढ़ती तो है ही, लेकिन जितना ड्राई आईज का शोर है समाज के अंदर, मुझे लगता है ये काफी इंडस्ट्री ड्रिवन है, इतनी ड्राई आई नहीं होती है। ड्राई आई है
2: जी।
1: और गर्मी में बढ़ती है, लेकिन इतनी नहीं है जितना इसका शोर होता है। तो इससे बचने के लिए आई ड्रॉप्स जो है, लुब्रिकेंट ग्रुप के आई ड्रॉप्स होते हैं, वो बहुत सारी कंपनियां बनाती है, लगभग हर कंपनी बनाती है, और उसको आप यूज कर सकते हैं। और ड्राई आईज के लिए अगर किसी को बहुत ज्यादा है, जो जैसे जोड़ों के दर्द वगैरह, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह के साथ जो ड्राई आई होती है वो काफी ज्यादा सीरियस होती है, उसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करना बेहद जरूरी होता है। और उसमें साइक्लोस्पोरिनेव वगैरह कुछ ऐसी सीरियस दवाइयां होती हैं जो कि देनी पड़ती हैं।
2: तो ये ड्राई आईज पहली बात की होती क्यों है, और आपने कहा कि आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है, तो क्या लैपटॉप का ओवर यूज, फोन का ओवर यूज ये कारण है कि कुछ और कारण है?
1: पहला कारण तो इसका है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि ये इंडस्ट्री ड्रिवन है।
2: अच्छा, वो आपने कहा जी।
1: ड्राई आईज जो है अक्सर जो होती है वो लेडीज में होती है, जब महामारी खत्म होती है उसके बाद जो है ड्राई आईज ज्यादा हो जाती है। और जो है इसके अलावा लैपटॉप का यूज वगैरह से क्या होता है कि वो टेम्परेरी ड्राई आई होती है, वो परमानेंट नहीं होती है। क्या होता है कि जब हम कोई भी स्क्रीन को देखते हैं तो हमारा ब्लिंक रेट जो है झपकने का आंख को, वो जो है नॉर्मली जो 13-14 होता है वो कम रह जाता है, वो 8-10 रह जाता है। तो उससे जो आंख के जो आंसू होते हैं बाहर, जिनकी लेयर बनी होती है, टीयर फिल्म जो होती है, वो पूरी तरह से वो मूवमेंट नहीं होती उसके अंदर, तो वो खुश्की आने लगती है। दूसरा क्या कि हम आंखें ज्यादा चौड़ी खोल के, ज्यादा खोल के रखते हैं जब आप स्क्रीन को देख रहे हैं, स्पेशली जब कंप्यूटर को देख रहे होते हैं तो आंख को बहुत ज्यादा खोल के रखते हैं, तो उससे जो है
2: नुकसान करता
1: है, इवेपोरेशन हो जाती है।
2: अच्छा,
1: उड़ जाते हैं टीयर्स जो है, इतने अच्छा। थोड़े से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से
2: बड़ा बढ़ जाता है, तो
1: सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो वो उड़ जाते हैं, तो उससे टेम्परेरी ड्राईनेस होती है। ये कोई बीमारी नहीं होती है, ये तो नॉर्मल एक बॉडी की रिस्पॉन्स है। तो इसके लिए आपको आंखों को थोड़ी थोड़ी देर में बंद कर लेना चाहिए, पूरा टाइट बंद कर लेना चाहिए, थोड़ी देर के बाद फिर खोल ले, काम करने लगे, और फिर बाहर अगर आपके कमरे के अंदर खिड़की वगैरह है तो खिड़की से बाहर थोड़ा दूर देखें, फिर से काम करें। और अगर आपको फिर भी ज्यादा अगर कुछ सिम्टम्स आने लगे तो फिर आप जो है लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं।
2: जी, और ये जो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स यूज करते हैं तो इसकी भी कोई फ्रीक्वेंसी होती है डॉक्टर साहब, की दिन में कितनी बार यूज
1: नहीं
2: करें?
1: अगर किसी को स्पेसिफिक कोई बीमारी नहीं है तो 2-3 दफा 2-3 दफा अच्छा। काफी होता है मैक्सिमम, ज्यादा की जरूरत नहीं।
2: हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं।
3: हेलो।
2: हेलो,
3: हाँ जी नमस्ते मैम।
2: जी नमस्ते।
3: हाँ जी, एस चट्ठा बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब को भी नमस्ते।
1: नमस्ते जी,
2: जी। चट्ठा जी अपना प्रश्न करें।
3: डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि समर में जैसे आप बता रहे हैं आई की केयर के बारे में, नॉर्मल व्यक्ति जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो और जिसका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ हो, तो उन दोनों में क्या क्या अलग से कोई प्रिकॉशन करना चाहिए?
1: नहीं जी, कोई अलग से प्रिकॉशन नहीं है, दोनों के लिए सब ठीक होता है। जैसे बाकी सबके लिए हम बात

0: कर रहे हैं, जो पूरे प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे, वैसे ही सबके लिए, बेशक ऑपरेशन हुआ हो या ना हुआ हो।
1: जी हमें हमारी श्रोता ने लिखकर भेजा है, जिनका मैंने प्रश्न मैसेज पे लिया था कि गर्मियों में क्या विशेष देखभाल चाहिए। अपना नाम उन्होंने लिखकर भेजा है, मान्या सिंह है उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से। इन्होंने ये भी लिखा है कि ज्यादा देर तक ध्यान केंद्रित करने पर आंखें गर्म हो जाती हैं तो क्या करें, जैसे पढ़ाई करने पे या टीवी देखने पे। तो आपने काफी कुछ तो डॉक्टर साहब अभी बताया कि थोड़ा रेस्ट देना चाहिए उन्हें,
0: रेस्ट देना चाहिए। और अगर आपको गर्मी में ज्यादा आपको दिक्कत होती है, आपके घर में कोई कूलिंग का सिस्टम नहीं है, तो आप थोड़ी सी बर्फ सूती कपड़े में लेकर आंख के ऊपर लगा सकते हैं।
1: अच्छा, ठंडी सिकाई टाइप की।
0: हाँ जी।
1: सुशील ठाकुर हमें लिख रहे हैं, कहां से लिख रहे हैं ये तो नहीं बता रहे हैं, पर इन्होंने लिखा है मेरे आंखों में पानी गिरता है आंखों से और कंटिन्यूअस रहता है ये ऐसे आंखों से गिरना, और 5 साल से ऐसा हो रहा है। तो इनको कुछ आप बताना चाहेंगे कि क्या विशेष ये करें?
0: इनकी उम्र नहीं पता,
1: उम्र तो आप अगर हमें सुन रहे हैं सुशील जी, तो हमें मैसेज करके उम्र भी लिखें। डॉक्टर साहब जानना चाहते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, और हम ये फिर प्रश्न बाद में ले सर। फिर
0: नहीं कोई बात।
1: अच्छा,
0: जो जिस जैसे ये मेल हैं और उम्र मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा होगी। एक तो ये होता है कि पानी अगर आंखों में आता है, सबसे पहली चीज जो हमने एक्सक्लूड करनी होती है वो है कि कोई रास्ता तो नहीं बंद, क्योंकि नॉर्मली जो आंसू हैं आंख की सफाई के बाद वो एक छेद होता है आंख के अंदर, उस छेद के जरिए जो आईलिड्स के अंदर होता है उसके जरिए वो नाक में चले जाते हैं, और ये 24 आवर सब में चलता रहता है। तो अगर वो बाई चांस किसी कारणवश, स्पेशली अगर नाक की कोई किसी को एलर्जी वगैरह रहती है, तो उससे वो रास्ता कई बार बंद हो जाता है, तो आंसू जो है वो अपने नॉर्मल तरीके से ड्रेन नहीं हो पाते, तो ये इसको एक्सक्लूड करना जरूरी होता है। दूसरा कि अगर किसी को एलर्जी वगैरह अगर होती है तो उससे भी पानी लगातार आता रहता है। इसके अलावा अगर किसी को चश्मे की जरूरत हो लेकिन वो चश्मा ना लगाए, आंखों पे जोर पड़ता है, उससे भी पानी आने लगता है। और इसके अलावा ड्राइनेस जब किसी को ज्यादा हो जाती है तो कई बार उससे भी रिएक्टिव टीयर सिक्रीशन बढ़ जाता है।
1: ड्राइनेस में भी,
0: ड्राइनेस से भी कई बार जो है पानी बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो कि एक इंडिविजुअल को चेकअप से ही पता लगेगी।
1: जी, तो आप जरूर नेत्र एक विशेषज्ञ के पास जाइए और चेकअप कराइए सुशील जी, तो सही जो कॉज है वो पता लगेगा, तो फिर इसका इलाज किया जा सकता है। ये हमें लिखकर भेजा है उमेश कुमार ने खयाला से, और ये लिख रहे हैं कि आंखों में कभी कभी पानी आता है और पलकों में कभी खुजली भी होती रहती है, ये जानना चाह रहे हैं।
0: ये चीजें गर्मी के अंदर नॉर्मल होती हैं और एलर्जी होती है, इनके सिर्फ पानी से धो लेना चाहिए और ठंडे पानी से और ठंडी सिकाई करनी चाहिए। मेरा ख्याल है ऐसे में किसी दवाई वगैरह की जरूरत अक्सर नहीं होती है।
1: जी, ओम प्रकाश खंडेलवाल जी हमें लिख रहे हैं मैसेज के जरिए, डॉक्टर साहब इनकी उम्र 62 ईयर्स है और ये कहते हैं कि मोबाइल देखते समय 20 मिनट बाद मैं पलक झपकता हूँ, तो आंखों में ऐसा लगता है कि आंखों में कुछ गिर गया है या ऐसा लगता है पानी आ रहा है आंखों में, तो ये क्या ज्यादा देखने के कारण होगा?
0: ये सब ज्यादा देखने की वजह से है, और जब मैंने बताया कि ब्लिंक रेट कम हो जाता है, ये कह रहे हैं कि मैं 20 मिनट तक झपकता हूँ उसके बाद ज्यादा झपकता हूँ, तो ये एकदम बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी, आपको ज्यादा झपकना चाहिए आंखों को, बीच बीच में जोर से बंद भी करना चाहिए, और इतना कंटिन्यूस आप मोबाइल मत देखिए, क्योंकि इससे तो फिर आपकी टेम्परेरी ड्राइनेस जो है वो बार बार करने से, ऐसे रहने से परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो फिर वो मत कीजिएगा। थोड़ा स्क्रीन टाइम कम कीजिए, वैसे भी आपकी उम्र 62 साल हो चुकी है, तो आपको थोड़ा सा कम कीजिए इस चीज को।
1: और मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये तो सबके लिए आपकी समझाइश होगी, क्योंकि बच्चे भी बहुत देखते हैं आजकल मोबाइल पे, कंटिन्यूस खेलते रहते हैं वो गेम्स, तो उन्हें भी ब्रेक लेना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को हाथ में, छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल देना तो एक बहुत ही खतरनाक चीज है। उनको सिर्फ ये नहीं होती, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, उनका चश्मे का नंबर लग जाता है।
1: अच्छा।
0: पहले हमारे जो टेक्निकली अगर आप देखें, अगर हमारे साइंटिफिकली देखें, तो 18 साल से बड़े बच्चे को चश्मा नहीं लग सकता माइनस नंबर का, लेकिन आजकल जो है हर एज पे 20 22 25 साल की उम्र तक भी कई लोगों को, बच्चों को लग जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है, ये बहुत ही नुकसानदेह होता है।
1: जी, और भी बात करेंगे हम गर्मियों में कैसे आंखों की रक्षा आप कर सकते हैं, आंखों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर मानवदीप सिंह हैं, जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली में। मैं हूं आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। इसी तरह से हम बने रहेंगे 4 बजे तक आपके साथ, तो अपने प्रश्न भेजते रहिए। सुनते हैं एक प्यारा सा गीत डॉक्टर साहब की पसंद पर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: वेलकम बैक, आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और आज का हमारा विषय समर्स एंड आई केयर, गर्मियों में नेत्र सुरक्षा कैसे करें। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मानवदीप सिंह, आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर हैं डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली में, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब। हेलो।
2: हेलो
1: जी,
2: प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव शालिनी मित्तल जी को रघुविंदर सिंह का नमस्कार।
1: नमस्कार जी, आप प्रश्न करें, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको।
2: डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम।
3: प्रणाम जी।
2: डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि आपने बताया कि गर्मियों में धूप में टू व्हीलर ड्राइव करते वक्त यूवी प्रोटेक्टेड गॉगल्स लगाने चाहिए, लेकिन जिन लोगों को नजर का चश्मा लगा हुआ है दूर और पास का, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? नंबर टू, जो ये हम आई ड्रॉप डालते हैं उसको केमिस्ट ये बताते हैं इसको खोलने के बाद इसकी वैलिडिटी सिर्फ एक मंथ तक है, कुछ ऐसे आई ड्रॉप भी आते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ काफी टाइम तक होती हो, कृपया बताने का कष्ट कीजिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर
3: साहब। पहले मैं आखिरी सवाल का जवाब दूंगा कि शेल्फ लाइफ जो है ये ना एक्चुअली लीगल रिक्वायरमेंट है उनका लिखना कि एक महीने के अंदर जो है दवाई खराब हो जाती है। ये उस जमाने में होता था जब शीशे की शीशियां होती थी जो ग्लास की बनी होती थी और उसके ऊपर प्लास्टिक के ढक्कन होते थे तो वो टूट जाते थे तो उससे इन्फेक्ट हो जाता था। आजकल जो है हालांकि लिखा तो कानूनी तौर पे ये होता है कि एक महीने के अंदर ही इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप दवाई को फ्रिज में रखते हैं और आपकी दवाई की शीशी जो है टूटती फूटी नहीं है, ढक्कन इधर उधर गिरता नहीं है, तो आप उसको सेफली डेढ़ दो महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी दवाई को। बाकी कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनका की पैकिंग ही बहुत ही एक्सपेंसिव और बढ़िया पैकिंग होती है, उनके ऊपर लिखा होता है कि इनको दो या तीन महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। दूसरा आपने सवाल पूछा था कि अगर आप, मैंने ये बोला था कि टू व्हीलर को अगर चलाते हैं तो चलाने के बाद इमीडिएटली आंख को धो लें, मैंने ये नहीं कहा था कि टू व्हीलर को चलाते समय काला चश्मा लगाएं, वो कोई

0: चश्मा लगा सकते हैं आप, अगर हेलमेट पहनते हैं तो हेलमेट को आगे से कवर कर सकते हैं वाइजर से, उससे आंख के अंदर धूल मिट्टी नहीं जाएगी। और अगर आप चश्मा कोई लगाते हैं नजर का तो वो नॉर्मल चश्मा लगाएं आप, वो आप फोटोक्रोमेटिक भी लगा सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। वो फोटोक्रोमेटिक लेंसेज जो होते हैं वो अंदर सफेद हो जाते हैं और धूप में जाने पे काले हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा हेल्प करते हैं।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। डॉक्टर साहब आपने बताया कि चश्मा जरूर लेकिन लगाएं, अच्छा क्वालिटी का चश्मा, यूवी प्रोटेक्ट जो करे वैसा चश्मा लगाएं। पर कई बार ये होता है जब बहुत गर्मी होती है तो चश्मा लगाते हैं तो नाक के आसपास थोड़ा पसीना जैसे आता है, फेस पे पसीना आ जाता है, तो उससे कभी कभी स्किन एलर्जी भी हो जाती है, तो इस पे क्या करें, किस तरह का सॉल्यूशन?
0: देखिए ये सारा ना फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। चश्मे का जो फ्रेम होता है, जो मेटल फ्रेम्स होते हैं ना, कई किस्म के मेटल होते हैं, एक मेटल होता है और मेटल के ऊपर एक्रेलिक की उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, वो तो ठीक रहता है। लेकिन अगर आप देखने में मतलब ज्यादा सुंदर लगना है, कई लोग जो है ज्यादा पतला चश्मा पसंद करते हैं, तो डंडी जो होती है उसकी वो मेटल की होती है, तो वो डायरेक्ट टच करती है स्किन के साथ, उससे एलर्जी होती है। जनरली जो हम रिकमेंड करते हैं कि डंडी या तो वो प्लास्टिक से एक्रेलिक से कवर्ड होनी चाहिए या एक्रेलिक की ही होनी चाहिए।
1: अच्छा।
0: तो वो जो है उससे स्किन एलर्जी नहीं होती है, और अगर होती है किसी को तो फिर आपके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय चश्मा बदलने के।
1: हमारी श्रोता हैं अदिति, वेस्ट दिल्ली में रहती हैं और इन्होंने लिखा है कि इनकी उम्र 25 साल है। इनका प्रश्न है कि आंखों के नीचे की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, इसके लिए क्या बताएंगे आप? स्किन के लिए ही बात कर रही हैं कि आंखों के नीचे की बहुत डेलिकेट स्किन होती है।
0: डेलिकेट स्किन होती है तो ये जो है ना, अगर आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर वगैरह यूज कर सकते हैं अगर आपको ऐसी स्किन की ड्राइनेस की है, और अगर आपको फिर भी तकलीफ रहती है कोई भी आप, तो फिर आप स्किन के डॉक्टर से मिलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: जी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं लेकिन जनरल आईज की प्रॉब्लम्स पे आ रहे हैं, अगर हमारे पास समय रहेगा हम जरूर उनको शामिल करेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल गर्मी पर ज्यादा केंद्रित कर रहे हैं अपने प्रश्नों को कि गर्मी में हम आंखों की सुरक्षा कैसे करें। तो जो आपने चश्मे का बताया डॉक्टर साहब, एक और समस्या होती है जैसे आंखों में कोई परेशानी हुई तो डॉक्टर्स जनरली स्टेरॉइड्स दे देते हैं, तो उसका कुछ फर्क होता है? गर्मियों में ज्यादा नुकसानदायक होती है या स्टेरॉइड्स लेने चाहिए?
0: देखिए स्टेरॉइड जो है वो किसी स्पेसिफिक अगर बीमारी ऐसी हो जिसके अंदर स्टेरॉइड जरूरी है वो तो जरूरी है, लेकिन स्टेरॉइड्स का हमारे यहाँ ना हमारे देश में बहुत ज्यादा ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, जो कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड यूज होना चाहिए इनका। और खास तौर पे मैं बताना चाहूंगा बच्चों में एक एलर्जी की बीमारी होती है जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं वर्नल किरेटो कंजंक्टिवाइटिस, और उसको साधारण भाषा में स्प्रिंग कटार बोला जाता है। उसके अंदर आंखों में पानी बहुत आता है, खुजली होती है, बच्चे की आंखें बंद होने लगती हैं थोड़ी थोड़ी, और देखने में जो सफेद वाला हिस्सा है आंखों का वो तो उसमें पीलापन आने लगता है। लेकिन इन सभी चीजें किसी भी चीज से, ये बीमारी कितनी भी हो इससे नजर खराब नहीं होती, लेकिन अगर इसके लिए जो इलाज होता है वो स्टीरॉयड यूजेज होता है। लेकिन स्टीरॉयड यूजेज हम बिल्कुल जब बहुत ज्यादा तकलीफ है थोड़े दिनों के लिए, 10-15 दिन के लिए देते हैं। और बड़े कॉमनली ये होता है कि लोग सोचते हैं कि अरे ये तो दवाई ड्राम बाण है, ये तो बस ठीक हो गए अब इसको डालते रहो, 4-6 महीने डालते रहते हैं। उससे होता क्या है कि बच्चे की जो है ये खुजली पानी तो ठीक हो जाता है, उसकी नजर डैमेज हो जाती है, उसको सफेद या काला मोतिया या दोनों हो जाते हैं और नजर हमेशा के लिए उसकी खत्म हो जाती है, और हमारे देश में हर साल कई हजार बच्चे अंधे हो जाते हैं। और यह तकलीफ जो है अक्सर ये मार्च अप्रैल से शुरू होकर सितंबर अक्टूबर तक यह एलर्जी चलती रहती है, और जनरली 3-4 साल की उम्र से शुरू होती है और 18 साल की उम्र तक ये रहती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तो इस चीज का खास ध्यान रखें कि स्टीरॉयड का यूजेज डॉक्टर के सुपरविजन के बिना और रिपीटेड कंसल्टेशन में चाहूंगा कि बार बार डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है अगर आपका स्टीरॉयड का यूजेज कर रहे हैं।
1: जैसा आपने कहा कि किसी डॉक्टर ने अगर एक हफ्ता लिखा है तो वो बोले कि ठीक नहीं हुआ है तो मैं और एक हफ्ता रिपीट कर लूं, तो वो
0: रिपीट
1: कर
0: ना करें जब तक आप डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट ना करें।
1: और कई बार ये भी होता है डॉक्टर साहब कि उसको कैसे बंद करना है उसमें भी वो धीरे धीरे करके उसको बंद किया जाता है, ऐसा भी होता है?
0: अक्सर बहुत सारी ऐसी होती है तकलीफें, अगर इसको लंबे समय तक दिया जाए तो इसको धीरे धीरे बंद करना होता है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए 1-2 हफ्ते के लिए दिया गया तो फिर एकदम से बंद कर सकते हैं।
1: जी आपने आई ड्रॉप के बारे में भी डॉक्टर साहब बताया था, ड्राई आईज के लिए भी, और भी स्टेरॉइड्स अगर यूज होते हैं तो वो भी ड्रॉप्स के फॉर्म में ही होते हैं। तो हमारी ये श्रोता है, इन्होंने जानना चाहे कि आई ड्रॉप डालने के बाद कितनी देर बाद आंख खोलनी चाहिए?
0: एक

0: इंटरनेट तक बंद करना ठीक रहता है, काफी रहता है। बाकी आई थिंक ये काफी यंग पर्सन है तो इनको यूट्यूब वगैरह देखते होंगे। आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई आई ड्रॉप्स, उस पे आपके डजन्स आ जाएंगी, काफी दर्जनों
1: जी
0: आपकी वीडियो आ जाएगी। उनमें से एक हमारी बनाई हुई वीडियो भी है, राम
1: अच्छा
0: मनोहर हॉस्पिटल से 2 मिनट
1: जी,
0: की वीडियो है।
1: तो
0: उसको जो है, जो लोग लंबे समय तक दवाई इस्तेमाल करते हैं, जैसे ड्राई आइज के पेशेंट हैं या काले मोती के पेशेंट हैं, तो दवाइयाँ कैसे डाली जाए, उसका बेस्ट यूज कैसे किया जाए और उसके साइड इफेक्ट कम से कम कैसे किए जाए, वो सब चीजें उसके अंदर हमने दिखा रखी है।
1: जी, ये प्रश्न किया था हमसे पुष्कर देवदिली जी ने, और उन्होंने अपना एज नहीं लिखी है, लेकिन आजकल तो सभी लोग फोन पे देख सकते हैं
0: हाँ जी,
1: जाकर।
0: हाँ जी,
1: तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, आप आरएमएल की जो ये यूट्यूब पे जाकर आप देख
0: आरएमएल
1: सकते
0: की यूट्यूब पे शायद नहीं होगा वो, या तो
1: हैं।
0: मेरे नाम से होगा
1: अच्छा
0: आप, या फिर जो है आप हाउ टू अप्लाई आई ड्रॉप्स अगर लिखेंगे तो मिल जाएगी,
1: ठीक
0: या
1: है,
0: मेरा नाम लिखेंगे तो भी मेरे मिल जाएगा।
1: तो आप कोशिश कर सकते हैं। और काफी कुछ तो डॉक्टर साहब ने यहां भी बता दिया है। हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर जुड़े हैं। हेलो
2: हेलो
1: जी, आप
2: जी,
1: सुन रहे हैं रेडियो
2: नमस्कार
1: डॉक्टर, नमस्कार, आपका स्वागत है जी।
2: जी, थैंक यू।
1: प्रश्न करें, नाम पहले बता
2: हाँ,
1: दें, कहाँ से बोल रही हैं, कौन बोल रही हैं।
2: पीतमपुरा से अनीता वर्मा
1: जी अनीता जी, बताएं अपने प्रश्न
2: जी।
1: करें।
2: हाँ, एक प्रश्न है मेरा, क्या कोई भी आई ड्रॉप्स हो, जैसे आज समर में आजकल फ्रिज में ही रखें या बाहर? और दूसरा सवाल है, जैसे ऑपरेशन होता है लोगों का, आई ऑपरेशन चेक टेक का, तो वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि 2 साल बाद दोबारा कराओ, रिपीट कराओ, क्या ये इसमें सत्य है कुछ? बस ये दो
1: जी
2: बताइए।
1: जी डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आई ड्रॉप को क्या हमेशा फ्रिज में रखना चाहिए गर्मियों में?
0: देखिए, फ्रिज में रखने से हमेशा अच्छा रहता है। एक तो ठंडक मिलती है जब आप आंख को डालेंगे तो वो सूदिंग होता है, दूसरा दवाई की लाइफ बढ़ जाती है। और जो दूसरी इन्होंने बात कही है कि कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद दोबारा हो जाता है, कैटरेक्ट कभी भी दोबारा नहीं होता, लेकिन यह है कि जब हम कैटरेक्ट का ऑपरेशन करते हैं तो साथ में लेंस भी डालते हैं। लेंस को डालने के लिए हम जो कैटरेक्ट जो हम पूरा नहीं निकालते, उसकी एक झिल्ली होती है, झिल्ली को छोड़ दिया जाता है ऑपरेशन के टाइम पे। वो कुछ समय के बाद वो झिल्ली जो है पारदर्शिता उसकी खत्म हो जाती है, तो उसको एक माइनर सा प्रोसीजर होता है लेजर, जो कि ओपीडी में ही हो जाता है, उससे जो है वो झिल्ली को काट के उसको साफ कर दिया जाता है और नजर दोबारा साफ हो जाती है। और उसके बाद अगर वो एक बार पूरा हो जाए तो वो भी झिल्ली दोबारा कभी जिंदगी में नहीं आती है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी प्रश्न करने के लिए। और एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और फिर लौटेंगे। प्रश्न हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं आंखों से संबंधित, पर हम चाहेंगे कि गर्मी में आंखों की सुरक्षा कैसे करें। अगर इस विषय पर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। तो ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: आप है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, मैं हूं शालिनी मित्तल और मेरे साथ आज के रेडियो डॉक्टर डॉक्टर मानवदीप सिंह। आप प्रोफेसर हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली में। और गर्मियों में आंखों की कैसे सुरक्षा की जा सकती है, खासतौर पर इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। पर डॉक्टर साहब, बहुत सारे हमारे श्रोता है जिन्होंने आंखों की बहुत अन्य समस्याओं पर भी बात की है, हमें मैसेज लिखकर भेजा है। आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं उनको भी शामिल कर लूं।
1: जरूर कीजिए
0: जी। शैली जी लिख रही हैं दिल्ली से कि आंखों में काजल लगाना सही है कि नहीं, बताएं।
1: देखिए, काजल डॉक्टर्स लोग हम लोग जनरली रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन इस पे खास प्रिकॉशन एक ये है कि एक तो काजल अगर आप लगाना ही है तो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा जो है, अगर आप कुछ सुरमचू वगैरह या कोई और चीज लगाने के लिए यूज कर रहे हैं तो उसको एक से दूसरे के साथ ना लगाएं। तो यह जो
0: मतलब
1: है,
0: अगर आपका है तो
1: पर्सनल है, पर्सनल होना चाहिए, दूसरे का नहीं होना चाहिए। और धोने के बाद साफ सुथरा उसको, मतलब वॉश करके साबुन से धोके उसके बाद ही उसको जो है टच करें। हाँ, संक्रमण का रिस्क इससे ज्यादा रहता है। और पहले जो है हमारे यहाँ जो कुकरे होते थे या जिसको हम लोग ट्रकोमा बोलते थे, बहुत ज्यादा था, वो बहुत कम हो गया इसी वजह से, क्योंकि इसके लिए कि कंपेयर हमने चलाई है कि काजल का इस्तेमाल कम से कम करें।
0: जी, हमारे एक श्रोता हैं जो फोन लाइन पर इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर साहब। हेलो।
2: हेलो
0: जी। जी, आप बताएं अपना प्रश्न करें डॉक्टर साहब से।
2: डॉक्टर साहब नमस्ते।
1: नमस्ते जी।
2: गजराज नाम है डॉक्टर मेरा।
0: जी जी, प्रश्न कर लें।
2: प्रश्न ये, मेरी जो ना आंखों में सितंबर में जो ना लेफ्ट साइड में जो ना किसी ने घूसा मार दिया था।
1: हाँ जी।
2: तो मेरे को जो है ना दिखना बंद हो गया है। दिखता है, विजन तो मेरा ठीक आता है डॉक्टर साहब, लेकिन जो दिमाग की दिक्कत बता रहे हैं डॉक्टर, जो मैंने चेक कराया ना तो दिमाग की, तो मेरी एमआरआई हुई थी, एमआरआई के अंदर जो ना वो डॉट डॉट बोलते हैं उनको, कीड़ा बोलते हैं।
1: हाँ जी, सिस्टिक सर्कोसिस।
2: नहीं, कीड़े थे वो।
1: हाँ, कीड़े, सिस्टिक सर्कस ही होता है वो।
2: हाँ, वो कीड़ा का बताया था। तो मैं इंदुराव हॉस्पिटल गया था।
1: हाँ जी।
2: तो डॉक्टर साहब ने जो ना मेरे को एलबेंडा लिख दी थी।
1: हाँ जी, वो सिस्टिक सर्कोसिस के लिए लिखते हैं।
2: तो फिर वो जो ना दूसरी, जब मैंने दूसरी एमआरआई कराई ना तो उसमें हट गए वो।
1: हाँ जी।
2: लेकिन मेरी रोशनी वापस नहीं आई है।
1: देखिए, ऐसा होता है कि जब ये आंख की जो आंख जो है वो, मैं आपको बताऊं कि देखने का काम नहीं करती। आंख केवल फोटो खींचती है, फोटो खींच के दिमाग को, मस्तिष्क को भेज देती है। तो यह जो आंख से मस्तिष्क तक जाने की जो चीज है, जो नस है वो, या जो दिमाग का हिस्सा है जो देखने का काम करता है, असल में अगर उसके अंदर कोई खराबी हो जाए तो आंखें अगर बिल्कुल ठीक भी हों तो भी आदमी देख नहीं पाएगा। क्योंकि आंख का काम सिर्फ फोटो खींचना है, देखने का नहीं है। देखने का काम मस्तिष्क का है और उस मस्तिष्क तक फोटो पहुंचनी भी बड़ी जरूरी है।
0: जी।
1: तो आपके, मुझे जो लगता है, न्यूरोसिस्टिक सर्कस की वजह से आपकी जो नस वो सूख गई है, तो इसका इस वक्त कोई इलाज संभव नहीं है। लेकिन मैं आपको इसके साथ एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी मरीज को अगर उसकी नस सूख गई हो, उसकी वजह से नजर खत्म हुई हो, तो वो

0: अपने डेथ के बाद नेत्रदान कर सकता है और दूसरा आदमी उनके नेत्रों से देख सकता है, लेकिन वो खुद किसी और के नेत्र लेकर जो प्रत्यारोपण के बाद उसकी नजर नहीं आ सकती है।
1: और ये हमारे साथ एक और श्रोता जुड़े हैं जिन्होंने मैसेज किया है, अवधेश हैं औरंगाबाद बिहार से लिख रहे हैं, आई हेमरेज क्या होता है डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते
0: देखिए,
1: हैं।
0: आई हेमरेज ना मेनली दो किस्म का मैं बताना चाहूंगा, या रादर तीन किस्म का होता है। जगह जगह की बात है कि कौन सी जगह पर होता है। एक तो बिल्कुल बाहर लगता है, जैसे किसी के बच्चे का नाखून लग गया, छोटी मोटी चीज है, वो बाहर लग गया, उसके लिए कोई इलाज नहीं करना होता, तो अपने आप वो लाली जैसी देखने में होती है और थोड़े समय बाद वो ठीक हो जाते हैं अपने आप, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में। दूसरा होता है हेमरेज, जो आंख के पुतली के पीछे इमिडिएटली होता है, वो चोट वोट लगने से होता है अक्सर, और वो भी उसका इलाज थोड़ा करना पड़ता है। लेकिन जो तीसरा जो हेमरेज है, जो सबसे ज्यादा क्रूशियल है, वो होता है विट्रस हेमरेज, यानी कि पीछे के हिस्से का, लेंस के भी पीछे का हिस्सा है, जो पर्दे से जो ब्लीडिंग होती है, यह ज्यादातर सबसे ज्यादा ये मधुमेह या डायबिटीज की वजह से होती है। और इसके अलावा और भी कई बीमारियां होती है, ईल्स डिजीज वगैरह होती है, और कई किस्म की बीमारियां होती हैं जिससे यह हो सकता है। इसमें अगर यह अपने आप जो सिस्टम ईश्वर ने बनाया है उससे 10-15 दिन की अगर थोड़ी सी ब्लीडिंग हो, थोड़ा हेमरेज हो, तो 15-20 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अक्सर इसका ऑपरेशन करके ब्लड को बाहर निकालना पड़ता है, उसके निकाले बिना आदमी को नजर नहीं आता, तो यह सीरियस बात होती है और इसके लिए स्पेशल डॉक्टर होते हैं। सभी नेत्र विशेषज्ञ भी इस काम को नहीं कर सकते।
1: जी, तो डॉक्टर साहब अपने का ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ सकती है, तो कई बार लोगों से हमने सुना है कि गर्मियों में ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, रिकवरी स्लो होती है, या क्या कारण होता है कि लोग ये सोचते हैं, और ये धारणा सही है कि नहीं?
0: देखिए, गर्मी में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है, वैसे आजकल लोगों के पास सबके पास रिसोर्सेज है, कूलर है, एसी है, बात यह है कि कुछ दिन तक, क्योंकि आंख जो है, आंखों को थोड़ा पानी नहीं आंख पे डालना होता ऑपरेशन के बाद, तो थोड़ा नहाने वगैरह, सर धोने वगैरह में थोड़ी दिक्कत होती है,
1: अच्छा, तो गर्मी
0: थोड़ी
1: में
0: गर्मी महसूस होती है, गर्मी से आंख में पसीना आ जाता है, तो वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होती है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, आप घर के अंदर रह सकते हैं, आपके पास स्टूल और एसी है, तो इसके लिए कोई ऐसी खास समस्या नहीं है।
1: जी, हमारे एक साथ श्रोता फोन लाइन पर हैं। हेलो
2: नमस्कार जी,
1: जी नमस्कार जी
2: भूषण बोल रहा हूँ मुजफ्फरनगर से।
1: जी, आप अपना प्रश्न कर लें डॉक्टर साहब से।
2: डॉक्टर साहब, मैंने ऑपरेशन करवाया कैटरेक्ट का।
0: हाँ जी,
2: तो इसमें जो दवाई दे रखी है डॉक्टर साहब ने, तो ये थोड़ा जलन कर दी।
0: हाँ जी, एंटीबायोटिक और
2: स्टीरॉइड
0: नहीं, वो तो होगा ही होगा ऑपरेशन के बाद, कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद एंटीबायोटिक और स्टीरॉइड तो 1 महीने तक देते ही हैं, सभी देते हैं,
2: अच्छा,
0: तो नॉर्मल है। अगर आप उससे जलन वगैरह कुछ होती है तो उसको बर्दाश्त ही करना होगा, बस आप आंख की दवाई डाल के, एक तो आंख दवाई को फ्रिज में रखें, उससे जलन कम होगी, दूसरा आंख जब डालते हैं दवाई तो आप 1 मिनट तक आंख को बंद रखेंगे, तो उससे उससे आपको थोड़ी सी तकलीफ कम रहेगी।
2: ठीक है सर,
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रश्न किया और उम्मीद है आपको जवाब भी सही मिल गया। और डॉक्टर साहब, विकास हैं, दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने लिखा है, मेरी वाइफ की उम्र 24 वर्ष है, आंखों में बहुत पानी आता है, इसके लिए क्या करें, अभी कुछ टाइम से ऐसा आ रहा है। वैसे आपने बताया है, बहुत सारे प्रश्न है तो थोड़ा जल्दी जल्दी लेती हूँ। कांता गुप्ता जी ने लिखा है उज्जैन से कि मोबाइल देर तक देखने पर आंखों का प्रेशर बढ़ता है क्या?
0: ऑपरेशन प्रेशर तो नहीं बढ़ता, लेकिन ज्यादा मोबाइल देखना अच्छा नहीं होता, कई और किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्पेशली जिसके अंदर आती है ड्राइज आई और चश्मे का माइनस नंबर का बढ़ना, तो इससे थोड़ा सा परहेज करें तो ज्यादा ठीक रहेगा
1: जी।
0: और अगर आपको करना ही है यूज, तो थोड़ा आंख से दूर करके रखें उसको, नजदीक बिल्कुल नजदीक ना लाएं।
1: KL कुमावत जी सीकर राजस्थान से पूछ रहे हैं कि क्या ज्यादा नींद आना भी आंख की बीमारी का संकेत
0: नहीं,
1: होता
0: जी,
1: है?
0: इसके साथ कोई संबंध नहीं है।
1: मेरे चश्मे का नंबर है 20, क्या उससे देखता हूँ लेकिन साफ नहीं दिखता, तो मैं क्या करूँ? ये अभिषेक गुप्ता है लेंसडाउन उत्तराखंड से।
0: देखिए, अगर इतना ज्यादा नंबर अगर होगा तो जो इमेज बनती है आंख के अंदर उसका साइज छोटा हो जाता है, तो इसके लिए इतने हाई पावर चश्मे से बहुत ही मुश्किलें होती हैं। इसके लिए एक तो स्पेशलाइज लेंसेज होते हैं जिनको हम बोलते हैं हाई इंडेक्स लेंसेज, थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं लेकिन वो उनसे ये प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा कॉन्टेक्ट लेंसेज जो है वो यूज करना बेहतर होता है, उनसे क्वालिटी ऑफ विजन बहुत बेहतर मिलेगी चश्मे की बजाय। और अगर आप चाहें तो कुछ ऑपरेशन भी होते हैं चश्मे को कम करने के, लेकिन वो काफी रिस्की होते हैं इतने हाई पावर के लिए, तो वो आप डॉक्टर की सलाह से देख सकते हैं कि अगर आपकी आंख फिट है ऑपरेशन के लिए तो आप वो ऑपरेशन भी करवा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, कॉन्टेक्ट लेंस आपने बताया, तो अगर नंबर किसी का है तो वो कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर सकता
0: तो
1: है?
0: इतने हाई नंबर के लिए तो कॉन्टेक्ट लेंस सबसे अच्छी चीज है।
1: अच्छा, और अगर किसी का नॉर्मल है, जैसे हम लोग

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ और हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर मानवदीप सिंह हमारे साथ हैं। आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर हैं डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब बहुत सारे मैसेज हैं, सबको लेना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनमें जनरल समर्स के बात नहीं है, बहुत सारी बीमारियां हैं, आंखों की तकलीफ है, तो मैं जल्दी जल्दी नाम लूंगी इन सबके क्योंकि ये शामिल हुए हमारे कार्यक्रम में, इनका धन्यवाद जरूर देना चाहूंगी। साथ ही साथ चलने पहले, क्योंकि इन सब बीमारियों की जड़ होती है हमारा उचित खान पान ना हो या हम आंखों की एक्सरसाइज ना कर रहे हो, तो आप ये जरूर बताइएगा कि क्या खाएं जिससे कि आंख स्वस्थ रहे और कुछ एक्सरसाइजेस हो तो वो जल्दी जल्दी बता दें। मैं नाम लेती हूं, धर्मेंद्र कुमार सिंह जी ने अयोध्या उत्तर प्रदेश से हमें लिखा है, इसके अलावा हमें लिखा है मनदीप जी ने रोहतक से, राहुल ने न्यू दिल्ली से, सुशील ठाकुर जी का तो मैंने लिया था प्रश्न, उन्हें दोबारा से किया है, ओम प्रकाश खंडेलवाल जी का भी लिया था प्रश्न, सीतामढ़ी बिहार से प्रकाश कुमार जी ने लिखा है, इसके अलावा लिखा है हमें हरियाणा डिस्ट्रिक्ट करनाल से वाल्मीकि मंदिर, इन्होंने अपना एड्रेस लिखा है, लिखने वाले का नाम मुझे जोगिंदर सिंह इन्होंने लिखा है, आलोका जी ने लिखा है हमें नोएडा से, और इसके अलावा हमें लिखा है किशन लाल जी ने, इन्होंने अपनी उम्र भी लिखी है 75 ईयर्स। इसके अलावा प्रेमपाल सिंह ने दिल्ली से हमें प्रश्न किया है, ये सारे ही प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं। सरिता जी ने मेरठ से, और इसके अलावा सिधौली सीतापुर से यासीन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इन्होंने भी प्रश्न किया है। सुरेश पाल जी ने हमें प्रश्न किया है दिल्ली सुल्तानपुरी से, इन्होंने बहुत सारे प्रश्न है, अभी समय हमारे पास नहीं बचा है सर, हम सिर्फ ये चाहेंगे कि आप हमें उचित देखभाल अपनी आंखों की और खान पान और एक्सरसाइज
1: बताएं। मैं सबसे पहले ये बता इसमें से ज्यादातर जो सवाल हैं जो मैं देख पा रहा हूँ वो पर्सनल है, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल सवालों का जवाब देने का कोई हम दे नहीं पाते हैं कि उसके लिए, क्योंकि चेकअप की जरूरत होती है। तो आपसे सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी नेत्र विशेषज्ञ को जाके दिखाएं। और दूसरा एक सवाल मैं जरूर लेना चाहूंगा, वो किसी काले धब्बों के बारे में था, आंख के आगे काले धब्बे नजर आते हैं, तो वो जो है चीज 98-99% जो है वो उसका कोई मतलब नहीं होता, ये उम्र के साथ अपने आप होते हैं और अपने आप खत्म हो जाते हैं, लेकिन 1% जो केस होते हैं, 1 या 2% उसमें प्रॉब्लम

0: जिसमें होती है वो बहुत सीरियस होती है, इसलिए ये सभी लोग जाके डॉक्टर को दिखाएं जरूर। और खास तौर पे अगर आंख के किसी को फ्लैश भी नजर आती है कि लाइट नहीं है फिर भी लाइट नजर आती है तो उसको जरूर दिखाएं, बेशक 99% चांस ये है कि वो बिल्कुल ठीक रहे होंगे, कुछ भी नहीं होगा
1: जी।
0: और बाकी आप खान पान के बारे में बताया कि गर्मी में खास तौर पे हाइड्रेशन को ध्यान रखें, पानी पिए, शिकंजवी बना के पिए, नमक जो है आजकल फैशन बना हुआ है कि नमक कम लेना है, लेकिन गर्मी के अंदर नमक की बहुत अहमियत होती है। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह इसीलिए किया था क्योंकि हमारे जो गर्म देश होते हैं इनके अंदर नमक की हमें बहुत जरूरत रहती है। तो शिकंजवी बना के पिए, पानी पिए, ठंडा पानी पिए और आंखों को धोएं, आंखों का बाहर जाएं तो आंख के साथ आंख को धोएं, ठंडा रखें, आंख को बर्फ लगाएं आंख के ऊपर, ये सब चीजें हैं इनका ध्यान रखें। और खाने में जहां तक सवाल रहता है कि आजकल पीले फल हैं, आम वगैरह हैं, ये सर्दी में गाजर आएगी, तो ये जो चीजें हैं जिनके अंदर विटामिन ए की क्वांटिटी ज्यादा होती है, दूध और अंडा, ये सब चीजों के अंदर जो एसेंशियल विटामिन होते हैं आंख के लिए, आंख की सेहत के लिए, वो अच्छे होते हैं। बाकी आंख के लिए आपने एक्सरसाइज के लिए पूछा, जनरल एरोबिक एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो आंख के लिए बिल्कुल अच्छी रहती है, उन्हीं से जो है आंख के अंदर प्रेशर भी कम रहता है और आंख की सेहत भी ठीक रहती है। लेकिन आंख के लिए कोई स्पेशल एक्सरसाइज जो है उसका कोई नहीं होती है, अनलेस की कोई खास किस्म की बीमारी होती है, जैसे स्क्विंट वगैरह में कुछ एक्सरसाइज करवाई जाती है, अदरवाइज आंख की कोई खास एक्सरसाइज स्पेशल एक्सरसाइज नहीं होती है।
1: जी जी डॉक्टर साहब, बहुत जल्दी जल्दी और बहुत सारे प्रश्नों के आपने जवाब दिए, समय कम पड़ गया हमें आज के प्रश्नों को शामिल करने के लिए, तो हम सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, और खास धन्यवाद डॉक्टर मानवदीप सिंह जी का जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली में। आप यहां आए, समय निकालकर इतने प्रश्नों का जवाब दिया, स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार जी, शुक्रिया।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
4: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: हां जी नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, ते की हाल चाल ने तुहाडे सारयां दे। एक बारी फिर तो स्वागत है जी तुहाडा सारयां दा प्रोग्राम हैलो जलंधर दे विच, ते मैं तुहाडी दोस्त वंदना तुहाडे नाल इस प्रोग्राम दे विच बड़ी हुई हां जी। जी हाँ, ते तुसी भी जे इस प्रोग्राम दे विच शामिल होना चाहते हो, गलबात करना चाहते हो मेरे नाल, ते नाल ही सुनना चाहते हो अपनी पसंद का कोई गीत, ते तुसी फटाफट तो 0181 43 174 नंबर डायल करना है, ते फटाफट तो मेरे नाल गलबात करनी है। ते चलो जी अज गल करांगे जी थोड़ी बहुती ट्रैफिक सिग्नल्स दे बारे विच, ते थोड़ियां बहुतियां इदां ही चलदियां फिरदियां गल्लां, थोड़ी जी फनी कन्वर्सेशन, ते जानांगे जी तुहाडे की विचार ने। खैर फिलहाल देखदे हां जी पहली कॉल जिहड़ी ओह किहदी लगी है। हैलो
1: वंदना मैम, सत श्री अकाल
0: जी, कौन बोल रहे हो?
1: मैं कुलदीप सिंह बोलदा, मैं लादियां खोर दे जिला लुधियाना।
0: लै मैनूं लगदा है कि जदों मैं आनी आ ना, ते उस दिन तुहाडी कॉल ही पहली हुंदी है।
1: मैम उदन गैप पै गया, उदन मैं थोड़ा जिहा लेट हो गया जी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक
1: है। उदन दा गैप पै गया, मैं फिर बाद च कॉल लगी नहीं, बड़ी ट्राई लाई जी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लिए, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च तुहाडा।
1: हां जी मैम, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है।
0: अच्छा ठीक है। अच्छा मैनूं एक गल दसो, अज कल ट्रैफिक बहुत ज्यादा सड़कां दे उत्ते, ते हॉर्न सब तो ज्यादा केड़े जड़े व्हीकल ने मारदे ने, गड्डियां के बाइक्स के ऑटो वाले?
1: मैम जेड़े ऑटो वाले ए बाली काली निकल आउंदे आ।
0: स्कूटी चलांदे हो, इंडिकेटर दिता जांदा कि हाथ ज्यादा वरतदे हो फिर?
1: मैम इंडिकेटर भी दे दईदा जी,
0: ते पक्का करन लई हाथ भी दे दईदा। ठीक है। अच्छा ते एक चीज होर जिहड़ी बड़ी कॉमन हुंदी है ना, जदों असीं अजकल मोबाइलां दे उत्ते कहिंदे कि मैं 5 मिंट च आया, ते 5 मिंट जिहड़े ने ओह किस तुहाडे हिसाब दे नाल किन्ने मिंट हुंदे ने, जदों असीं किसे नूं कहिंदे 5 मिंटां च आए? मतलब वही है कि जे घर दे विच किसे फंक्शन ते जाना, ते बीबियां नूं ए कह दियो कि 5 मिंट चाहे, ते मतलब घंटा पक्का है।
1: हां जी हां जी,
0: ठीक है ठीक है। अच्छा गाना केड़ा सुनोगे कुलदीप जी? कुलदीप जी दी लगी है जी कॉल पहली, ते उन्होंने मैनू कहा कि अज तुसी अपनी चॉइस दा गाना लाओ, ते गाना मैं अपनी चॉइस दा ला दिंनी आ, ते नाल नाल मैं नंबर भी रिपीट कर दवां कि 0181 43 174 दे तुसी कॉल करनी है तुसी, ते वेट कर रही हां मैं तुहाडी कॉल दी। फटाफट तो सुनदे आ इस प्रोग्राम दा पहला गीत, जड़ा कि मेरा भी फेवरेट ही है, क्योंकि एनर्जी ते वाइब ही इन्नी हुंदी है ना हैलो जलंधर दी कि मेरे इदां लगदा।

0: हाँ जी, स्वागत है जी एक बारी फिर तो प्रोग्राम हैलो जलंधर दे विच। ते तुसी बने हुए हो मेरे नाल यानी कि वंदना दे नाल, ते गल्लां बातां हो रही ने प्रोग्राम दे विच ट्रैफिक सिग्नल्स दे बारे विच कि तुहाडे किदां दे एक्सपीरियंसेस ने। खैर देखदे हां जी अगली कॉल केदी लगी है। हैलो
1: हैलो,
0: हाँ जी कौन बोल रहा है?
1: मैं संदीप सिंह बोल रहा हूं अमृतसर तो।
0: संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम दे विच। मतलब की है फिर हाथ देना पैंदा पक्के करन लई कि भई इधर ही मुड़ना है। ठीक है, अच्छा तो तुसी 5 मिंटा चाहे दा मतलब तुहाडे लई की है?
1: 5 मिंटा दा साडा मतलब है 15-20 मिंट।
0: वाह बड़े सही, तुसी तो बड़े पंक्चुअल हो हैं। क्या बात है, ठीक है ठीक है।
1: नहीं दसी पक्का टाइम दसी रहा, 5-10 मिंट उपर हो जांदे है।
0: वाह जी वाह, बड़े तुसी तो टाइम ते पहुंचे। और मैंने तो तुहाडीआं गल्लां बता तो तुसी बड़े ठंडे जिहे सुभाअ दे लगदे हो वैसे। क्या बात है, वधिया वधिया ठीक है। लड़ाई हुई किसी नाल ट्रैफिक दे पिछे कि तुसी अगे किदा ते मैं किदा अगे?
1: लड़ाई ते नहीं कीती कभी।
0: ठीक है ठीक है, वधिया। ओ लगदा ही पिया तुसी बीबे हो गल बात
1: बड़ी। रेड लाइट ते रुके हो ना, मगर ओ बहुत कहंदे भी अगे सड़क खाली होवे ते कहंदे कड्डो कड्डो।
0: हां
1: मैं कहना भी तू ही कट लो, मैं नहीं कटती।
0: हां बिल्कुल सही गल है।
1: हाँ। दूसरी साइड हरी है वो खाली हो ना कई बारी, मगर बहुत हारन मार दे अगे कड्डो खाली पई सड़क। मैं कहना ना भी रेड लाइट हुई है, रेड लाइट हरी होगी फिर ही जावांगे।
0: बिल्कुल सही गल है, मैनू तो यह नहीं समझ आती कि रेड लाइट से जेडे 5 सेकंड रुकना पैंदा है, इन्होंने केड़ा उथे गोल्ड मेडल जितन जाना होंदा जेडे 5 सेकंड लई रुक नहीं सकदा कोई। है
1: मगर वाले काले पे आ जांदे।
0: ओही मैं कह रही हां कि मगर वाले ने पता नहीं किथे जाना जंग जितन केड़ी। बहुत वधिया लग्या गल करके संदीप जी, थैंक यू सो मच जी। ओके जी ओके, ते लो जी संदीप जी ते है नी बीबे बहुत ज्यादा, ए लड़दे लुड़दे किसे नाल नहीं हैगे ते ए चलांदे ने गड्डी बड़े टाइम दे उत्ते पहुंच भी जांदे ने ते सही तरीके नाल भी चलांदे ने, इंडिकेटर भी यूज करदे ने ते हाथ भी यूज करदे ने सारे पंजाबियों की तरह। फिलहाल सुनते हैं इन्हां दी फरमाइश।

0: हां जी प्रोग्राम चल रहा है जी। हेलो जलंधर, ते तुसी एंजॉय कर रहे हो मेरे नाल प्रोग्राम नू। नाल नाल चल रही ने गल्लां बातां, ते नाल नाल चल रही ने बहुत सोहनिया सोहनिया साडे लिसनर्स दियां कॉल्स भी। जी हाँ, तो देखते हैं कि अगली कॉल हुन केदी लगी है। हेलो
1: वंदना मैडम जी का था हमको इंतजार।
0: वाह जी वाह,
1: जैसे आई मैडम हमारे प्रोग्राम में तो सारे दोस्तों के चेहरे पे आ गई एक मुस्कान उन निखार।
0: वाह जी वाह, थैंक यू जी, थैंक यू। चलो ठीक है, तुहानू फेस पैक लान दी जरूरत नहीं पैंदी, ओदे निखार आ जांदा है।
1: मैडम जी पहले तुहानू मुबारकां।
0: हां जी,
1: के तुसी उन्ने इन्ने कॉल लै चुके हो, 5-6 हो गया शायद।
0: आवाज सुनदे ही पता लग जांदा है कि कौन है, क्योंकि हुण तां जी देखो एक बहुत ही क्लोज बॉन्ड जिहनूं कहिंदे ने, इह हुंदा है कि आवाज सुनदे ही पता लग जाए कि किहड़ा कॉलर है जी साडी कॉल दे उत्ते।
1: हां जी हां जी, आवाज की दुनिया की दोस्त है।
0: हां जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम दी सतीश जी तुहाडा, थैंक यू सो मच कॉल करन वास्ते। ते हुण तुसी दसो मैनूं कि तुसी गड्डी चलांदे हो, बाइक चलांदे हो, के चलांदे हो, स्कूटी?
1: मैडम जी पहले मैं गड्डी चलांदा सी।
0: अच्छा,
1: हुण मैं चलाना एक्टिवा।
0: ठीक है ठीक है।
1: हां जी एक्टिवा चलाई दी हुण, ते मैं मैडम जी जदों किथे जाणा होवे ना,
0: हां
1: जिद्दां मैं 9 दा टाइम देता, मैं 15-20 मिंट पहले घरों निकलदा।
0: वाह जी वाह,
1: और मैं 5-10 मिनट पहले पहुंच के उसे खड़ा हो जाता। मैं कई बार गुस्सा भी आता है कि मैंने टाइम देता।

0: हां जी, एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है जी प्रोग्राम हैलो जलंधर दे विच। ते देखदे हां जी अगली कॉल जड़ी है ओ किदी लगी है। हैलो
1: हैलो मैम, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: जगजीत सिंह गिल, पिंड जगतपुर जट्टा सरां तो बोल रहे
0: हैं। अच्छा जी, जगजीत सिंह गिल बोल रहे हो जट्टा सरां तो, हैं?
1: हैलो,
0: हां जी हां जी, सुन रही हां मैं तुहाडी आवाज।
1: मैम तुहाडी आवाज कट गई।
0: मेरी आवाज कट गई है?
1: हां जी, हुण ठीक है।
0: अच्छा जी, फिर तुहाडे वाली कोई प्रॉब्लम हुई होनी है। ठीक है,
1: अच्छा जगजीत सिंह गिल पिंड जगतपुर जट्टा सरां तो बोल रहे
0: हैं। जगजीत जी हैं?
1: जगसीर।
0: जगसीर, ओके, जगसीर सिंह गिल।
1: हां जी हां जी।
0: अच्छा जगसीर जी, हुण तुसी दसो, तुसी साइकिल चलाया कदी वैसे?
1: मैम मैं पहले चलाउंदा रहा, पर हुण मैं कुछ नहीं चलाउंदा, सिर्फ 11 नंबर गड्डी।
0: वाह जी वाह, ए सब तो वधिया है, 11 नंबर गड्डी जड़ी है ए सेहत नु रखण वास्ते सही, ए भी बड़ी कम दी चीज है।
1: मैम 11 नंबर गड्डी ता चलाउंदा क्योंकि इंडिकेटर दोनों खराब होए।
0: ओहो अच्छा,
1: हां जी
0: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो कोई गल नहीं, अपनी सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है, ते जिद्दां परमात्मा चलांदा उद्दां चल चलदे रहना चाहिए। हां
1: हां जी हां जी हां जी,
0: ठीक है ठीक है ठीक है। की करदे हो फिर जगसीर जी तुसी?
1: मैं गवर्नमेंट जॉब करता जलंधर।
0: अच्छा जलंधर दे विच करदे हो, केड़े डिपार्टमेंट च?
1: कॉर्पोरेशन दफ्तर।
0: कॉर्पोरेशन च, मैनूं लगदा ही पिया सीगा कि तुहाडे नाल कदी तां गलबात होई है, तां तुसी दस्सिया है कि
1: कॉर्पोरेशन। मैं दो वारी कर लई
0: है। हां ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कॉर्पोरेशन दे विच हो तुसी, फिर तुहानूं फड़ांगे हुण वैसे बहुत जल्दी, फिर जदों बरसातां शुरू होणगीआं सानूं लोड़ पैगी तां तुहाडा ही नंबर फड़ लैणा सी। ठीक है ठीक है ठीक है जगसीर जी, ठीक है। ते तुहाडी हुणे गलबात दे विच मैनूं इह दस्सो कि फैमिली दे विच कौन कौन ने?
1: मैं और मेरी वाइफ, दोनों ही
0: वाइफ हैगी है। ਤੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ
1: ਸੀਗੇ ਨਾਲ?

0: हेलो वाइफ जी नूं लगदा शर्म बहुत आ रही है गल करदे होए। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल ने तुहाडे?
1: बहुत वधिया मैम, तुसी सुनाओ?
0: बस ठीक है। कौन बोल रहे हो, नाम दसो पहले अपना।
1: मैम शरण गल कर रही।
0: ठीक है शरण जी, बहुत वधिया लग्या तुहाडे नाल गल करके। हुण मैनूं दसो कि शरण जी की करदे ने?
1: मैम हाउसवाइफ।
0: ठीक है, हाउसवाइफ
1: मैम। अलग अलग खाने बनवा के मिया जी नूं खिला दिंदे
0: आ। हां ते फिर तुसी 24 घंटे दे तुसी मास्टर शेफ होए ना, कहो तुसी कि असीं इकल्ले हाउसवाइफ आ मैं।
1: जी जी
0: ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा तुसी हुण दसो कि तुसी चलांदे हो क्या स्कूटी वगैरह?
1: नहीं मैम, मैं भी नहीं चलानी, साडे कोल सिर्फ 11 नंबर बस ही है।
0: बहुत वधिया चीज है वैसे तां, सिंपल जिन्ना रहो उन्ना ही वधिया। वैसे जो टाइम आंदा पिया मैनूं लगदा कि सारयां नूं 11 नंबर बस लैणी पैणी आ हुण, जिस हिसाब दे नाल पेट्रोल दीआं कीमतां वध रहीआं ने।
1: टाइम असीं कदी किसी नूं टाइम तों खराब नहीं कीता, सगों असीं पहलों टाइम ते पहुंच जीता। अगला भावें सानूं वेट कराउणी पैदे पर असीं कदी किसी दी वेट नहीं कराई।
0: बहुत वधिया चीज है, बड़ी वधिया आदत हुंदी है। पता जिन्हां दे विच इह आदत है ना, उह एक्चुअल च बहुत वधिया आदत है, क्योंकि मैनूं इदां दे लोग बड़े पसंद ने जिहड़े टाइम ते पहुंचदे ने।
1: जी बिलकुल बिलकुल मैम।
0: हां जी हां जी। अच्छा अच्छा शरण, गाना केड़ा सुनोगे?
1: मैम सज्जना दीप दा सॉन्ग है, इन्ना खुश रखूंगा।
0: अच्छा जी, इन्ना खुश रखूंगा। परमात्मा करे तुसी दोनों जने भी एदे खुश रहो आपस दे विच। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लई शरण, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मैम। ओता भी असी अपनी जिंदगी च दोनों मियां बीबी बहुत खुश
0: है। बस बस एदा ही रहना चाहिदा। देखो जिंदगी दे विच तुसी आपस च खुश होना ते फिर एदे वर्गी दा कोई जिंदगी नहीं हैगी। हैं
1: जी मैम, थैंक यू।
0: ठीक है जी, थैंक यू सो मच शरण। ओके
1: जी, साथ रहे तो जरूर खुश रहेंगे।
0: हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, तुहाडे नाल सारे परमात्मा दीआं ब्लेसिंग्स भी ने तुहाडे नाल। बहुत वधिया लग्या गल करके, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू। ओके जी,
0: ते लो जी शरण ते उन्हां दे हसबेंड जगसीर सिंह गिल जी दी फरमाइश दे उत्ते एक गाना मैं प्ले करन जा रही हां, सज्जन अदीब दा इन्ना खुश रखूंगा। तुसी भी नाल नाल इदां ही खुश रहना, साडे लिसनर्स ने इंजॉय करदे हैं इस ट्रैक।

हाँ जी, प्रोग्राम हैलो जलंधर दे विच इक वारी फेर तो तुहाडा स्वागत है जी। बहुत बहुत कॉलां तां मैनूं बहुत सारियां आ रहियां ने, ते कुछ कुछ कॉल्स बई इदां दी कोई कोई दिन हुंदा है जिस दिन तुहाडी कॉल लगदी है, कई वारी इदां भी हुंदा कि तुहाडी कॉल नहीं भी लगदी। ए चीज़ां डिपेंड करदियां जी लक दे उत्ते। खैर फिलहाल एक कॉल लगी सीगी, बट मैनूं लगदा है शायद हैलो ते अनफॉर्चुनेटली ये कॉल जड़ी है ये डिसकनैक्ट हो गई है। पर कोई गल नहीं, तुसी जड़ी है फटाफट तो ट्राइया मारते रहना 0181 2342 174 दे उत्ते। ते तां ताई मैं लानी हाँ जी एक गाना, बब्बू मान दा एक खूबसूरत जिहा गाना, तुसी इंजॉय करो। ते तां ताई नाल नाल तुसी लांदे रहना जी फोन 0181 2342 174 दे उत्ते। फिलहाल इंजॉय करो इस ट्रैक नूं ते फटाफट तो कॉल ला के करो मेरे नाल गलबात, दसो अपना फेवरेट ट्रैक केड़ा है, ते मैं करांगी प्ले इत्थे, ते नाल नाल असी इंजॉय करांगे गल्लां बातां भी तुहाडे नाल।

0: सुहान जी, मैं क्या जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, अद्दाब, मेहरबान, कदरदान। 102.7 MHz ते प्रोग्राम लैके हाजिर हो गए हैं जी युवाणी। दोस्तों, आकाशवाणी जलंधर का एक केंद्र है ते मैं हाँ तुहाडी दोस्त आरजे रितिका।
1: ते मैं हाँ तुहाडी आरजे दोस्त खुशी। ते अज बहुत ही सोहनी शाम चढ़ी है ते असीं तुहानू मिलन लई, तुहाडे नाल गल्लां बातां करन लई हाजिर हो चुके हैं तुहाडे फेवरेट प्रोग्राम युवाणी दे विच।
0: जी दोस्तों, जिवें कि हुणे खुशी ने दस्या कि असीं हाजिर हो गए हां लैके तुहाडा फेवरेट प्रोग्राम युवाणी। ते युवाणी दे विच जदों रौनकां लगदियां ने तां वक्खरियां वक्खरियां चीज़ां दे पिटारे भी खुलदे ने, इनफॉर्मेशन भी भरपूर हुंदी है ते उहदे नाल नाल एंटरटेनमेंट दी तां गल ही ना करो, क्योंकि एंटरटेनमेंट तां पूरी पूरा पूरा भरपूर हुंदा।
1: बिल्कुल रितिका, ते असीं गल्लां बातां करनी है, उस तो पहला असीं दे दिंदे हां अज दे सैगमेंट दा वेरवा। ते दोस्तों, अज तुसीं सुणोगे वर्ड एक्सप्रेस, जिहदे विच इक मतलब बहुत ही अच्छा वर्ड जिहड़ा कि तुसीं बहुत घट सुनिया होना है, उस वर्ड बारे असीं तुहानूं दस्सांगे। उस तो बाद दिमागी दंगल होएगा, दिमागी दंगल विच असीं तुहाडे तों बुझारता पुछांगे, कुछ क्वेश्चंस पुछांगे, तुसीं उन्हां दे आंसर सानूं देने हैं 0181 23 42 174 ते कॉल करके, या फिर फेसबुक मैसेंजर दे आकाशवाणी पेज ते जाके तुसीं सानूं मैसेज करना है। उस तो बाद लास्ट सैगमेंट होएगा
0: वखरा स्वैग। जी हाँ दोस्तों, ये तो सब तो ज़्यादा फेवरेट है साडे यूथ का सैगमेंट, क्योंकि जिते यूथ है ना उन्हें अपने ड्रैसअप नू लैके अपने आप नू कूल बनाने लिए, अपने आप नू वखरा दिखाने लिए कुछ ना कुछ आइस्थैटिक, कुछ ना कुछ वधिया, तो कुछ ना कुछ क्लासी जिहड़ा चाहिए होंगे, है ना कुछ जी?
1: बिल्कुल।
0: तो इन चीज़ों के लिए ही तो बनया है जी वखरा स्वैग। तो वखरा स्वैग सैगमेंट भी सुनना नहीं भूलना है तुम्हें, जिते तुहानू इनफॉर्मेशन देवे, बहुत सारी चीज़ें दसेंगे किवें तुसीं अपने आप नू वधिया ते बहुत ज़्यादा कूल बना सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा इनहेंस कर सकते हो। तो उस तो पहला असं एक गल कर लें कि अज खास की है। तो दोस्तों, अज का दिन जो कि खास है वह है जी इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्ट्रेटिक फिस्टूला। जी दोस्तों, ये दिन हर साल 23 मई को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद है लोगों के प्रति, लोगों इस दिन के प्रति जागरूक करवाना, जिमें कि मैं दस्या इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्ट्रेटिक फिस्टूला। इस दिन का मुख्य मकसद की है, खुशी दसोगे साढ़े दोस्तों?
1: बिल्कुल, इस दिन का मुख्य मकसद है लोगों नू अवेयर कराना, लोगों नू जिहड़ी औरतां दे नाल संबंधित, मतलब जदों औरतां किसी बच्चे नू जन्म दिंदियां ते उस दे नाल संबंधित उन्हां नू जदों पेन हुंदी है या फिर उस टाइम ते जिहड़ी दिक्कतां हुंदियां उन्हां नाल अवेयर कराना ही इस दिन का खास मकसद है।
0: ते खुशी, ये एक्चुअल च हुंदा की है पता है तुहानू? मैं दसदी हाँ, ये एक ना बहुत ही ज़्यादा बहुत गंभीर समस्या है जो आम तौर पर जिहड़ियां लेडीज़ ने उन्होंने लंबे समय तक चाइल्ड बर्थ की डिफिकल्टीज़ जिहड़ियां सामना करने पैंदियां ने उन्हां दे कारण हुंदियां ने। ते इस विच कई बार उन्होंने कई प्रॉब्लम्स जिवें उन्हां दे बॉडी पार्ट्स दे विच कई होल्स बन जाते हैं, कई बार उन्होंने यूरिन करके भी बहुत प्रॉब्लम्स आउंदियां ने, ते ओह ये सारी डिफिकल्टीज़ नूं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दे नाल सहिंदियां ने। लेकिन लोगों के लिए सिर्फ वो चीज़ जिहड़ी हुंदी है वह जेकर आपां मामूली तौर पर गल करिए एक आम चीज़ समझ लेंदे हैं, बट एक बहुत वड्डी प्रॉब्लम हुंदी है जो अगे जाके बहुत घातक सिद्ध हुंदी है, क्यों है ना?
1: बिल्कुल, इस दे जिहड़े प्रभाव ने शरीर विच दर्द हुंदा है, इनफेक्शन हुंदा है, या फिर मनोविज्ञानिक तनाव हुंदा है, या समाज वल्लों अनदेखी कर देंदे ने, आत्मविश्वास विच घाट हो जांदी है, बट सानूं लोड़ है कि असीं औरतां दी इस दिक्कत नूं समझिए, उन्हां दा सपोर्ट करिए ते उन्हां नूं उचित देखभाल भी दईए।
0: ते दोस्तों, इह दिन इसे लई मनाउणा जिहड़ा है महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन विच औरत नूं इक तां इह गल दा लोकां नूं संदेश दित्ता जांदा है कि औरत नूं ਰੱਖਿਆ ਜਨਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ

0: जिंदगी में हो, क्या
1: जी
0: पता उससे मिलना जिंदगी में हो पर उसका मिलना नहीं। की पता कि कुछ इंसाना नाल मुलाकात सिर्फ लिखी होवे साडी किस्मत च, पर ओ इंसान ना लिखिया होवे, इसनूं ही कहिंदे ने सबब।
2: बिल्कुल दोस्तों, ये तो फिर उही गल होगी कि सबब नाल ही कोई काम बनते ने, एवें नहीं काम बनते, एवें ही मतलब कि अगे गल करां जे मैं कि कोई सबब बनेगा तां ही तां काम होएगा, यानी जदों कोई सही मौका या कारण या जरिया बनेगा उदों ही उत्ते काम बनेगा। जिवें मैं कह दिंदी हां कि अज सबब दे नाल मेरी खुशी दे नाल ड्यूटी लगी, असीं गल्लां बातां कर रहे हैं ते अपने लिसनर्स दे नाल असीं जुड़ रहे हैं, क्यों, है ना।
0: बिल्कुल, कुछ ऐसा हो जाना जिहदे बारे असीं कदे सोचिया ना होवे, है ना, जिहदे बारे असीं उम्मीद ना लाई होवे, या फिर कह लो कि डेस्टिनी, डेस्टिनी अचानक ही वो हो जावे ते तुसी जिस नाल बहुत ही खुश हो जावो, या फिर जिंदगी बदल जावे एक तरीके नाल, ते उही कहलांदा है सबब।
2: तो दोस्तों, रब ने अजिहा सबब साडे लेखे भी लगा दिता है, तुहाडे नाल सानू मिला दिता है, तुहाडे नाल असीं गल्लां बातां करदे हां, ते तुसीं भी साडे नाल जुड़े हो, इह वी सबब वाली गल है। तो चलो अगले सैगमेंट वाल भी वधांगे, पर उस तो पहला सुनदे हां प्यारा जिहा गीत।

0: वेलकम बैक दोस्तों, तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम युवाणी एफ एम बैंड 102.7 ते अपने दोस्त आर जे रितिका ते आर जे
1: खुशी दे नाल।
0: ते दोस्तों वेला हो गया अगले सैगमेंट दा, पर उस तो पहले खुशी मैनू तुसी बहुत थके थके लग रहे हो।
1: हाँ रितिका, अजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो गर्मी करके ना एकदम हैडेक होने लग पैंदा है या फिर स्किन बहुत टैन होने लग पैंदी है। मतलब थकावट थकावट जी महसूस होंदी है, मतलब काम करन नू जी नहीं करदा, सुस्ती पैंदी रहिंदी है, बट नींद भी नहीं आती क्योंकि गर्मी बहुत है।
0: बिल्कुल सही गल है यार, गर्मी ने तो ना पूरे धुएं ही कढ़ दिते है कह सकते हैं। तो गर्मी की जेकर गल करिए तो हुण साडा वेला हो चुका है सैगमेंट वक्रा स्वैग का, तो मैनू लगता गर्मी ने ना कितने फैशन च भी बहुत ज़्यादा खलारा पाया है।
1: बिल्कुल खलारे पाए हुए है गर्मी हर जगह, क्योंकि असी फैशन की फॉलो करांगे जद असी पसीने विच भिगे होए आ। तां
0: पर इदां नहीं हो सकदा क्योंकि जिहड़ा साडा यूथ है ना खुशी, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटिड रहिंदा अपने आप नूं कूल, अपनी परसनैलिटी नूं पूरा डेवलप रखने लई, अपनी परसनैलिटी नूं पूरा कूल ते क्लासी दिखाउण लई। ते मैनूं लगदा हले भी जिहड़े मतलब यूथ दे बच्चे ने ना वो पूरे ज़्यादा फैशनेबल बन के घूमते होंगे।
1: बिल्कुल वो रस्ता काढ ही लैंदे कितों ना कितों फैशन दे विच जाण दा या खुद नूं स्टाइलिश रखण दा। साडे वर्गे लोक की करदे ने, ओ मतलब गर्मी लग रही है तो कोई नहीं तुसी टी शर्ट पा लो या लूज या ट्राउजर पा लो, बट जिहड़े यूथ है जिन्हां नूं फैशन दा काफ़ी शौक है वो खुद नूं ट्रेंडी रखने लिए अपडेट रखने लिए बहुत काम करते हैं।
0: तो बिल्कुल दोस्तों हुण जिवें कि असी गल्लां बातां कीतियां तुहानूं लगदा पता लग ही गया होगा कि असी फैशन दे नाल गल्लां कर रहे हैं, फैशन दे बारे गल्लां कर रहे हैं। तो वेला हो गया जी वक्रा स्वैग दा, ते वक्रा स्वैग दे विच अज असी तुहाडे नाल गल्लबात करांगे स्टाइल विद समर, राइट। ये थीम लैके असीं तुहाडे लई आए हैं क्योंकि आपां तुहानूं दसना चाहते हैं कि समर दे विच स्टाइलिश किवें रहा जा सकता है। तो दोस्तों सब तो पहला तो यह दसना चाहवांगी कि गर्मी दे विच जदों कि आपां देखते हैं बहुत ज़्यादा धुप हुंदी है, तो असीं लोग गर्मी दे विच कई बार ना बहुत ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े वेयर कर लैंदे हैं, है ना खुशी। वह जिहड़े ना कितना कितने बहुत ज़्यादा हीट ट्रैप करते हैं, तो सानूं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करवाउंदे ने। तो दोस्तों इस नूं हमेशा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये कितना कितने तुहानूं तुहाडी स्किन नूं बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, तुहानूं बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। तो इस दी जगह तुसी कंफर्टेबल क्लोथ्स लै सकते हो जिवें कि केड़े फैब्रिक दे विच खुशी।
1: हाँ कॉटन दे विच तुसी लै सकते हो, कॉटन दी किन्नी सारी वैरायटी आंदी है फिर
0: हाँ।
1: या फिर तुसी लाइनिंग दे विच लै सकते हो, उहदे नाल की होएगा तुहाडी बॉडी दे विच जिहड़ी इरीटेशन हो रही है या फिर स्वैटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीना आ रहा है तो उहनूं भी वह घट करता है तो पसीने नूं सोक लैंदा है, तो तुहाडी बॉडी दे विच वह रिएक्शन नहीं करता तो तुहाडी बॉडी कंफर्ट जोन विच महसूस करती है। खुले डुले कपड़े पाते हैं तो फिर ऑब्वियस जी गल है कि तुसी गर्मियां दे विच कंफर्टेबल रहिंदे हो।
0: बिल्कुल दोस्तों जिवें कि खुश ने दस्सिया कॉटन जिहड़ा वो स्वैट नूं अबजॉर्ब करता है तो कितने ना कितने तुहानूं चिल फील करन च हैल्प करता है। तो दूसरी गल जे करिए कि लाइनिंग दे बारे, तो लाइनिंग तुहानूं एक कितने ना कितने क्लासी स्वैग एनर्जी जिहड़ी है ना भरपूर दे दिंदी है, यानी कि आपां कह सकते हैं कि कूल भी लगदे हो तो कंफर्टेबल भी रहिंदे हो। तो जेकर सानूं कंफर्ट जोन च रह के कूल बनन दा मौका मिल रहा फिर असीं अनकंफर्टेबल फील क्यों करना, क्यों है ना खुशी।
1: बिल्कुल रितिका, कई लोग हुंदे ने सिंथेटिक या फिर सिल्क वर्गे कपड़े भी पाते हैं ऐसी हीट वाली गर्मी दे विच जिहदे विच लू चलदी हुंदी है, जे बाहर जाके देखो एडी गर्म हवा साडे लगदी है, ते ऐसी गर्मी दे विच अगर असी सिंथेटिक या फिर सिल्क पा के जाइए तो सोचो की हाल हुंदा होएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अजिही गर्मी दे विच अजिहे कपड़े पावांगे तो ऑब्वियसली गल है यह है कि तुहानूं गर्मी भी बहुत लगेगी, बीमार होने के चांसिस भी वध जाणगे, ते उत्तों दी जिहड़ा अगला बंदा होएगा ना उहनूं तुहानूं देख के गर्मी लगी जाणी है।
1: लगदी है, देख के भी गर्मी लगदी है।
0: बिल्कुल खुशी। ते इस तों अलावा अगर आपां गल करिए कलर वाइब्स दी, तां मतलब कि अजकल दा वैसे जिहड़ा यूथ है ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਤਿਕਾ, ਮਿੰਟ ਗ੍ਰੀਨ, ਪਾਊਡਰ ਬਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਵੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਟੋਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਇਲ ਵੀ ਲੱਗੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੂਲ ਮੂਡ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀਏ, ਟਰੈਂਡੀ ਵੀ ਲੱਗੀਏ, ਹੈ ਨਾ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੇਸਟਲ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਸਟਲ ਕਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਲੱਗੋਗੇ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਕਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂਲ ਅਤੇ ਕਲਾਸੀ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਬਲੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਬਲੈਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ।
1: ਅਤੇ ਬੋਇਜ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਦੀ ਸ਼ਰਟਾਂ, ਵਾਈਟ ਦੀਆਂ ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈਟ ਟੋਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ

जी दोस्तों, वेलकम बैक। ते वेला चल रहा है जी, टाइम होया पिया है साडे वक्रे स्वैग दे सैगमेंट दा, ते वेला हो गया अगली गल करन दा। ते खुशी, जिवें कि आपां गीत सुनाता साडी कुड़ियां दे लई गाने सुनाए सीगे साडे।

0: वेलकम बैक दोस्तों, तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम युवाणी, अपनी दोस्त आरजे रितिका
1: ते आरजे खुशी दे नाल। ते हुण वेला हो गया तुहाडे फेवरेट सैगमेंट दा, जिस दा नाम है दिमागी दंगल। ते इस दे विच असी पुछदे आ तुहाडे तों कुछ पुझारतां, या फिर कुछ कह लो टंग ट्विस्टर असी तुहानूं दिंदे आ, तुसी ओह बोल के सानूं सुनाने हुंदे आ, या फिर क्वेश्चनां दे जवाब देने हुंदे आ। मैं नंबर रिपीट कर दिंदी आ, 0181 2342174। ते या फिर तुसी मैसेज कर सकदे हो फेसबुक मैसेंजर ते, जाना है तुसी आकाशवाणी जलंधर दा पेज खोल के मैसेंजर ते जाके तुसी सानूं आंसर देना है। ते रितिका पहली जिहड़ी साडी टंग ट्विस्टर है पुछ लवां।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जिवें कि असी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, मैं लगता लिसनर्स भी उन्ने एक्साइटेड होणगे। ते दोस्तों असं वेट कर रहे हैं, उस तो पहला खुशी तुहानूं दसन जा रही है, तुसी यही चीज़ रिपीट करनी है।
1: हाँ, तुसी 2 के 3 वारी रिपीट करके सानूं दसना है। ते जिहड़ी आह टंग ट्विस्टर है बहुत ही कॉमन जी है, मैं लगता सारिआं ने बचपन च बहुत बोलिया होना है, ते असी भी इहनूं बोल बोल के ही वड्डे होए हैं। ते तुसी ध्यान नाल सुनना है, टंग ट्विस्टर है कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई।
0: एक बार रिपीट कर दो खुशी।
1: बिल्कुल, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तुसी सानू कॉल करना है 0181 2342174, ते सानू ये टंग ट्विस्टर तुसी बोल के दसना है 2 या फिर 3 वारी।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख हुण 20 मई तो वधा के 30 मई 2026 कर दिती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

जी हाँ, और कम से कम वो डेली ये वास्ते मतलब ऑल्टरनेट डे ते एक दिन छड़ के जाते हैं, तो उदों अपना टैंकर पानी का भर के लैके जाते हैं। 5 किलोमीटर जड़ा है उन्होंने रोज़, मतलब एक दिन बाद जो जाते हैं उन्होंने ट्रैवलिंग करनी पैंती है अपने पानी के टैंकर के नाल, और उत्थे जाते हैं जदों, तो यह जो टैंकर है या फिर जो भी पानी का खर्चा है या फिर आन जान का खर्चा है वह किसी तो लेंदे नहीं, वह खुद इन्ह सारे एक्सपेंसिज़ बेयर करते हैं।

0: घर खर्चे दे पैसे दियो हस्बैंड जी।
1: ए राशन दे 15,000, सब्जियां दे 2,000
0: ते बिजली दे बिल दे।
1: हुन 0 रुपए की मैं दवा।
0: ओहो भुली गई सी, हुन ता सोलर पैनल लग गए है ना, ता फिर जो बाकी बचे हुए 4,000 ने उसदी शॉपिंग करन चलिए।
1: जरूर, पीएम सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार।

ने मुख्य मेहमान वजों ऑनलाइन माध्यम राही समारोह च शिरकत की। इस मौके देश के दे चीफ जस्टिस ने यूनिवर्सिटी के केंद्रीय लाइब्रेरी भवन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस भवन का निर्माण लगभग 14 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत नाल किया गया। उन्होंने डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देंदिया डिग्री वंड समारोह को आधुनिक भारत दी आसा उम्मीदों का उत्सव करार दिता। पंजाब केंद्रीय यूनिवर्सिटी की तरक्की की शलाघा करदिया उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी अकादमिक उत्तमता विभिन्नता सहयोग से विज्ञानक सोच को लगातार उत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि अजिहियां यूनिवर्सिटियां सिर्फ सिक्ख्या देने वाली संस्थावां नहीं सगों देश के भविख को मजबूत बनाने भी अहम भूमिका निभाउंदियां ने। यूनिवर्सिटी वालों 1073 पोस्ट ग्रैजुएट ते पीएचडी डिग्रियां प्रदान की गई 44 होनहार विद्यार्थियों सोने के तमगियां नाल सन्मानित किया गया। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर और यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। पंजाब के राज्यपाल अते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ साहित्य अकादमी वालों करवाए गए सालाना पुरस्कार समारोह च मुख मेहमान वजों शिरकत की। साहित्य के वख-वख खेत्रां दे उगे लेखकां कवियां अते साहित्यक शख्सियतां नूं सन्मानित किया। इस दौरान चंडीगढ़ साहित्य अकादमी ने वख-वख श्रेणियां च साहित्यकारां नूं सन्मानित किया। वरे 2023-24 लई कुल 8 सीनियर साहित्यकारां नूं हिंदी पंजाबी संस्कृत अते अंग्रेजी च अवार्ड ऑफ रिकगनीशन नाल नवाजिया गया। इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं श्री कटारिया ने साहित नूं केवल समाज का दर्पण ही नहीं बल्कि मानवता नूं सही दिशा दिखाउण वाला चानण मनारा दस्सिआ। सूबे भर विच छाते दी गर्मी कारण वध रहीआं मुश्किलां दे मद्देनज़र पंजाब दे सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि सेहत विभाग वल्लों भारी गर्मी दे प्रभावां नूं रोकण घट करन ते सुजज्जे प्रबंधन लई सहूलतां प्रदान करन ते इस संबंधी कर्मचारियां नूं तैयार करन लई सरगर्म कदम चुके गए ने। मंत्री ने कहा कि गर्मी कारण हीट स्ट्रोक लू लगन का जोखम काफ़ी वध जांदा है ते दिल ते साह संबंधी दिक्कतां विच वी वाधा होण दा खदशा बनिया रहिंदा है। मंत्री ने सारे नागरिकां दी सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण लई सारे सिविल सर्जनां नूं ज़िला हस्पतालां सब डिविजनल हस्पतालां ते कम्युनिटी हैल्थ सेंटरां च समर्पित हीट स्ट्रोक प्रबंधन इकाइयां नूं कार्यशील करन दे निर्देश दित्ते। उन्हां कहा कि वार्ड सरगर्म कूलिंग उपावां नाल लैस ने। सेहत मंत्री ने लोगों खास करके बजुर्गों ते बच्चों नूं भी चौकस रहन ते विभाग दे सुरक्षा दिशा निर्देशों की पालना करन दी अपील की थी। मोहाली की विशेष अदालत ने जलंधर स्थित एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वालों गिरफ़्तार किए गए इंडियन कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी के सकत्र अजय सहगल नूं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 27 मई तक ईडी रिमांड पर भेज दिता है। जिक्रयोग है कि जलंधर स्थित एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने अजय सहगल नूं फर्जी सहमति पत्र जमा करवा के धोखाधड़ी नाल जमीन की वरतों में तब्दीली प्राप्त करन नाल संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ़्तार किया। यह जांच पंजाब पुलिस वालों किसानों दी शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज किए जाने तो बाद की गई सी। विभाग की जांच में पता लगे कि मुलजम ने 15 जमीन मालकों की 30 एकड़ तो वध जमीन के संबंध में फर्जी सहमति पत्र तैयार किए सन। IPL क्रिकेट में अज शाम लखनऊ सुपर जॉइंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स नाल होगा। यह मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना स्टेडियम च शामी 7:30 बजे खेडिया जाएगा। तो आखिर च खास खबर एक बार फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज वख-वख सरकारी विभागों ते संगठनों च नवनियुक्त नौजवानों 51,000 तो वध नियुक्ति पत्र वंडे। पंजाब च रोजगार मेले दौरान रेल कोच फैक्टरी कपूरथला च केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ते पटियाला लोकोमोटिव वर्कर्स च मुख्य प्रशासकीय अधिकारी ने नवनियुक्त नौजवानों नूं नियुक्ति पत्र तकसीम किए। पंजाब केंद्रीय यूनिवर्सिटी बठिंडा वालों 11वें कन्वोकेशन समारोह का आयोजन चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने विद्यार्थियों नूं प्रगतिशील समाज के निर्माण च योगदान पाउण लई कीता प्रेरित। मोहाली की विशेष अदालत ने जलंधर स्थित एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट वालों गिरफ़्तार इंडियन कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी के सकत्र अजय सहगल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले च 27 मई तक ईडी रिमांड पर भेजा। IPL क्रिकेट में अज शाम लखनऊ सुपर जॉइंट्स का मुकाबला लखनऊ च शामी 7:30 बजे पंजाब किंग्स नाल होगा। इस दे नाल ही प्रदेशक खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। राष्ट्रीय खबरों का अगला बुलेटिन तुसी सुनोगे शाम 7:30 बजे। नमस्कार।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल

0: संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा, रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तरीक हुण 20 मई तो वधा के 30 मई 2026 कर दिती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
0: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

नमस्कार, एफएमएन 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है। शाम ते 7 बज रहे ने ते वेला हो रहा है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस दा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज वख-वख सरकारी विभागां अते संगठनां विच नव नियुक्त नौजवानां नूं 51,000 तों वध नियुक्ति पत्र वंडे। कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकां दे जीवन नूं बेहतर अते आसान बनाउण दा इक महत्वपूर्ण साधन है। पंजाब विच रोजगार मेले दौरान रेल कोच फैक्टरी कपूरथला विच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अते पटियाला लोकोमोटिव वर्कर्स विच मुख प्रशासकीय अधिकारी ने नवनियुक्त नौजवानां नूं नियुक्ति पत्र तकसीम कीते। वनज अते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, आलमी पद्धर उत्ते उथल पुथल दे बावजूद भारत दी अर्थ व्यवस्था मजबूत बनी हुई है अते बरामद विच बेमिसाल वाधा होया। इंडियन ऑयल ने कहा, देश विच पेट्रोल अते डीजल दी सप्लाई स्थिर है अते ईंधन दी कोई कमी नहीं है। पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान वल्लों अत दी गर्मी दे मद्देनजर पंजाब सरकार दे सारे दफ्तरां स्कूलां अते कॉलेजां दा समां बदलण दा ऐलान। नवे समें मुताबिक कामकाज दा समां सवेरे 7:30 बजे तों दोपहर बाद 1:30 बजे तक होवेगा।

அபமான் 102.7 மெகாஹெர்ட்ஸ் தேக் ஆஷ்வணிஜிலிருந்து த ரெயின்போ சேனல் ஹே चाहते मिट्टी जी मुस्कान दिल विच जोश प्यार ते दोवें हाथ जोड़ हाजिर तुहाडी दोस्त आरजे नेहा रलहन लैके तुहाडा पसंदीदा प्रोग्राम फिल्मी दुनिया दोस्तों शनिवार की शाम है ते शनिवार की शाम दे विच फिल्मी दुनिया प्रोग्राम दे विच आज की कुछ खास तुहाडे वास्ते लैके हाजिर होंगे दसांगे उस बारे दोस्तों फिल्मी दुनिया वो प्रोग्राम जिस विच असी फिल्मां बारे गलबात करते हाँ गीतां बारे गलबात करते हाँ ते कुछ फिल्मां दियां हस्तियां बारे गलबात करते हाँ पर अज इस प्रोग्राम दे विच कुछ खास विषय लेके हाजिर हुई हाँ अज असी गलबात करांगे उन्हां फिल्मां दी जिन्हां दे विच जिन्हां दे गाणियां दी बनतर दे विच भारतीय शास्त्रीय संगीत दे रागां दी वरतों कीती गई दोस्तों राग राग आसान भाषा विच कहां तो सुरा दी भावनात्मक बनतर जिस दे कुछ नियम ने ते कुछ खास समय दे नाल जुड़े हुंदे ने राग इंज वी कह सकते हैं कि जिहड़े राग हुंदे है ए साडे अंदर दे मूड नू साडे अंदर दी भावना नू बयान करदे ने ते आसानी दे नाल ए समझ नहीं आंदे पर साडे म्यूजिशियंस ने साडे फिल्मी संगीतकारां ने बा कमाल तरीके दे नाल इन्हां रागां नू फिल्मां दे गीतां दे विच पिरोया ते इस तरह पिरोया कि ओह गीत अमर बन गए दोस्तों अज बस इन्हां रागां दे उत्ते ही आधारित फिल्मां बारे करनी असी गलबात दोस्तों पुरानिया फिल्मां तुसी जेकर असी गल करिए फिल्मां बननियां शुरू हुई भारत दे विच 1930 तो बाद पुरानिया फिल्मां दी जेकर गल करिए तो पुरानिया फिल्मां जिन्नियां भी हुंदियां सी वो सब किसी ना किसी राग दे उत्ते ही उन्हां फिल्मां दे गीत जिहड़े है आधारित हुंदे सी शायद यही कारण है कि जिहड़े पुराने गीत है खासकर ब्लैक एंड वाइट फिल्मां दे वो बहुत सारे गीत आसानी नाल समझ नहीं आते पर उन्हां दे पिछे छिपी हुंदी है कोई कहानी कोई भाव मन दा कोई रस गल करिए 1952 दे विच आई फिल्म बेजू बावरा दी

गीत चल रहा है लता मंगेशकर ते मोहम्मद रफी साहब की आवाज विच, ते बस इदां ही लग रहा सी कि एक बाग दे विच बैठी हाँ जिथे रुखां दे उत्ते कोयल जड़ी है वो बोल रही है। कहिंदे आ गीत जड़ा है, संगीत जड़ा है, रूह दी खुराक है। ते जद राग सुनदे आ ना ते बस इस गल ते पूरी तरह यकीन हो जाता है, क्योंकि साड़ी रूह नू साड़े मन नू दिमाग नू सुकून दिंदी है, शांति दिंदी है। प्रोग्राम फिल्मी दुनिया सुनियो तुसी अपने दोस्त आचे नेहा रल्हन दे नाल। अगली फिल्म मैं कह जी बड़िया प्यारिया प्यारिया फिल्मां अज तुहाड़े वास्ते लेके आई हाँ। जेकर तुसी भी क्लासिकल म्यूजिक सुनना पसंद करदे हो, फिल्मां देखनी भी पसंद है, तो यह फिल्मां अपनी चैकलिस्ट विच ऐड कर लो। 1960 दे विच आई फिल्म कोहिनूर, स्टारकास्ट दे विच नज़र आए दिलीप कुमार ते मीना कुमारी, दोनों की जुगलबंदी ने, दोनों की एक्टिंग ने ते इस फिल्म के गीत ने चार चांद लगाए। इस फिल्म दे विच गीत मधुबन ने राधिका नाचे रे दे विच राग हमीर दी वरतों की गई, राग हमीर। इस राग बारे दसीए तो यह राग जड़ा है दोस्तों ये वरतिया जाता है रात के समय गाया जाता है, जो शानदार ते रस भरिया है। इस विच उच्च सुरां की खूबसूरत जड़ी है वह वरतों की जाती है। यह राग श्रृंगार ते शांत रस नू प्रगट करता है। दरबारी अंदाज ते पव्याता इस दी खास पहचान है। इस फिल्म दे गीत मधुबन में राधिका नाचे रे दे विच कृष्ण राधा दे रस ते नाच दी भावना ले हमीर रस जड़ा है उसकी वरतों की गई। दिलचस्प गल दसी तां दिलीप कुमार ने इस गीत ले कहा जाता है कि सितार भी सीखने की कोशिश की, जो स्क्रीन उत्ते उन्हां दी एक्टिंग उन्हां दी अदाकारी जड़ी है वह असली लगे। पुराने कलाकारां दे विच किन्नी ज़्यादा डेडिकेशन हुंदी सी ना, किन्ना समर्पण हुंदा सी। फिल्मी दुनिया विच होर भी गल्लां बातां जारी रहनगियां, क्लासिकल म्यूजिक दे खास प्रोग्राम, पर उस तो पहला सुनदे हाँ इस फिल्म दा गीत जिसनू आवाज़ दित्ती है मोहम्मद रफ़ी ने।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: दोस्तों गल कर रहे हैं असी राग अहीर भैरव दी। एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है जो बहुत मशहूर ते मनमोहक राग है। ये दो रागां राग भैरव ते राग अहीरी दा मिश्रण मन्या जांदा है। जिवें कि तुहानू दस रहे सी कि राग सवेरे दोपहर विच गाया जांदा है ते समा रहिंदा है 4 बजे तो लैके सवेर दे 7 बजे तक। इस सवेर वेले मन नूं शांति दिंदा है ते नाल ही नाल भगती दा भाव तां पैदा करदा ही है। इस दे नाल ही ये भी कहा जांदा है कि इस राग दियां धुनां सवेर वेले वजदियां छोटियां गऊआं दियां टल्लियां दी आवाज़ अते कुदरत दी जागृति नूं बयान करदियां हैं। दोस्तों इस राग दी सुरचना विच इक अजिहा ठहरा है जो दिमाग नूं तरोताजा करके अध्यात्मिक खुशी दिंदा है। शायद यही कारण है कि बॉलीवुड दे बहुत सारे म्यूजिशियंस ने इस राग दी वरतों कीती। ब्लैक एंड वाइट फिल्मां दी गल करिए, कलर्ड फिल्मां दी गल करिए, इस राग नूं दर्शाया गया, गीतां दे जरिए आम लोकां तक पहुंचाया गया। 1999 दी फिल्म हम दिल दे चुके सनम दा इक गीत अलबेला सजन, इस दे विच वी इस राग दी जड़ी है वरतों कीती गई। ते इस गीत नूं जड़ा है, इस गीत बारे दसां तां इस गीत नूं फिल्म दे शुरुआत दे विच ही दिखाया गया जद नंदनी यानी कि ऐश्वर्या राय समीर जो कि असल विच सलमान खान ने उन्हां दे विच पैदा हुंदे प्यार दे एहसास ते चुलबुलेपन नूं दिखांदा है। ते बड़ी ही खूबसूरती दे नाल संजय लीला बंसाली ने इस गीत नूं जड़ा है गीत दे विच इस राग दी वरतों करके इसनूं होर भी ज़्यादा मधुर बना दिता।

दूसरों दोस्तों राग की गल करिए उत्तर भारत के 500 तो वध जड़े है राग वरते जाते हैं ते इना विचो 50 तो 100 राग ने जो बहुत प्रसिद्ध ने ते आम गायकी विच वरते जाते हैं सुने जाते हैं। इस विच ही अगले जिस राग बारे तुहानू दसन जा रही हां वो है जी 1971 की फिल्म गुड्डी दे एक गीत। गुड्डी फिल्म दे एक गीत दे विच इस राग की वरतों की गई। राग का नाम है मियाँ की मल्हार। इस राग नू मी दा राग भी कहा जाता है। जी हाँ मी दा राग कहा जाता है क्योंकि इस राग नू मी ते बरसात दे नाल जोड़िया जाता है। मन्या जाता है कि तानसेन ने इस नू खास रूप दिता सी। ए राग बदला बरसात ते कुदरती सुंदरता दा एहसास करवांदा है। इस दी ताना बहुत ज्यादा प्रभावशाली ने। फिल्म गुड्डी दे गीतां दे विच भी इस राग दी वरतों की गई जिसने इस गीत नू होर भी ज्यादा जड़ा है मेलोडियस बना दिता। आवाज वनी जयराम की आवाज सुनते हैं इस फिल्म का एक गीत बोले रे पपीहा।

नमस्कार, एफएमएन 102.7 मेगाहर्ट्ज दी आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है। रात दे 8 बज चुके ने ते पेश है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वक्-वक् सरकारी विभागां अते संगठनां विच नवनियुक्त नौजवानों नूं 51,000 तो वध नियुक्ति पत्र वंडे। कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकां दे जीवन नूं बेहतर अते आसान बनाउण दा इक महत्वपूर्ण साधन है। पंजाब विच रोजगार मेले दौरान रेल कोच फैक्टरी कपूरथला विच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अते पटियाला लोकोमोटिव वर्कर्स विच मुख प्रशासकीय अधिकारी ने नवनियुक्त नौजवानों नूं नियुक्ति पत्र तकसीम किते। वनज अते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, आलमी पद्धर उते उथल पुथल दे बावजूद भारत दी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है अते बरामद विच बेमिसाल वाधा होया है। इंडियन ऑयल ने कहा, देश विच पेट्रोल अते डीजल दी सप्लाई स्थिर है, इदन दी कोई कमी नहीं है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वल्लों अत दी गर्मी दे मद्देनजर पंजाब सरकार दे सारे दफ्तरां स्कूलां अते कालजां दा समां बदलण दा ऐलान। नवे समय मुताबक कमकाज दा समां सवेरे 7:30 तो दोपहर बाद 1:30 तक होवेगा। पंजाब केंद्री यूनिवर्सिटी बठिंडा वल्लों 11वें कन्वोकेशन समारोह दा आयोजन। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने विद्यार्थियों नूं प्रगतिशील समाज दे निर्माण विच योगदान पाउण लई कीता प्रेरित।

दोस्तों आजकल हर पासे एआई एआई हो गया है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सोशल मीडिया ते जड़ा है वीडियोस वायरल हो रही हैं जिस विच कहा जा रहा है कि एआई मेडिसिन दे विच बदल गया है। दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी यानी कि यूएसए दे विज्ञानियों ने एक नवा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है परटर्ब फेट। कहा जा रहा है कि कैंसर का इलाज करेगा, पर साइंस इस विच की कहती है। दोस्तों साढ़े शरीर विच इम्यून सिस्टम एक फौज वांग काम करता है। कई बार कैंसर सैल्स जिहड़े ना इस फौज तो लुक जाते हैं। तो जिहड़ी टेक्नोलॉजी है जिहड़ी यूएसए दे विज्ञानियों ने बनाई है, इस टेक्नोलॉजी ने कैंसर सेल्स के अंदर जो पुराने वायरल सिग्नल है उन्होंने एक्टिव कर दी है। तो शरीर में लगातार वायरस तो इम्यून सिस्टम ने हमले जड़ा है शुरू हो जाता है। जिस विज्ञान के अनुसार गल करिए इस नू वायरल मिमिक्री कहें। तो दोस्तों जो कहा जा रहा है ना कि ये कैंसर का इलाज करेगी एआई, ये इलाज नहीं करेगी। असल दे विच हजे शुरुआती जड़ी है खोज की जा रही है, रिसर्च की जा रही है। तो एआई दा जड़ा है वरतों जड़ी है मेडिसिन दे विच इसके क्लीनिकल जड़े है ट्रायल्स लगातार किए जा रहे हैं। 100% इलाज नहीं कर सकती, तो एआई ने जड़ा है कैंसर खत्म कर दिता, इस ते यकीन बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि जैसी विज्ञान के अनुसार चलिए या फिर टेक्नोलॉजी के हिसाब न चलिए तो एआई सिर्फ मदद कर सकती है, इलाज नहीं। तो बस जेकर हुन तुहानू तुहाड़ी सोशल मीडिया फीड ते जेकर कोई वीडियो इस तरह वायरल मिलती है इस एआई दी मेडिसिन दे तौर ते वरतो, तो मैं कह जी हुन तुहानू इस दे पिछे दी जिहड़ी है साइंस अच्छी तरह पता है, तो अपने दोस्तों भी इस बारे दस देना है। प्रोग्राम चल रहा जी नैट वाणी जिथे तुसी बने हुए अपने दोस्त अर्शय ने हरल दे नाल। ते लो जी फिर सुनते हैं सोना महापत्ता की आवाज विच ये प्यारा जिहा गीत। ते गीत दे उस पार तुहानू दसांगे कुछ खास इनफॉर्मेशन, कुछ खास अचीवमेंट।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण

दोस्तों जरा सोचो, माइनस दा तापमान होए ते उथे तोहानू ले जाके कहा जाए कि कोई एक्टिविटी करो। माइनस दा टेंपरेचर, माइनस डिग्री सेल्सियस, ते इस टेंपरेचर दे विच एक कुड़ी जो कि पहाड़ा ते भरतनाट्यम जड़ा है वो करती है। सोशल मीडिया पे बहुत वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो दे पिछे गल करिए तां 20 मई दा दिन जद 21 साल दी कुड़ी सानिका शाह ने अपने माउंट एवरेस्ट दे सफर दे उते भरतनाट्यम दा जड़ा है डांस किया। भरतनाट्यम जो कि इंडियन क्लासिकल डांस है, पर ये कुड़ी है कौन जो इस वीडियो विच नजर आ रही है? दोस्तों कुड़ी का नाम है सानिका शाह। सानिका एक पेशेवर पर्वतारोही होने के नाल नाल बचपन तो ही भरतनाट्यम की सिखलाई प्राप्त डांसर है। ते हैरान होवोगे जान के डांस केड़े पहाड़ा ते किया। डांस उन्होंने किया दुनिया की सब तो उच्ची चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से, जिथे माइनस विच तापमान ते बर्फीलियां हवावां दे विचकार साह लैना भी औखा हो जाता है। उत्थे एक कुड़ी ने अपने अंदर की जिहड़ी है कला पेश कीती। वीडियो दे विच सानिका ने अपनी एवरेस्ट की मुख चढ़ाई शुरू करन तो पहला बेस कैंप उत्ते होण वाली पूजा रसम दौरान यह नाच जिहड़ा है डांस जिहड़ा है वह पेश कीता। ते उसने दस्या कि पहाड़ा प्रति उसकी श्रद्धा, उसका शुकराना, उसकी सुरक्षित यात्रा सेफ जर्नी लई असीस लैन वास्ते पहाड़ा दी उसने ये तरीका चुनिया। कमाल दी गल है दोस्तों, पर इत्थे गल ये भी है कि जब कोई इंसान किसी कला दे विच उतर जांदा है अच्छी तरह जी जान लगा दिंदा है ते उस नू हर जगह जड़ा है पूरा जड़ा है समर्पण दिंदा ते हर जगह उसकी वो कला उसनू होर निखारती है। ते बस सानिका शान हुई रातों रात जड़ा है सोशल मीडिया ने जड़ा है वायरल कर दिता। लोगों नू पसंद ये आ रहा है कि जिते पहाड़ा ते लोग तो चढ़िया नहीं जाता, नॉर्मल ट्रैक नहीं किए जाते, उत्थे दुनिया के सब तो वड्डे पहाड़ यानी कि माउंट एवरेस्ट के ट्रैक के दौरान इसने भरतनाट्यम किया। है ना दिलचस्प गल? और भी बहुत सारी दिलचस्प खबर लेके हाजिर होवांगी, पर पहला सुनते हैं निम्रत खेरा की आवाज़ में गीत।

0: ओ रीमा, सोलर पैनल लगा ले, सोलर पैनल लगा ले। कदों तो मेरे सारे दोस्त बोलते सन, पर मैं उदो मन्निया जदो प्रधानमंत्री जी ने कहा
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैं प्रधानमंत्री जी दे कहने ते सोलर पैनल लगवाया, हुण मेरा बिजली दा बिल जीरो आया। तुसी भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करो। PM सूर्य घर .gov.in।

हाँ जी, मैकेजी प्रोग्राम नेटवाणी सुन रहे हो ते बहुत सारी मैकेजी इंटरनेट ते वायरल ट्रेंडिंग वीडियोस ते पिछे दी जानकारी आप साझा कर रहे हो। दोस्तों गल करिए सरकार दी, ता सरकार आए दिन नागरिकां दी हिफाजत वास्ते, सहूलियत वास्ते बहुत सारे ऐप्स, बहुत सारियां साइट्स जड़ियां हैं वो लॉन्च कर रही है। इस दे विच ही एक होर नाम जुड़ चुका है मोबाइल एप्लीकेशन का, जिसका नाम है जीवन, यानी कि जॉइंट एल्डरली इंपावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क, जो कि भारत सरकार वालों कल यानी कि 22 मई नूं लॉन्च किया गया है। हुण गल करिए इस एप्लीकेशन की, किस एप्लीकेशन, इस ऐप का सानू की फायदा है। दोस्तों तुसी घर बैठे ही अपने लाइफ दे जड़े है, जड़े तुहाडे महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट्स ने, वो इत्थे जमा करवा सकते हो। हुण इस तरह के तां होर भी बहुत सारे ऐप्स ने सरकार वल्लों लॉन्च किए गए, तो फिर एक किस तरह वखरा है। दोस्तों बजुर्गों की सहूलियत वास्ते ये ऐप जड़ा है लॉन्च किया गया है, जिस दे विच सरकार द्वारा दित्तियां जाण वालियां हर एक स्कीम्स जिहड़ियां है इस दे विच मौजूद ने, बजुर्गों की भलाई वास्ते। इस दे नाल ही नाल एमरजेंसी सपोर्ट भी दित्ती जाती है पूरी इस ऐप दे विच। ते गल करिए साडे बजुर्गों की, जिन्हां प्रति आए दिन असी खबरां देखते हाँ लापरवाही दियां, उन्होंने नाल बरतिया जाने वाली, जिथे उन्होंने बुढ़ापे करके जड़ा आना जाना मुश्किल हो जाता है, तो अपने बहुत सारे काम जड़े है नहीं कर पाते, तो हुण घर बैठे बैठे इस एप्लीकेशन जीवन दे राही वो सारे काम कर सकते ने। तो सरकार ने जड़ा है इस ऐप राही बजुर्गों की मदद की है, नाल ही नाल समा भी बचाया है, जो कि सेवा केंद्रों के जाके लगता है। तो बस हुण कोई भी सरकारी काम होए तो इस मोबाइल ऐप नूं मोबाइल ते डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर ते जाके, तो बस फिर काम कार बैठे बैठे ही हो जाने। मैं कह जी डिजिटल जमाना है, थोड़े जे एडवांस हो टेक्नोलॉजी के नाल चलना बहुत जरूरी होंदा है। सियाणी कहिंदी है जेकर समय के नाल चले जाए तां ही उस इंसान नूं सियाणा कहा जांदा है। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੈੱਟ ਵਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ।

जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है जी नेटवानी नेटवानी प्रोग्राम सुन रहे हो तुसी ते मैं कह जी गलबात हो गई साइंस बारे, विज्ञान बारे, खोजा बारे, सेहत बारे, रेसिपीज बारे। तो इस दे नाल ही ना तुहानू हुण गल दस दईए फैशन इंडस्ट्री की कि अजकल की कुछ लेटेस्ट चल रहा है फैशन इंडस्ट्री की दुनिया के। दोस्तों गर्मी का सीजन आ चुका है तो नाल ही वापस आ गया है ये फैशन, वो ट्रेंड जिहड़ा कदे साडे मापिआं दी जवानी दी जिहड़ी है शान सी। कुछ आइडिया तो हो गया होगा। जी हाँ, गल कर रही हाँ मैं बल बॉटम जीन्स की, वही खुले पैंचियां वाली जीन्स जिहड़ी चलन नाल ही स्वैग दिंदी है। अजकल कॉलेजों तो लैके कैफे तक हर कोई इस रैट्रो स्टाइल नूं जिहड़ा है वेयर कर रहा है, जो कि मॉडर्न टच भी दिंदी है ते नाल ही नाल इसनूं कैरी करना आसान है। बैल बॉटम की दोस्तों सब तो खास गल दसीए तो कॉम्फी तो है, नाल ही नाल क्लासी है। इस दे नाल ही नाल ए तुहानू जिहड़ा है ना एक एयरी फील दिंदी है। तो इस दे नाल ही बैल बॉटम जीन्स ना जो वेयर करते हैं तो साड़ी हाइट भी जिहड़ी ना एक इल्यूजन इफेक्ट जिहड़ा है पैदा होंदा, जिस नाल हाइट जिहड़ी है बंदे दी थोड़ी लंबी लगती है। तो फैशन इंडस्ट्री की भी गल मैं कह जी दस दी, तो अपनी वार्डरोब अपडेट कर लो जो बैल बॉटम मिस है। तो मैं कह जी बैल बॉटम कल छुट्टी वाला दिन है, कल ही जाके लो। तो फैशन के नाल जिहड़ा है अप टू डेट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस नाल ही मैनू यानी कि अपने दोस्त अर्च नेहा रलहन हूँ दियो इजाजत। उम्मीद करती हाँ प्रोग्राम नैट वाणी तुहानू पसंद आया होएगा। तो जल्द मिलते हैं तुहानू अगले प्रोग्राम जिसका नाम है दिल चाहता है। तद तक इंजॉय करो प्रोग्राम का आखिरी गीत, आवाज़ है जी बी प्राख दी। सारे ही दोस्तों का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का आनंद मानने वास्ते।

नमस्कार, एफएमएंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा ए रेनबो चैनल है। रात दे 9 बज चुके ने ते पेश है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमरीका व्यापक आलमी रणनीतिक भाईवाली विच निरंतर प्रगति ते सुरक्षा नाल संबंधित मुद्दियां ते चर्चा कीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज वक-वक सरकारी विभागां दे 51,000 तो वध चुने हुए मुलाजमां नूं नियुक्ति पत्र सौंपे। पंजाब विच 19वां रोजगार मेला अज रेल कोच फैक्टरी कपूरथला अते पटियाला लोकोमोटिव वर्कर्स पटियाला विखे करवाया गया। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड विच एक नवे गैस बेइंग पे जोन का सफलता नाल पता लाया है। व्यापार अते सनत मंत्री पीयूष गोयल ने अज कहा है कि भारत आलमी उथल पुथल के बावजूद मजबूत आर्थिक विकास देख रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों अत की गर्मी के मद्देनज़र पंजाब सरकार के सारे दफ्तर स्कूलों और कॉलेजों का समा बदलन का ऐलान। नवे समय मुताबिक कामकाज का समा सवेरे 7:30 बजे तो दोपहर बाद 1:30 बजे तक होगा। पंजाब केंद्रीय यूनीवर्सिटी बठिंडा वालों 11वें कन्वोकेशन समारोह करवाया गया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने विद्यार्थियों को प्रगतिशील समाज के निर्माण में योगदान पाने लिए किया प्रेरित। सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह वालों सिविल सर्जना नूं गर्मी कारण होने वाली बीमारियों लिए तैयार रहन अते मेडिकल सप्लाई यकीनी बनाने के निर्देश जारी। मोहाली की विशेष अदालत ने जलंधर स्थित इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वालों गिरफ्तार इंडियन कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी के सकत्र अजय सहगल की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 27 मई तक ईडी रिमांड उत्ते भेजा। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਐਫ ਐਮ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲ ਚਾਹਤਾ ਹੈ।

महफिल अजीब है ना, ये मंजर अजीब है, जो उसने चलाया वो खंजर अजीब है, ना डूबने देता है ना उबरने देता है, उसकी आंखों का वो समंदर अजीब है। FM 102.7 MHz ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल ट्यून के तहत तुसी ते बने हुए अपनी दोस्त आज नेहा रलहन दे नाल। सारे ही दोस्तों दा प्रोग्राम दे विच बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल। दोस्तों प्रोग्राम दिल चाहता है जिस विच हिंदी ते पंजाबी फिल्मी गीतां दी फरमाइश जिहड़ी है तुहाडी उह पूरी कीती जांदी है, ते अज शनिवार दी रात केहड़े गीत सुनना चाहुंदे हो मैनूं दस्सो व्हाट्सएप नंबर ते, जो कि है 9855101027। अपनी फरमाइश तां भेजनी है, इसदे नाल ही नाल फिल्म दा नाम भी लिख के भेजना है, ते बस फिर प्रोग्राम दे विच शिरकत किवें करनी है इस बारे ते मैं तुहानूं दस दित्ता है, ते फिर छेती छेती फोन मिलाओ, मैसेज करो। तद तक प्ले करन जा रही हां तुहाडे वास्ते इस प्रोग्राम दा पहला गीत जिसनूं आवाज़ दित्ती है जी सोनू निगम ने, फिल्म मैं हूं ना।

दोस्तों गुजरात गांधीनगर तो नमस्कार लिखे भेजी है प्रवीण सोनी पूजा पायल जूली ते जगदीश जी ने लिखते ने किसी भी गीत विच शामिल किया जाए इस दे नाल ही नाल गाओ नथाना पंजाब तो हरजिंदर छिंदा जसवीर जसी सीता ते गीता भी प्रोग्राम दे विच शिरकत कर चुके ने मैसेज राही पिंड हांडी खेड़ा जिला सिरसा तो राधे श्याम शर्मा इंदिरा शर्मा ते सार्थक शर्मा नाल ही साथी लिख के भेज रहे कि अज तां भयंकर गर्मी सी इसलिए सारे ही स्रोतियां नूं अनुरोध कर रहे ने कि इस वैदर दे विच बाहर ना निकलिया जाए ते जेकर बाहर जाना ही पै जावे ते सिर ते कपड़ा लैके जरूर जाओ ते नाल ही नाल पानी दी बोतल भी जरूर लैके जानी है। बिल्कुल जी बहुत नेक सलाह है। गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा वध रही है। दोपहर दा ते वेला अपना खास करके ध्यान रखने वाला है। अपने आप नूं इस गर्मी दे मौसम दे विच हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। तो इस दे नाल ही एक होर साथी साढ़े नाल जुड़े जिन्होंने पिंड हीरावली जिला फजिलका तो मैसेज भेजा है। सुभाष गोदारा पिमला गोदारा इंदु पार्वती हिमांशु लिखते ने अज हो सके तो एक दूजे के लिए फिल्म का गीत सुना दिता जाए। मैं क्या जी फरमाइश आई है तो फरमाइश नू पूरा करना तो फिर बनता है। तो लो जी फिर इन्हां दी फरमाइश ते सुनते हाँ फिल्म एक दूजे के लिए दए गीत जिसनू आवाज़ दिती है लता मंगेशकर ते अनूप जलोटा ने।

हाँ जी, प्रोग्राम चल रहा है जी, दिल चाहता है। हिंदी ते पंजाबी फिल्मां दियां फरमाइशां दा प्रोग्राम, जिस विच तुहाड़ियां फरमाइशां नूं पूरा किया जाता है। ते प्रोग्राम दे विच अगली फरमाइश केड़ा नहीं भेजी है, आओ फिर जानते हैं। मैसेजेस वाले झांक मार लें जी। अगला मैसेज प्रोग्राम दे विच पहुंचे जी गगन वड़ैच वालों, दबुरजी अमृतसर तो मैसेज आया जी इन्हों का, सत श्री अकाल लिख के भेजी है इन्होंने। तो नाल ही इन्होंने लिखा है कि गीत जड़ा है सुना दिता जाए, पंजाबी गीत। गीत दे बोलने जे मुंडिया साड़ी तौर तू वेखनी। मैं कहा जी नाल ही इन्होंने थोड़ी जी शिकायत भी प्रोग्राम दे विच मैसेज दे राही भेजी है कि पंजाबी गीत क्यों नहीं प्ले किए जाते। मैं कहा जी फिर दसना चाहते हैं थानू कि दोस्तों के मैसेज ज़्यादा तो ज़्यादा फरमाइशा जी पूरी करने की कोशिश रहती है, पर कोई फरमाइश रह जाती है। यही कारण है शायद कि किसी दोस्त का मैसेज जो प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया, पर नाम जरूर प्रोग्राम के शामिल करने की कोशिश रहती है। तो लो जी फिर इन्होंने गल की है मुंडिया की तौर दी वेखण दी, तो फिर सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत पंजाबी गीत। आवाज़ दी है जी नरेंद्र बीबा ते के अग्निहोत्री ने।

हाँ जी, मैगी जी प्रोग्राम दे विच एक बार फिर स्वागत। इस प्रोग्राम दे विच बहुत सारे दोस्तों दे मैसेजेस आज साढ़े तक पहुंच गए। मैगी जी, शनिवार की रात है ते हर कोई अपनी फरमाइश लेके तैयार है। सुखदेव सिंह, नरेंद्र कौर, सन्नी मुन्नी, काका बिट्टू, लाडी मोहन मास्टर, जनक नगर जलंधर तो मैसेज कर रहे ने। तेना दे नाल ही रवि कुमार, राहुल, रंजीत, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह का भी मैसेज आया जी। अनारकली बाजार जगराऊं तो सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या, भाई सुच्चा सिंह पाठक जी भी प्रोग्राम दे विच जुड़ गए ने। पिंड ते डाकखाना निमानाबाद नेड़े सफीदू मंडी जिला जिंद हरियाणा तो जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत, करमजीत भी प्रोग्राम दे विच जुड़े ने। काला कंबोज, रजनी, बाला कंबोज, सीरत, जपजी कंबोज ते गुरफते दा मैसेज आया जी। जिला फिरोजपुर दे रहन वाले ने। ते दे नाल ही नाल उत्तम नगर दिल्ली तो मैसेज पहुंचे है बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल ते भानु प्रकाश दा। गांव नलोई, तहसील सिवानी मंडी, जिला हिसार तो सज्जन कुमार जांगड़ा, कार्तिक ते वेदांश दा मैसेज आया जी। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਜ਼ੱਫਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਮਾਨ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਪਸੰਦ 'ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਕਟੀ ਪਤੰਗ ਦਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਇੱਕ ਹੀ।

शोर तो दूर, रात इस पहर दे प्रोग्राम याद दिलांदा है कि जिंदगी विच ठहराव जरूरी है, आराम नाल बैठ के सोचना भी जरूरी है। की सोचिया सी, की कर रहे हैं, कित्थे पहुंचे हैं, ते कित्थे पहुंचन दी उम्मीद है। एहसास जज्बात पर्याय प्रोग्राम जिंदगी दे विच लोगां दे साथ दी बहुत जरूरत हुंदी है। जेकर ये साथ ना होए जिंदगी बहुत औखी हो जाती है। इस साथ ते जीवन गुजारे ते आमिर अमीर लिखदे ने, अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या उस पे मबरी कोई तस्वुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। प्रोग्राम शामे गजल दी पहली गजल तुहाडे पेशे खिदमत करन जा रहे हैं आवाज़ चंदन दास दी।

प्रोग्राम शामे गजल सुन रहे हो तुसी। दोस्तों गल हुई जिंदगी नू मना दी, यानी कि तलाश। जद जिंदगी नू मना निकले तो इस सफर विच कई गलियां विचों होके गुजरना पैना है। कुछ गलियां तो आसानी नाल अगे दा रस्ता दस दिंदी है, सिद्धियां गलियां होंदियां, ते कुछ गलियां दे मोड़ तुहानू तुहाडे मंजिल तो भटका भी सकदे ने। पर जब तक इन्हां गलियां दे विचों गुजरीए ना, तद तक पता किवें चलेगा कि मंजिल दा सही रस्ता केड़ा है। इस ते ही तहजीब आफी लिखदे ने, कदम रखता है जब रस्तों पे यार आहिस्ता आहिस्ता, तो छट जाता है सब गर्दो गुबार आहिस्ता आहिस्ता।

कहते मिल ही जाएंगे रास्ते, मिल ही जाएंगे रास्ते जिंदगी में, भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। प्रोग्राम शामे गजल विच गल हो रही है तलाश दी। जिंदगी दियां जान गलियां जिन्हां बारे ना सुनिया, जिथे ना कोई हमसफर ना कोई साथी, मन सोचता है किसकी तलाश है जिसनू मिलन लई हर रोज़ हर लम्हा पटक रहा है मन, पर कोई सवाल नहीं है मिलता, बस ये पटकन जड़ी है किसी नू मिलन दी वो लगी हुई है, कारण इसका मन नहीं जानता। इसते प्रीतपाल सिंह बेताब लिखते ने रास्तो रास्तो भटकता हूँ, जाने किसकी तलाश करता हूँ, हार जाता हूँ शाम होने तक अपने साए से रोज लड़ता हूँ, जिंदगी देख मैं तेरी खातिर रोज किस किस से मरता हूँ, रोज किस किस पे मरता हूँ। प्रोग्राम दी अगली गजल आवाज़ गुलाम अली।

जिंदगी के कई साल भटकते भटकते यूं ही गवा दिए, मगर तलाश थी किसकी। अफरोज आलम लिखते हैं, बड़ा खुशनुमा ये मकाम है नई जिंदगी की तलाश कर, तू ना अपने जहन की बात कर, नई दोस्ती की तलाश कर। जो नहीं मिला इस जिंदगी में उसे छोड़ आगे बढ़, मंजिल भटकते भटकते मिल ही जाएगी। कुछ ना भी मिला तो खुद खुदा तो मिल ही जाएगा। प्रोग्राम शामे गजल दे विच, इस प्रोग्राम दी आखिरी गजल पेश करन जा रही हां घनश्याम वसवानी दी आवाज दे विच। इस नाल ही मैनू दियो इजाजत, मिलांगे तुहानू ठीक 10:30 बजे लेके प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है।

लिख दे रहे फैज अहमद फैज, दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के, वो जा रहा है शबे गम गुजार के। प्रोग्राम दा पहला गीत आवाज़ मोहम्मद रफी दी, चोई करो।

0: किसी से मोहब्बत ना हो जाए कहीं।
1: मोहब्बत ते किस दा वास है जदों ये होनी हुंदी है ते बस हो ही जाती है दो दिलों के विचकार। प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है, सुन रहे तुसी बने हुए अपनी दोस्त आरजे निहारल हंदे नाल।

उजाले अपनी यादों के, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है, सुन रहे हो तुसी।

वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जो इश्क को काम समझते थे। हम जीते जी मशरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया।

दोस्तों, प्रोग्राम सुन रहे तो सी एक प्यार का नगमा है, हिंदी पुराने गीतों का ये नगमा, जिस विच सुकून भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, इश्क भी है, तो दिल नू एहसास भी है अपने पन का, मोहब्बत का। इस मोहब्बत प्यार से बहुत सारिया गल्लां कहियां जा सकदियां हैं, पर इन्हां गल्लां गल्लां दे विच ही हर एक चीज़ नू सच है या झूठ है, इस चीज़ की गवाही बनती है अखा। तो जाते जाते अखा से गीत पेश कर जा रही हूँ, पर उस तो पहला अखा दे विच जो वसदा है वह हमेशा ही दुआ दे विच रहिंदा है साड़ी। तो इस ते लिखते ने, जिन हमारी दुआ से होती है हमसे क्या अब खुदा से होती है, नामा भर जाएगा हवा से तेज, शर्त बाद सबा से होती है। प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है, दाखरी गीत लता मंगेशकर दी आवाज़ विच सुनन जा रहे हैं। तेज नाल ही मैनू यानी कि अपनी दोस्त आर जे नेहा रलहन नू आज वास्ते दियो इजाजत, ते एंजॉय करो प्रोग्राम दा ये आखरी गीत।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, DRM 864 किलो हर्ट्स, FM बैंड 100.8 मेगा हर्ट्स, 100.9 मेगा हर्ट्स से DTH दी आकाशवाणी।